सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं। आज दिन सोमवार, शक संवत 1947 के आषाढ़ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। अब हमारी सुबह की सभा आरंभ होती। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

द्रौपदी के स्वयंवर में जाते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, इसका विशेष ध्यान रखना। इस पर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आप कहां सहायता करेंगे। वासुदेव ने हंसते हुए कहा, हे पार्थ, जो तुमसे नहीं होगा वो मैं करूंगा। इस पर अर्जुन ने कहा, प्रभु, ऐसा क्या है जो मुझसे न होगा। वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस विचलित हिलते हुए पानी में तुम मछली की आंख को देखोगे, उस अस्थिर पानी को स्थिर तो मैं ही रखूंगा ना। कहने का तात्पर्य ये है कि हम चाहे कितने भी निपुण, कितने भी बुद्धिमान क्यों न हों, लेकिन हम स्वयं हर परिस्थिति के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं रख सकते। हम सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर संभालता है, उसी का नाम ईश्वर है। जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ, ईश्वर कौन है। आइए अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम। अब से ठीक बात सुनिए का कार्यक्रम अक्षय निधि मंडली एक सूक्त 158। और अक्षय निधि के बाद सुनिए भक्ति संगीत।

रोजाना की तरह सुबह 8 बजे सुनिए कार्यक्रम वतन का राग। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की पुण्यतिथि पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का। सुनो कहानी, सुनो कहानी सुनिए सुबह 8:30 पर, और इसमें आज बात होगी परीक्षा पर। कार्यक्रम में स्वर होगा संदीप शर्मा का। सुबह 9 बजे का समय हो गया कार्यक्रम कला कल्लोलिनी का। हबीब तनवीर साहब पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। दानिश खान और स्वाति गिरी के स्वर होंगे कार्यक्रम में। विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। शुभ भाई गुप्ता निमाड़ी गायन आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। रिकॉर्डिंग की है फराज फैयाज ने। सुबह 10 बजे का समय होगा कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट और परिक्रमा का। याद करो कुर्बानी, यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:30 पर। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। शब्दों के शिल्पकार, ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 11 बजे। नागार्जुन की जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। संदीप शर्मा और कौसिया खान का स्वर होंगे कार्यक्रम में। युग प्रवर्तक विवेकानंद, ये सुनिए कार्यक्रम सुबह 11:30 पर। तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 158 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप और अनुष्टुप।
2: वसु रुद्रा पुरुमंतु वृधंता दशस्यतम नो वृषणामभिष्टौ दस्राह यद्रेक्ण औचथ्यो वाम प्र यत् सस्राथे अकवाभिरुति। हे सामर्थ्यवान शत्रुनाशक, सबके आश्रय रूप, दुष्टों के लिए रौद्र रूप, ज्ञानवान समृद्धिशाली अश्विनी कुमारों, आप हमें अभीष्ट अनुदान प्रदान करें। उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा के द्वारा धन संपदा प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए जाने पर आप दोनों श्रेष्ठ संरक्षण सामर्थ्यों के साथ शीघ्रता पूर्वक पहुंचते हैं। को वाम दाशत सुमतये चिदस्यै वसु यद्धे थे नमसा पदे गोह जिग्रितमस्मे रेवती ही पुरंधी ही काम प्रेणेव मनसा चरंता। सबको आश्रय देने वाले हे अश्विनी कुमारों, इस पृथ्वी पर जो भी आपकी वंदना करते हैं आप दोनों उन्हें अनुदान प्रदान करते हैं। आपकी श्रेष्ठ बुद्धि की तुष्टि के लिए कौन क्या भेंट दे सकता है। हे सर्वत्र विचरणशील, आप हमें धनों के साथ पोषक दुधारू गौएं भी प्रदान करें। युक्तो ह यद्वाम तौग्याय पेरुर्वी मध्ये अर्णसो धाई पज्रह उप वामवह शरणं गमेयं शूरो नाज्म पतयद्भिरे वैहि। हे अश्विनी कुमारो, राजा तुग्र के पुत्र भुज्यु के संरक्षण के लिए आपने अपने गतिशील यान को सागर के बीच में ही अपनी सामर्थ्य से स्थिर किया। वीर पुरुष जैसे युद्ध में प्रविष्ट होते हैं, वैसे ही संरक्षण पूर्ण आश्रय के लिए हम आप दोनों के पास पहुंचें। उपस्तुति रौचथ्य मुरुष्येन्मा मामिमे पतत्रिणी वी दुग्धाम मा मामेधो दशतयश्चितो धाक प्रयद्वाम बद्धस्त्मनि खादतिक्षाम। उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा कहते हैं कि हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों के निकट की गई प्रार्थना मेरी रक्षा करे। गतिशील दिन रात्रि मुझे निचोड़ न ले। दश गुनी समिधाएं डालकर प्रज्वलित की गई अग्नि मुझे भस्मीभूत न कर डाले। जिसने आपके इस श्रद्धालु उचथ्य को बांध दिया था, वही अब यहां धरती पर असहाय स्थिति में पड़ा है। न मा गरन नद्यो मातृतमा दासा यदीम सुसमुब्ध मवाधुः शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत स्वयं दास उरो असावपि गद्ध। जब उचथ्य पुत्र दीर्घतमा को दस्युओं ने अच्छी प्रकार से जकड़कर बांधकर नदी में फेंक दिया, तब मातृरूपा उन नदियों ने संरक्षण प्रदान किया। जब मेरे सिर, छाती और कंधे को काटने का प्रयत्न किया गया, तब आपकी कृपा एवं दिव्य संरक्षण से आपका सेवक मैं सुरक्षित रहा। दस्यु के ही अंग कट गए। दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे अपामर्थम यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथि। ममता के पुत्र दीर्घतमा ऋषि दशम युग अर्थात 111वें वर्ष में शारीरिक दृष्टि से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने संयमशील उत्तम कर्मों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त किया। वे ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सबके संचालन करने वाले सारथी के समान बने।
1: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 158 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहा गया है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। किसी एक इंसान में 10-20 आदमी के होने की और उसे कई कई बार देखने की ये बात इंसानी फितरत की बात है। लेकिन कुछ ऐसी विलक्षण विभूतियां भी हमारे देश में हुई हैं, जिनकी बहुमुखी प्रतिभा के इतने आयाम हैं कि मन उलझ कर रह जाता है कि एक शब्द में उनका क्या परिचय हो। ऐसा ही विलक्षण व्यक्तित्व था दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का। डीडी कोसाम्बी एक महान गणितज्ञ थे। इसके साथ ही उन्होंने अनुवांशिकी, मुद्रा शास्त्र, इंडोलॉजी, संस्कृत अध्ययन और भारतीय इतिहास पर भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें भारतीय इतिहास लेखन के मार्क्सवादी उपागम का पितामह माना जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि उनके लेखन में उनकी निजी स्वतंत्र दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का जन्म 31 जुलाई सन 1907 को गोवा के कोसबेन में हुआ था। उनके पिता धर्मानंद कोसाम्बी एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया था। दामोदर कोसाम्बी बचपन से ही एक तीक्ष्ण बुद्धि बालक थे। सीखने की ललक, जिज्ञासा और मानवीय मूल्य उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुए थे। अपने जीवन के शुरुआती 5 साल वो गोवा में रहे। सन 1912 में वो पुणे आ गए और यहीं न्यू इंग्लिश स्कूल में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वो बहुत दुबले पतले थे और उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था, इसलिए उनकी शिक्षा बाधित हुई। भारत में कुछ समय स्कूली शिक्षा के बाद सन 1918 में वो पिता के साथ कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स गए। खराब स्वास्थ्य के चलते वो अकादमिक शिक्षा की ओर मुड़े और हार्वर्ड ग्रामर स्कूल में नामांकित हुए। इसके बाद 1920 में उन्होंने कैम्ब्रिज हाई और लैटिन स्कूल में प्रवेश लिया। इस तरह उनकी अभिरुचि अब सभी शैक्षणिक विषयों में हो गई। कैम्ब्रिज में ही उनकी मित्रता नॉर्बर्ट वीनर से हुई, जो अत्यंत मेधावी छात्र थे। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी पर इस मित्रता का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी परीक्षा उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। परिणाम स्वरूप उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने से छूट मिल गई। सन 1924 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन वो बीच में ही भारत लौट आए। सन 1926 में वो पिता के साथ फिर अमेरिका गए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू की। गणित विषय में उनकी विशेष रुचि थी और जॉर्ज डेविड बिरखॉफ उनके मार्गदर्शक गुरु थे। लेकिन डीडी कोसाम्बी ने यहाँ अलग अलग पाठ्यक्रम लेते हुए विषयों की एक अद्भुत श्रृंखला में खुद को विस्तारित किया, और अद्भुत बात यह थी कि प्रत्येक विषय में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। सन 1929 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान के साथ कला स्नातक की उपाधि प्रदान की। इसके बाद वो अपनी जन्मभूमि भारत की ओर लौटे।

भारत लौटने के बाद दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी बहुत जल्द ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने गणित के साथ ही जर्मन भाषा की कक्षाएं भी लीं, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी सी थी, क्योंकि अध्यापन के साथ साथ वो शोध भी करना चाहते थे। अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अथक मेहनत की और सन 1930 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया, प्री सेशंस ऑफ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणित के व्याख्याता के पद पर हुई। इसी बीच उनका विवाह हुआ और पत्नी नलिनी से उनकी दो बेटियां हुईं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में वो दो वर्ष रहे और डिफरेंशियल ज्योमेट्री और पाथ स्पेस के सामान्य क्षेत्र में 8 महत्वपूर्ण शोध पत्र तैयार किए। उनके शुरुआती शोध पत्र फ्रांस, इटली और जर्मनी की पत्रिकाओं में उनकी अपनी भाषाओं में ही प्रकाशित हुए। सन 1932 में वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में नियुक्त हुए। अनेक मतभेदों के चलते उनकी नियुक्तियां अलग अलग संस्थाओं में रहीं, लेकिन पुणे में उन्हें मनचाहा वातावरण मिला। यहां उन्होंने लगभग 14 वर्ष तक गणित का अध्यापन किया। सन 1939 तक दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का ध्यान पूरी तरह गणितीय शोध पर ही था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक विज्ञान में प्रवेश करना शुरू किया। अब वो प्राचीन सिक्कों के वजन पर शोध कर रहे थे। मुद्रा शास्त्र के कठिन विज्ञान में उन्होंने गहन शोध किया। तक्षशिला के, विशेष रूप से मगधकालीन सिक्कों के विशाल भंडार और नियंत्रण साधन के रूप में उन्होंने आधुनिक सिक्कों का प्रयोग किया। लगभग 12,000 सिक्कों को तौलने के बाद उन्होंने कहा कि पुरालेख और पुरातत्व से अलग एक विज्ञान के रूप में मुद्रा शास्त्र की नींव डाली जा सकती है। उन्होंने डेटा का मूल्यांकन आधुनिक सांख्यिकी तरीके से किया। संस्कृत साहित्य भी उनका प्रिय विषय रहा। इसमें उन्होंने भर्तृहरि और भास की रचनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। उनके भाष्य अत्यंत उत्कृष्ट माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य से ही वो प्राचीन भारत के इतिहास की ओर बढ़ गए। इस विषय पर उन्होंने अनेक निबंध भी लिखे।

दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि सन 1940 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने उन्हें आमंत्रित किया और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गणित के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वो 16 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। वो शिकागो विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याता भी रहे। देश दुनिया के अनेक विद्वानों से उनका विमर्श हुआ करता था। डीडी कोसाम्बी दुनिया के परमाणुकरण के खिलाफ थे। वो शांति के पक्षधर थे। वो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की वकालत कर रहे थे। इन्हीं विभेद के चलते वो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट से अलग हो गए, लेकिन उनकी शोध रुचि व्यापक होती चली गई। उन्होंने गणित का शोध तो जारी ही रखा, इसके साथ ही वो प्राचीन भारतीय इतिहास और सामाजिक मुद्दों पर शोध कर रहे थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मिथ एंड रियलिटी, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन और एग्जस्पेरेटिंग एसेज। इसके अलावा उन्होंने 5 पुस्तकों का संपादन किया और लगभग 127 शोध लेख लिखे। इस तरह डीडी कोसाम्बी के कार्य का एक व्यापक आसमान है और उनकी दृष्टि अत्यंत विशेष है। उन्होंने संस्कृत साहित्य के ग्रंथों के संपादन हेतु एक विशिष्ट शैली की खोज की तथा इन ग्रंथों को पढ़ने का भी एक सिद्धांत बनाया। बौद्ध धर्म पर उनका लेखन एक क्रांतिकारी कदम था। प्राचीन भारत के इतिहास में जो धार्मिक जीवन था, उसका एक मौलिक सोच के साथ उन्होंने विश्लेषण किया। अपने विश्लेषण के लिए उन्होंने तुलनात्मक तकनीक का प्रयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े मिथकों का उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मुद्रा शास्त्र और अनुवांशिकी पर जो काम किया वो बहुत लोकप्रिय रहा। इसके साथ ही एक गणितज्ञ के रूप में पथ ज्यामिति, सांख्यिकी, संभाव्य संख्या सिद्धांत आदि का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। इस तरह दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी ने विभिन्न विषयों का पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर अध्ययन किया तथा अत्यंत मूल्यवान योगदान दिया जो दुनिया के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। 29 जून सन 1966 को मात्र 58 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: रेशम का रहस्य, इतालवी एकाधिकार को चुनौती देने की एक नाकाम कोशिश। 18वीं शताब्दी के उच्च स्तरीय फैशन की दुनिया में एक वस्तु में ऐसा रहस्य छिपा था जिसने लंदन के सबसे बड़े व्यापारियों को भी चकित कर दिया था। वह था थ्रोन सिल्क। जहां कच्चा रेशम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, वहीं ऑर्गेन्सिन विलासी कपड़ों के लिए आवश्यक मुड़ा हुआ ताना और धागा बनाने का रहस्य पूरी तरह से इटली के एकाधिकार में था। इटालियन अपनी जल शक्ति से चलने वाली मिलों की सुरक्षा बड़ी कड़ाई से करते थे, जिससे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस पकड़ को तोड़ने के लिए एशिया की ओर देखने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी की योजना बेहद आधुनिक और साहसी थी। वे चीन और बंगाल से कच्चा रेशम आयात करेंगे और उसे इतालवी मानकों के अनुरूप तैयार करने का प्रयास करेंगे। चीन के कैंटीन में सुपर कार्गो को सख्त निर्देश दिए गए थे कि रेशम को एक विशिष्ट सूक्ष्मता के साथ रीलों पर लपेटा जाए, ताकि कई एकल धागों को मिलाकर एक ऐसा धागा बनाया जा सके जो इतालवी ट्विस्ट की नकल कर सके। लेकिन इस रहस्य की असली जड़ तकनीकी बदलाव में छिपी थी। 1755 में कंपनी ने बंगाल के उत्पादन में क्रांति लाने के लिए कासिम बाजार में यूरोपीय मशीनें, जिनमें विशेष भट्टियां, तांबे के बेसिन और रीलें शामिल थीं, भेजी। हालांकि इस प्रयोग को एक अप्रत्याशित बाधा का सामना करना पड़ा। स्थानीय कारीगरों ने यूरोपीय पद्धति को पूरी तरह से विदेशी और शारीरिक रूप से थका देने वाला पाया, क्योंकि इसमें पारंपरिक भारतीय तकनीकों की तुलना में कहीं अधिक श्रम और ध्यान की आवश्यकता थी। यद्यपि मशीन से काता गया धागा असाधारण रूप से एक समान था, लेकिन इसका उत्पादन करना काफी महंगा साबित हुआ। तकनीकों के इस टकराव ने यह साबित कर दिया कि बेहतरीन रेशम का रहस्य केवल मशीनों में नहीं, बल्कि करघे के पीछे बैठे लोगों की शारीरिक निपुणता और उनकी ऐतिहासिक परंपराओं में भी छिपा था।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं सुनो कहानी में आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राज काज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा, सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने देखने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहां छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुष लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था, धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही, लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था, इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था, पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी आ जा नहीं सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इस बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी, लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि गठे हुए बदन का लंबा आदमी खड़ा है, झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हो, अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया, कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। फिर उसने जोर किया, उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैल को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई, उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने तो मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, हम मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा, उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन ना पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आबिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं विकीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों रईसों ने जानकी नाथ की ओर देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकारने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका दृढ़ संकल्प है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा। सुनो कहानी के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: बॉम्बे बॉक्स वर्क, रेशमी मोज़ेक, फारसी जड़ें और ब्रिटिश मार्केटिंग। 19वीं सदी के व्यापारिक कैटलॉग के शांत अभिलेखागार में अक्सर एक जिज्ञासु शब्द मिलता है, बॉम्बे बॉक्स वर्क। एक सामान्य दर्शक के लिए ये ज्यामितीय पैटर्न की एक चमकती हुई सम्मोहक त्वचा की तरह दिखता है। हाथी दांत, सींग और विपरीत लकड़ियों का सूक्ष्म मोज़ेक जो दस्ताने के बक्से, राइटिंग डेस्क और कार्ड केस पर लिपटा होता है। हालांकि नाम से ये विशुद्ध रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक आविष्कार लगता है, लेकिन इस कला का इतिहास फारसी उत्पत्ति, भारतीय शिल्प कौशल और शाही रीब्रांडिंग की एक कहानी है। भारत में इस तकनीक को सादेली के नाम से जाना जाता था, जो बॉम्बे में ब्रिटिश उपस्थिति से कहीं अधिक पुरानी थी। इसकी उत्पत्ति फारस के शिराज और इस्फहान शहरों में हुई थी, जहां इसे खम्बात बंदी कहा जाता था। ये प्रक्रिया बेहद सटीक और धैर्यपूर्ण थी। शिल्पकार हाथी दांत प्राकृतिक या हरे और लाल रंग में रंगे हुए आबनूस और चंदन की सैकड़ों पतली छड़ों को गोंद का उपयोग करके बंडलों में बांधते थे। इन बंडलों को फिर अविश्वसनीय रूप से पतली परतों में काटा जाता था, जिन्हें लकड़ी के आधारों पर चिपकाया जाता था। यहाँ एक मुख्य अंतर था। जहाँ फारसी कारीगर अपने रूपांकनों को रेखांकित करने के लिए पीली धातु यानी पीतल का उपयोग करते थे, वहीं भारतीय कारीगर टिन या चांदी के तार को प्राथमिकता देते थे। ये शिल्प राजनीतिक अशांति से भाग रहे पारसी समुदायों के साथ अरब सागर पार कर भारत आया, पहले सिंध पहुंचा और अंततः 18वीं शताब्दी के मध्य तक सूरत के व्यस्त बंदरगाह तक पहुंचा। दशकों तक सूरत इस उद्योग की असली धड़कन बना रहा, यहां तक कि जब ब्रिटिश राजनीतिक और सैन्य शक्ति बॉम्बे द्वीप की ओर स्थानांतरित हो गई, तब भी विशेषज्ञ कारीगर सूरत में ही रहे। ब्रिटिश अधिकारी वर्षों तक शिकायत करते रहे कि जब कच्चा हाथी दांत बॉम्बे में उतारा जाता था, तब भी उसे काम के लिए वापस सूरत भेजना पड़ता था, क्योंकि वहां शिल्प नेटवर्क की स्थानीयता इतनी गहरी थी। बॉम्बे बॉक्सवर्क नाम में संक्रमण ब्रिटिश मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने साम्राज्य के बदलते समय को प्रतिबिंबित किया। जैसे जैसे बॉम्बे एक औपनिवेशिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, ये इन वस्तुओं के पश्चिमी बाजारों तक पहुंचने का प्राथमिक आउटलेट बन गया। विक्टोरियन यात्री इन बक्सों से मंत्रमुग्ध थे, उन्हें प्रामाणिक भारतीय कलाकृतियों के रूप में देखते थे। ये शिल्प 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने चरम पर पहुंचा, जहां बॉम्बे में बने इन कलात्मक वस्तुओं ने पदक जीते और अंततः महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के लिए एक भव्य विस्तृत बॉक्स तैयार किया गया। इस सुंदरता के पीछे एक जटिल वैश्विक व्यापार नेटवर्क था। सादेली में उपयोग किए जाने वाले हाथी दांत की मांग ने हाथी दांत कपास यूरोबोस को चलाने में मदद की। एक वाणिज्यिक सर्किट जहां अफ्रीकी हाथी दांत के बदले भारतीय कपड़ों का व्यापार किया जाता था, ताकि गुजरात की कार्यशालाओं का पेट भरा जा सके। आज बॉम्बे बॉक्सवर्क एक मृत शब्द है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सेल्यूलाइड प्लास्टिक के उदय और बाद में हाथी दांत पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ये उद्योग ध्वस्त हो गया। फिर भी ये नाम इस बात का भाषाई अवशेष बना हुआ है कि कैसे अंग्रेजों ने एक जीवंत प्राचीन फारसी भारतीय परंपरा पर अपने स्वयं के प्रशासनिक लेबल सफलतापूर्वक थोप दिए।
2: नजी भर के देखा

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

खिड़कियों पर टैक्स और चाय, एक विचित्र ऐतिहासिक सौदा। क्या आप जानते हैं कि एक प्याली अच्छी चाय के लिए ब्रिटिश प्रेम ने एक समय उनके घरों में आने वाली सूरज की रोशनी पर टैक्स लगवा दिया था। यह किसी काल्पनिक कहानी जैसा लगता है, लेकिन 1784 में यह ब्रिटिश राजकोषीय प्रणाली की एक कठोर वास्तविकता बन गई थी। इस कहानी के केंद्र में थी ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी और तस्करी की एक बहुत बड़ी समस्या, जो कंपनी के मुनाफे और राष्ट्रीय खजाने दोनों को बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। क्या आप जानते हैं कि 18वीं सदी के अंत तक चाय कंपनी के व्यापारिक खाते की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु बन गई थी। चाय ने कंपनी के व्यापार में उसी तरह क्रांति ला दी थी जैसे पिछली सदी में कपास ने लाई थी। हालांकि इसमें एक बड़ा पैंच था, ब्रिटिश सरकार ने चाय पर भारी शुल्क लगा दिया था, जो 79% से लेकर 127% तक था। क्या आप जानते हैं कि इन ऊंचे करों का परिणाम क्या हुआ? चूंकि चाय इतनी महंगी थी, इसलिए इंग्लैंड में पी जाने वाली आधी से अधिक चाय कंपनी के यूरोपीय प्रतिद्वंदियों द्वारा देश में तस्करी करके लाई जा रही थी। इससे कंपनी के गोदाम लाखों पाउंड महंगी चाय से भर गए थे, जिसे कोई खरीदने को तैयार नहीं था। क्या आप जानते हैं कि विलियम पिट द यंगर ने इस संकट को कैसे हल किया? उन्होंने 1784 का ऐतिहासिक कंप्यूटेशन एक्ट पेश किया। इस कानून के पीछे का तर्क सरल लेकिन साहसी था। यदि सरकार चाय पर टैक्स कम कर दे तो तस्करों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और जनता वापस कंपनी से कानूनी चाय खरीदने लगेगी। पिट ने चाय शुल्क को 100% से घटाकर मात्र 12.5% कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के मालिकों के लिए इसमें क्या पैंच था? ब्रिटिश सरकार उस टैक्स राजस्व को पूरी तरह नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि यह राजस्व की वित्तीय स्थिति के लिए अनिवार्य था। चाय राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए पिट ने टैक्स को एक ऐसी विलासिता से हटाकर, जिसे आप पीने या ना पीने के लिए चुन सकते हैं, एक ऐसी चीज पर डाल दिया जिससे घर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था, उनकी खिड़कियां। यही कुख्यात विंडो टैक्स की उत्पत्ति थी। यह शाब्दिक रूप से रोशनी और हवा पर लगने वाला टैक्स था, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि चाय का व्यापार कंपनी और क्राउन यानी राजसत्ता दोनों के लिए लाभदायक बना रहे। क्या आप जानते हैं कि यह अदला बदली ही वह गुप्त इंजन था जिसने कंपनी के बाद के वर्षों को शक्ति दी? 1784 के इंडियन एक्ट के माध्यम से भारत में अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता का त्याग करने के बदले में कंपनी को चीन में यह विशाल व्यावसायिक अवसर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि यह कितना सफल रहा? इसने उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। 1830 तक अकेले चाय शुल्क से ब्रिटिश खजानों को सालाना 30 लाख पाउंड से अधिक मिल रहे थे, जो पूरे देश के राजस्व का लगभग 10वां हिस्सा था। क्या आप जानते हैं कि खिड़कियों पर लगने वाले इस अजीब टैक्स के बिना ब्रिटिश साम्राज्य का इतिहास अलग तरीके से लिखा गया होता? कम शुल्क के कारण चीन में चाय का व्यापार की सफलता ने वास्तव में भारत भर में कंपनी के महंगे होते जा रहे सैन्य अभियानों को वित्त पोषित करने में मदद की। यह इस बात की याद दिलाता है कि कंपनी का अस्तित्व अक्सर युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं से अधिक एक चायदानी में उबल रही चीज पर निर्भर करता था।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।

0: रंगमंच यानी वो जगह जहां अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं। लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो मित्र स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बम्बई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर, एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी माता एक बेहद सरल और ममतामयी महिला थीं। इस तरह हबीब के भीतर पेशावर की पठानी छवि और छत्तीसगढ़ की तरलता का एक अनूठा संगम बचपन से ही आकार ले रहा था।
1: बचपन में हबीब का नाम हबीब अहमद खान था। रायपुर की सेंट पॉल्स स्कूल के आसपास की गलियों में जब वो घूमते तो उनका ध्यान किताबों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले तमाशों, रामलीला, नाचा की मंडलियों और सूफी संतों की कव्वालियों पर रहता। वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा के कार्यक्रमों को देखा करते थे।
0: जी हाँ, और यही वो समय था जब उनके कान लोक धुनों को पकड़ रहे थे। उनके बड़े भाई को शायरी का शौक था, जिससे प्रभावित होकर हबीब ने भी बहुत कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वे अपनी लिखी गजलें और नज्में दोस्तों को सुनाते तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया तनवीर। तनवीर यानी रोशनी या आभा। किसे पता था कि रायपुर की गलियों में अपनी कविताओं से रोशनी बिखेरने वाला ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया के रंगमंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
1: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनके मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया, लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
0: और वो बड़ा कैनवास था। बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था। बाईस साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
1: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
0: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
1: बलराज साहनी, जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें ये सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
0: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात्य नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
1: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे, लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला जिसका कोई पारंपरिक नायक या नायिका नहीं थी। इस नाटक का नायक था खुद आगरा का बाजार।
0: और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? हबीब साहब ने इस नाटक के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंजे हुए कलाकारों को नहीं लिया। वे सीधे दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में गए। वहां से उन्होंने ककड़ी बेचने वाले, पतंगबाज, कबाड़ का कारोबार करने वाले और यहां तक कि असली भीख मांगने वाले फकीरों को पकड़ा और उन्हें मंच पर ला खड़ा किया।
1: समीक्षकों ने कहा कि ये पागलपन है, ये अनपढ़ लोग मंच पर क्या अभिनय करेंगे। लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था, मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी। पतंगे उड़ रही थी और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा, जब लाद चलेगा बंजारा, तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
0: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातों रात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए, लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
1: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
0: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहां बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल्ड ब्रेख्त के काम को बहुत करीब से देखा। ब्रेख्त का एपिक थिएटर और उनका एलिमिनेशन इफेक्ट यानी दर्शकों को नाटक में पूरी तरह डुबोने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने हबीब साहब को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: लेकिन दिलचस्प बात देखिए श्रोताओं, यूरोप की इन विश्व प्रसिद्ध एकेडमियों में 3 साल बिताने के बाद भी हबीब साहब जब भारत लौटे तो शेक्सपियर या ब्रेख्त के नाटकों की अंधी नकल लेकर वापस नहीं आए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, लंदन और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा, जहां असली कला अब भी जिंदा है।
0: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
1: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
0: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
0: इन हीरो में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन जब वे मंच पर आती थीं तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
1: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे, वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
0: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
1: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोरी।

मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: भारत वतन।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर
2: छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
3: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
2: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
3: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु को 4 अजीबोगरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
2: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल पहुंच गए। वहाँ यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
3: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरण दास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
2: श्रोताओं, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे, वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
3: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा बल्कि वह विभाजन के दर्द से कराहते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं, माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलीशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
2: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
3: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ, दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
2: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
3: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
2: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
3: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
2: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
3: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहां रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
2: और आप जानते हैं श्रोताओं, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 24 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहां की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहां की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
3: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए
2: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालीदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
3: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
2: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था, अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
3: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है, कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
2: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों की तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
3: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
2: मैं थी आपके साथ स्वाति।
3: अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: एक निमाड़ की माटी की जो बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर, ये गीत प्रदेश तो प्रदेश, देश के अन्य हिस्सों में मेरी आवाज में सुना जाता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलो गणगौर मैया की
1: जय हो।

0: बोलो गणगौर मैया की
1: जय हो।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथ

कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं परिक्रमा।

रंगश्री लिटिल बैले ट्रूप सभागार में रविवार की शाम जैम टुगेदर की धमाकेदार परफॉर्मेंस हुई। लाइव एंटरटेनमेंट और कम्युनिटी एक्सपीरियंस देने वाला ये ग्रुप अब तक 10 शहरों में 30 से ज़्यादा लाइव शो कर चुका है। बॉलीवुड गीतों से सजे इस जैम टुगेदर की ख़ास बात ये थी कि यहाँ हर गीत को इस तरह सेट किया गया कि यह यंगस्टर्स, फैमिलीज, सीनियर सिटीजन और बच्चों सभी को उतना ही कनेक्ट कर सके। शो में ऑडियंस ने ज़बरदस्त तरीके से पार्टिसिपेशन बनाए रखा। हर गीत पर ऐसा लगा जैसे ऑडियंस यहाँ सिर्फ गीत सुनने नहीं पहुँची बल्कि कोरस की तरह साथ निभाने आई है। इस जैम टुगेदर का पैटर्न अनोखा रहा। शुरुआत वार्म अप से हुई, आखिर तक आते आते इंटेंस वर्कआउट वाले गाने गाए गए। ऑडियंस ने भी जमकर एंजॉय किया। इससे पहले इक्वेज जैम टुगेदर का सबसे बड़ा आयोजन मुंबई में हुआ।

मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना के तहत रविवार को सिवनी के शालिनी धुर्वे द्वारा गौंड जनजातीय शैला नृत्य, अनूपपुर की रजनी द्वारा गौंड जनजातीय कर्मा नृत्य और सागर के सुधीर तिवारी द्वारा बधाई नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बुंदेलखंड अंचल में जन्म, विवाह और तीज त्योहारों पर बधाई नृत्य किया जाता है। मनौती पूरी हो जाने पर देवी देवताओं के द्वार पर बधाई नृत्य होता है। इस नृत्य में स्त्रियां और पुरुष दोनों ही नृत्य करते हैं। मंच पर जब बधाई नृत्य समूह के रूप में प्रस्तुत होता है तो इसमें गीत भी गाए जाते हैं। वहीं कर्मा कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य है। ग्रामवासियों में श्रम का महत्व है। श्रम को ही ये कर्म देवता के रूप में मानते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में कर्म पूजा का उत्सव मनाया जाता है। उसमें कर्मा नृत्य किया जाता है, परंतु विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र में बसने वाले आदिवासी कर्म पूजा का आयोजन नहीं करते। इसी के तहत सैला नृत्य शरद ऋतु की चांदनी रातों में किया जाता है।

उस्ताद अलाउद्दीन संगीत एवं कला अकादमी तथा नटराज संगीत विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिनी राष्ट्रीय कथक कार्यशाला का समापन पद्मश्री शोभना नारायण के मार्गदर्शन में हुआ। इसमें 120 प्रतिभागियों ने कथक की बारीकियां सीखी। विद्यार्थियों ने शास्त्रीय नृत्य की तकनीक, लय और अभिव्यक्ति को करीब से समझा। इस दौरान पद्मश्री शोभना नारायण ने प्रतिभागियों को कथक के विभिन्न पक्षों जैसे तत्कार, तोड़े, टुकड़े, हस्तगत निकास, अभिनय, भावभंगिमा और मंचीय प्रस्तुति का अभ्यास कराया। उन्होंने विद्यार्थियों को केवल नृत्य की तकनीक ही नहीं बल्कि कथक की परंपरा, अनुशासन और शास्त्रीय सौंदर्य को भी समझाया। आयोजक अमिता खरे ने बताया कि नई पीढ़ी को शुद्ध और पारंपरिक कथक शैली से जोड़ना है। 30 जून को सभी प्रतिभागी मंच पर प्रस्तुति देंगे।

भविष्य में कोई विशाल क्षुद्र ग्रह फिर पृथ्वी से टकरा सकता है। वास्तव में डायनासोरों के विलुप्त होने का रहस्य क्या था? इन सभी रोमांचक सवालों के जवाब तलाशने और अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से समझने के लिए रीजनल साइंस सेंटर में आगामी 30 जून यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का विशेष आयोजन करने जा रहा है। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलने वाले आयोजन में आम नागरिक और छात्र छात्राएं शामिल हो सकते हैं। वहीं क्षुद्र ग्रह का रास्ता बदलने वाली मशीनों की भी प्रदर्शनी यहां लगेगी। ये दिवस वर्ष 1908 में साइबेरिया के तुंगुस्का क्षेत्र में हुई इतिहास की सबसे बड़ी क्षुद्र ग्रही घटना की याद में मनाया जाता है।

ख्याल ऑडिटोरियम में रविवार की शाम पंचम के गीतों से सराबोर रही। अवसर था अव्वाह क्लब द्वारा आयोजित आरडी पंचम सुभाष घई म्यूजिकल इवनिंग का, जिसमें शहर के शौकिया और प्रोफेशनल सिंगर्स ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। करीब दो घंटे चले इस आयोजन में आरडी बर्मन यानी पंचम दा और सुभाष घई की फिल्मों के लगभग 40 सदाबहार गीत प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के पहले चरण में सुभाष घई की फिल्मों के गीत प्रस्तुत किए गए। शुरुआत कविता राणा ने निंदिया से जागी बहार से की। इसके बाद एक हसीना थी, दो दिल मिल रहे हैं आदि गाने गाए गए। वहीं दूसरे चरण में पंचम दा के सदाबहार गीतों की प्रस्तुति हुई, जिसमें रंजन अवस्थी ने एक अजनबी हसीना से और उसके बाद जीवन के दिन छोटे सही और फिर सच मेरे यार है और इसी तरह के खूबसूरत गाने जैसे हमने तुमको देखा और बाहों में चले आओ ओ मेरे दिल की चैन और ऐसे ढेर सारे रफ़ी साहब के पंचम दा के गाने इस कार्यक्रम में हुए।

वहीं राजधानी का पॉलिटेक्निक कॉलेज ऑडिटोरियम रविवार की शाम बीते दौर के अमर नगमों और सुरीली तानों से गुलजार हो उठा। इसमें इस संगीत संध्या में यादें निसार साहब में कलाकारों ने पुराने दौर के कालजयी गीतों को अपनी मखमली आवाज में पिरोकर श्रोताओं को एक खूबसूरत सफर पर भेज दिया। समारोह में जब मंच से जाने चले जाते हैं, तुझको पुकारे मेरा प्यार और देखा एक ख्वाब जैसे गीतों की धुनें गूंजी तो पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

राजधानी की अनूठी पहल जैम टुगेदर ने बेहद कम समय में भारत के लाइव एंटरटेनमेंट और कम्युनिटी एक्सपीरियंस की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया है। भोपाल की गलियों से शुरू हुआ यह अनूठा बॉलीवुड जैमिंग कॉन्सेप्ट अब तक 6 राज्यों के 10 प्रमुख शहरों में 30 से अधिक सफल शोज कर चुका है। इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड मुंबई में बना, जहां 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ सुर में सुर मिलाकर सामूहिक गायन का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तुलसी साहित्य अकादमी द्वारा सृजन श्रृंखला 58 के तहत पावस वर्षा ऋतु पर केंद्रित कविता पाठ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की में मोहन तिवारी आनंद रहे, जबकि डॉक्टर सुरेश पटवा, डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा, गौरीश और अशोक सिरमल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं लय तरंग क्लब की ओर से शनिवार को शहीद भवन में आयोजित संगीतमय संध्या सभी श्रोताओं के लिए यादगार बन गई। कार्यक्रम में 48 कलाकारों ने सोलो और ड्वेट गीत पेश किए। कार्यक्रम में गीत यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, चांदनी ओ मेरी चांदनी, तेरा साथ है कितना प्यारा, हवा के साथ साथ आवाज दो हमको, मांग के साथ तुम्हारा नाम गुम जाएगा, ये जो मोहब्बत है और कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, जैसे गीतों की प्रभावशाली प्रस्तुतियां हुई। सोलो ड्वेट गीत दोनों श्रेणियों में कलाकारों ने अपनी गायन प्रतिभा को खूबसूरत अंदाज में पेश किया।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: याद करो कुर्बानी।
1: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राजेंद्र लाहिड़ी की। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी काशी के रहने वाले थे। जब वे क्रांतिकारी आंदोलन में आए तो वे हिंदू कॉलेज के छात्र थे। असहयोग के युग के बाद उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो पुनरुत्थान हुआ उसका काशी ही केंद्र बना। काशी में बंगालियों की काफी संख्या थी, इस कारण बंगाल के क्रांतिकारी आकर काशी में अच्छी तरह से छिप सकते थे। जो लोग पहले पहल बंगाल से क्रांतिकारियों के दल की शाखा स्थापित करने के लिए काशी आए थे, उन लोगों ने कल्याण आश्रम नाम से एक फर्जी संस्था बनाई थी। देखने में इस आश्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति था, पर ब्रह्मचारी और सन्यासी लगने वाले युवक भीतर ही भीतर केवल इस बात की टोह लेते रहे कि कौन से युवक ऐसे हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने योग्य हैं। धर्म की आड़ लेकर काशी में काम करना सबसे सरल था। उन लोगों का उद्देश्य था पहले दो एक बंगाली युवकों को पकड़ा जाए, इनके जरिए हिंदी भाषी लोगों को आंदोलन में लाया जाए। बाहर से आए हुए इन लोगों के अतिरिक्त रास बिहारी बोस के जमाने के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल ने भी काशी में संगठन शुरू किया। उनके पुराने साथी सुरेश चंद्र भट्टाचार्य आदि उनके साथ हो गए। इस प्रकार से एक ही साथ उस समय के संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी दल का दो हिस्सों में संगठन होने लगा। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी शचीन्द्रनाथ सान्याल के दल में आ गए। कहना न होगा कि ये परिस्थिति चल नहीं सकती थी, क्योंकि जब उद्देश्य और उपाय एक ही था तो एक ही स्थान में दो दल होने का कोई अर्थ होता ही नहीं था। इसलिए थोड़े ही दिनों के अंदर दोनों दलों के नेताओं में बातचीत शुरू हुई। जो लोग आश्रम बनाकर काम करने आए थे वे बंगाल के अनुशीलन दल के दूत थे, इसलिए बातचीत बंगाल के अनुशीलन दल और शचीन्द्रनाथ सान्याल के बीच हुई। शचीन्द्रनाथ सान्याल बहुत विद्वान और उच्च विचारों के व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि सारे भारतवर्ष के लिए एक ही क्रांतिकारी दल हो और उसकी एक उच्च कमान हो, जहां से सब नीतियों का निर्धारण और दल का संचालन हो। पर अनुशीलन दल तथा बंगाल के दूसरे दल इस सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं थे, यानी वे एक हद तक ही एक होना चाहते थे। क्रांतिकारी दल के ऐसे संगठन में छोटे छोटे संगठन होना इसलिए बहुत बड़ी हद तक सही था कि यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मुखबिर बन जाता तो वो एक दल को ही नष्ट कर सकता था, बाकी सब दल ज्यों के त्यों बने रहते। श्रोताओं, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, उसके पहले आइए सुनते हैं राष्ट्र गौरव का गान।
2: हम

अनुशीलन दल और शचीन्द्र बाबू के दल दीर्घ बातचीत के फलस्वरूप एक दल में परिणत हो गए। सच पूछिए तो इसे दो दलों का एकीकरण नहीं कहा जा सकता, बल्कि अनुशीलन दल जहां तक उत्तर भारत का संबंध है, शचीन्द्रनाथ बाबू के दल के अंतर्भूत हो गया। अनुशीलन दल को शचीन्द्र बाबू के दल में अंतर्भूत इसलिए होना पड़ा कि बनारस के बाहर उनका कहीं पता नहीं था। इनके दूत हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए ये बनारस से, जहां बंगालियों की संख्या बहुत है, आगे नहीं बढ़ सकते थे। शचीन्द्र बाबू की ही चेष्टा से बंगाल के भिन्न भिन्न क्रांतिकारी दलों की एक केंद्रीय कमेटी बंगाल में बनाई गई, पर इस कमेटी ने ढंग से काम नहीं किया। शचीन्द्र दादा ने आसानी से इस कमेटी पर अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया होता और ये इस कमेटी के लिए अच्छा ही होता, पर बंगाल की पार्टियों के विधान में इस प्रकार के बाहरी प्रभाव को, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, बर्दाश्त करने का मुद्दा नहीं था। इसके अतिरिक्त बंगाल ऑर्डिनेंस के कारण समस्त प्रमुख क्रांतिकारी अपने अपने कर्म क्षेत्र से अक्टूबर सन 1924 में धरकर बंद कर दिए गए और इस कमेटी की योजना के लिए कोई अवसर नहीं बचा। इस प्रकार अब बनारस में एक पार्टी हो गई और लोगों को बताया गया कि आगे से हम सब इनके अधीन ही काम करेंगे। राजेंद्र बाबू बहुत ही मीठे स्वभाव के नौजवान थे। उनका चेहरा इतना कोमल था कि उसमें करीब करीब एक लड़की की तरह की कोमलता थी। इसके अतिरिक्त उनके चेहरे पर सदा हंसी छाई रहती थी। उनको प्रथम दृष्टि में देखने पर ऐसा ज्ञात होता था कि वे जीवन की आनंददायक वस्तुओं के लिए पैदा हुए हैं, पर उनकी आंखों में ऐसा कोई तत्व था, एक दृढ़ निश्चय, जिसके कारण वे दूसरी ही गंभीर वस्तुओं के लिए उत्पन्न ज्ञात होते थे। उनको काम करने में फिर भी एक बड़ी दिक्कत थी और वे उस दिक्कत को महसूस भी करते थे। साथियों में से कुछ जो असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल जा चुके थे, व्यावहारिक राजनीति से अधिक परिचित होने का दावा कर सकते थे। भारतीय राजनीति के उन दिनों के चेहरे मोहरे से भी ये साथी परिचित थे। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग राष्ट्रीय विद्यालय तथा कॉलेज के छात्र होने के कारण उस समय की कांग्रेस राजनीति के अंदरूनी दांवपेच से भी परिचित थे, लेकिन राजेंद्र बाबू बिल्कुल ही इस संबंध में अज्ञ थे। जो हो, उन्होंने इन लहरों को पकड़ने की कोशिश की, किंतु लहरों के केंद्रों से दूर रहने के कारण उन्हें चीजों को समझने में बहुत भारी चेष्टा करनी पड़ी। पर राष्ट्रीय कॉलेज या स्कूल के लोग इन्हीं बातों को स्वाभाविक रूप से आसानी से सीख जाते थे। इसके अतिरिक्त जन्म चिन्हों से बचना बहुत मुश्किल है, ये व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों के संबंध में सत्य है। जब दो संगठनों का एक संगठन बना और वे अविभाज्य अंग बन चुके, लेकिन लोग ये नहीं भूल सके कि राजेंद्र बाबू उन पर लादे गए थे, और ये न भूलना कुछ कुछ एक शिकायत के रूप में भी था। यदि राजेंद्र बाबू अपने साथ कुछ क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी ले आते, या यदि उनका क्रांतिकारी जीवन साधारण क्रांतिकारियों से अधिक श्रेष्ठ होता, तो वे अधिक सफल होते, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से, जिस रूप में वो आए थे, उसमें उनको सरदार के रूप में प्रतिष्ठित होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन बातों को इसलिए भी रखा जाना जरूरी है ताकि ये दिखाया जा सके कि पार्टी सब पार्टियों की तरह, यहां तक कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी पार्टी रूस की बाल्शेविक पार्टी की तरह रक्त मांस के मनुष्यों से ही बनी थी। अवश्य ही शचीन्द्र बाबू ने इस प्रकार एक गिरोह पर, जो अपनी शैशवावस्था पार कर चुका था, ऊपर से राजेंद्र बाबू को लादकर गलती की थी, पर उन्होंने इस संबंध में कोई गलती नहीं की कि राजेंद्र बाबू एक दिन अपने समसामयिकों से केवल थोड़े बड़े नहीं, बल्कि बहुत बड़े हो जाएंगे और उनके सामने सभी लोग बौनों की तरह ज्ञात होंगे। अब से 4 साल बाद उनको फांसी होने वाली थी। श्रोताओं, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले आपके लिए प्रस्तुत है ये देशगान।

राजेंद्रनाथ लाहिड़ी हर तरह से दल के लिए उपयोगी होने की चेष्टा करते रहे और वे उसमें सफल भी हुए। जब भी जो काम उन पर पड़ा उन्होंने फौरन ही उसे ग्रहण किया। पहले ऐसा समझा जाता था कि उन्हें केवल संगठन का ही काम दिया जाएगा, पर उन्होंने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ बख्शी आदि काशी के क्रांतिकारी डकैतियों में भाग ले रहे थे और सफलतापूर्वक भाग ले रहे थे, तो वे भी डकैतियों में जाने लगे। इस प्रकार जब दल की तरफ से ये तय हुआ कि केवल बंदूक पिस्तौल के संग्रह तक ही अपने को सीमित न रखा जाए, तो राजेंद्र लाहिड़ी संयुक्त प्रांत की तरफ से बम बनाना सीखने के लिए कलकत्ता भेजे गए। इसलिए जब 26 सितंबर सन 1925 को बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई तो राजेंद्रनाथ लाहिड़ी पकड़े गए। पर जब काकोरी का मुकदमा चालू हुआ था तो उस समय दक्षिणेश्वर के एक मकान में बम का एक कारखाना पकड़ा गया था, जिसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी अन्य कई साथियों सहित गिरफ्तार हो गए। पुलिस ये चाहती थी कि काकोरी और दक्षिणेश्वर दोनों मुकदमों को इकट्ठा कर दिया जाए, पर कानूनी सलाहकारों ने ये कहा कि दोनों मुकदमों को अलग चलाया जाए। तदनुसार दक्षिणेश्वर के बम के कारखानों का अलग मुकदमा चला। इसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 10 साल की सजा हुई। इसके बाद वे एक दंडित कैदी के रूप में लखनऊ लाए गए और वहां पर उन्हें फिर से काकोरी षड्यंत्र का अभियुक्त बना दिया गया। मुकदमे के रुख से ये स्पष्ट हो गया था कि मुख्य मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल के अतिरिक्त राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को भी फांसी की संभावना है। सन 1927 की 6 अप्रैल को अंततः सजा सुनाई गई और मुख्य मुकदमे में 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी भी शामिल थे। श्रोताओं, आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने जब सजा सुनी तो हालांकि वो पूर्णतः तैयार थे, पर उन्होंने बांग्ला में कहा, दुनियादा जैनो बदले गैलो, यानी दुनिया जैसे बदल गई, और फिर अगले ही क्षण वे संभल गए और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही मोहिनी बचपन भरी हंसी आ गई। सजा सुनने के बाद सचमुच सबकी दुनिया बदल गई। थोड़ी देर बाद राजेंद्र लाहिड़ी बोले, मेरी तो थोड़े ही दिनों की तकलीफ है, महीने दो महीने में खत्म हो जाएगी, पर मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है जिन्हें 14-14 और 20-20 साल जेल में सड़ना है। सजा सुनने के बाद दंडित अभियुक्तों ने मिलकर सरफरोशी की तमन्ना ये गीत गाया। पहले ही सब कुछ तैयार था। उसी रात को राजेंद्रनाथ लाहिड़ी गोंडा जेल भेज दिए गए, वहीं उनको फांसी दी गई। ये एक आश्चर्य की बात है कि अपने मुकदमे के 4 फांसी वालों में उन्हें 17 दिसंबर 1927 को फांसी लगी, जबकि बाकी फांसी वालों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई। 14 दिसंबर को उन्होंने एक पत्र लिखा था। वो पत्र इस प्रकार था। उन्होंने लिखा, कल मैंने सुना कि प्रीवी काउंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार कर दी है। आप लोगों ने हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कुछ उठा नहीं रखा, पर मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य मृत्यु से दुख और भय क्यों माने? वो तो नितांत स्वाभाविक अवस्था है, उतनी ही स्वाभाविक जितना प्रातःकालीन सूर्योदय। यदि ये सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मैं समझता हूं कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको मेरा नमस्कार, अंतिम नमस्कार। आपका राजेंद्र। इस तरह इस महान क्रांतिकारी ने अपना सर्वस्व देश की बलिवेदी पर अर्पित कर दिया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

0: तो श्रोताओं, आज हमने इस कार्यक्रम में चर्चा की राजेंद्र लाहिड़ी की। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद।
1: याद करो कुर्बानी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम है शब्दों के शिल्पकार, और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महान कवि नागार्जुन जी की। उनकी मुझे एक कविता याद आ रही है, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीभ कटी है भारत माता मचा न पाती शोर, देखो धसी धसी सी आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। श्रोताओं, ये पंक्तियां हैं प्रगतिवादी और क्रांतिकारी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन की। श्रोता, नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम रखा था। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से बहुत सारी रचनाएं लिखी। चलिए अब हम आपको देते हैं नागार्जुन जी का एक जीवन परिचय छोटा सा।
2: जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं।
1: बिल्कुल ठीक।
2: जन कवि बाबा नागार्जुन की ये पंक्तियां उनके जीवन दर्शन, व्यक्तित्व और साहित्य का दर्पण है।
1: जी हाँ।
2: साहित्य जगत में बाबा के नाम से मशहूर नागार्जुन जी अपने समय की हर महत्वपूर्ण घटना पर तेज तर्रार कविताएं लिखने वाले एक ऐसे ही क्रांतिकारी, हरफनमौला शख्सियत थे, जिन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं और कई भाषाओं में लेखन कर्म के साथ साथ जन आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका नेतृत्व भी किया।
1: हाँ श्रोता, 23 जून 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी बना जिसने अपनी बेबागी से अपनी पहचान बनाई। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था। सतलखा उनके पैतृक ग्राम तेरानी जिला दरभंगा के निकट ही है।
2: नागार्जुन का जन्म निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका बचपन घोर अभावों में बीता। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे जो जीवित बचे थे। 4 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तब उनकी बुआ ने उनका लालन पालन किया।
1: श्रोता, 1925 में नागार्जुन जी ने गमोली प्राथमिक पाठशाला में प्रथम और मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय में ग्रहण की और वहां से साहित्याचार्य की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1 वर्ष कलकत्ता में रह करके उन्होंने काव्य तीर्थ की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे श्रीलंका चले गए जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और वैद्यनाथ नाम त्याग करके नागार्जुन नाम ग्रहण कर लिया। बाद में उन्होंने श्रीलंका के किटोलेन विद्यालय में पाली भाषा का अध्यापन किया।
2: 1930 में जब वे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वापस स्वदेश लौटे तो उनके जाति भाई ब्राह्मणों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर सन्यासी बनने पर ससुराल वालों ने उनके पिता को कसूरवार ठहराया और हिदायत दी कि दामाद को वापस जाति में आने को कहें, नहीं तो उन्हें जेल भिजवा देंगे। बाबा नागार्जुन जी ने कभी भी ऐसी बातों की परवाह नहीं की।
1: श्रोता, नागार्जुन जी के साहित्य जगत में बाबा के नाम से मशहूर बाबा नागार्जुन अपने निराले अंदाज के लिए भी खासे चर्चित रहे। उस समय के आलोचकों की आलोचना और व्यंग को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने कर्म पथ का निर्माण स्वयं किया। नागार्जुन जी व्यवहार और विचार के बीच तालमेल बना करके चलते थे। वे जैसा लिखते थे वैसा ही जीवन में भी जीते थे। अपनी कविताओं में उन्होंने मानवता का परिचय बहुत ही कुशलता से पेश किया।
2: श्रोताओं, जनकवि तो वो थे ही, लोगों ने उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा। घुमक्कड़, निडर और अलमस्त जीवन शैली के बाबा नागार्जुन बहुत आत्मीय भी थे। बेतरतीब, बेरखरखाव वाली दाढ़ी और उलझे बाल उनकी पहचान बन गए। खादी का पैजामा, खादी का कुर्ता, पैर में चप्पल, कंधे पर गमछा और खादी का झोला उनकी पहचान थे। नागार्जुन जी सांस्कृतिक पहचान को बचाने वाले कवि थे।
1: हाँ श्रोताओं, सामाजिक चेतना और जनता का शोषण उत्पीड़न के कारण इनका झुकाव मार्क्सवाद चिंतन की ओर हुआ। कृषक नेता स्वामी सहजानंद के साथ उन्होंने बिहार के अनेक किसान आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और बाद में जेपी आंदोलन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।
2: श्रोताओं, जीवन में उन्होंने कभी नौकरी या व्यवसाय का आश्रय नहीं लिया और खेती के लिए गांव में पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण जीवन भर वो इधर से उधर घूमते रहे। वो खूब घूमते थे पर उन्हें ना तो स्टेशन पर कोई लेने जाता और ना ही छोड़ने।
1: उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से संपूर्ण भारत को समग्रता के साथ समाहित किया। अपनी लय और स्पष्ट बयानी के चलते नागार्जुन हिंदी में सबसे अधिक पठनीय कवि हैं। सीधे सीधे दो टूक बात करना उनकी विशेषता थी।
2: नागार्जुन जी जिंदगी के छोटे छोटे विषय को उठाकर कविता में ले आए। कविता फेंकनी में उन्होंने फेंकनी नामक दूध देने वाली ग्वालिन का उसके पैसे बचाने का वर्णन किया।
1: जरा बताइए हमारे श्रोताओं को क्या था वर्णन।
2: जा हुआ साथी संगी की कमी नहीं होगी, टुन टुन जा रही है सपरिवार, मैना फूफी भी जाएगी और बार काका भी जाएंगे, क्या ग्वाल गोंद क्या तेली सूरी, सबके सब जा रहे गंगा नहाने, दशहरा आया तू भी हुआ, क्या करेगी पैसा बचाकर।
1: श्रोताओं, ऐसा आत्मीय संबंध कहीं और नहीं दिखता। उनकी कविता पढ़ते हुए लगता है कि गांव की चौपाल में बैठे हैं। उन्होंने बरसात में पर निकाल करके मरने को आतुर चीटी पर भी एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूं। पर निकले तो चीटी बोली, आसमान की ऐसी तैसी, इतना खुला नहीं है यह, मुझको उड़ान भरनी है जैसी, शीशम की निचली टहनी की नर्म छाल से पर उड़ गए, उड़ने की कोशिश करते बेवकूफ के पंख झड़ गए, बेवकूफ के पंख झड़ गए।
2: कमजोर को हमदर्दी और प्यार बांटते थे लेकिन ताकतवर और स्वार्थी लोगों का उपहास करना भी वो भूलते नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कवि का सबसे ज्यादा महत्व इनकी राजनीतिक कविताओं के माध्यम से उजागर हुआ। आजाद भारत के शासक या घटना उनकी कलम के घेरे में आते रहे। क्रोध, कटुता, ताने सब उनकी कविता में आता था। उन्होंने साहित्यकार के व्यक्तित्व को साहित्यकार के नाते पूर्ण मान्यता दिलवाने का संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि बाबा नागार्जुन किसी से डरते नहीं थे, डरते थे अपनी हिंदी बोलने वाली आम जनता से। अपने बारे में कहते थे, हम तो भई निहायत ही मामूली किस्म के अदना से आदमी ठहरे, पढ़ती हैं उलझन सुलझा भी लेते हैं, कैसी भी गांठ हो खुल ही जाती है, मोटी अकल है, अटपटे बोल हैं, शऊर है ना कुछ भी।
1: श्रोताओं, आम भारतीय किसान की तरह वे रहे, वे उसी के जीवन के मुहावरों में जीते, बोलते, सोते थे। साधारण जनजीवन के सुख दुख पर लिखते हुए उन्होंने सहज सरल बोल चाल के मुहावरे शब्दों को अधिक प्रयोग किया और उनके काव्य की विशेषता यह रही कि इन्होंने साहित्य जगत के जाने माने व्यक्तियों पर भी कविताएं लिखी, जिसमें कालिदास, रवि ठाकुर, भारतेंदु और त्रिलोचन शामिल हैं।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि नागार्जुन जी बाबा कहलाना पसंद करते थे, नई पीढ़ी को बहुत प्यार करते थे। गांव जाने में उनकी खासी दिलचस्पी थी। वे नित्य कवि थे और मनमौजी मूडी भी थे। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी सबका ज्ञान उन्हें था।
1: श्रोताओं, क्रांतिकारिता में उनका जबरदस्त विश्वास था, इसलिए वह जयप्रकाश की अहिंसक क्रांति को समर्थन करते थे।
2: मार्क्सवाद से वो गहरे प्रभावित रहे लेकिन मार्क्सवाद के तमाम रूप और रंग देखकर वो खिन्न थे। इसी तरह उन्होंने जयप्रकाश नारायण का समर्थन जरूर किया लेकिन जब जनता पार्टी विफल रही तो बाबा नागार्जुन ने जयप्रकाश को भी नहीं छोड़ा। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। लेकिन इसके लिए उनकी आलोचना भी होती थी, बाबा की कोई विचारधारा ही नहीं, बाबा कहीं टिकते ही नहीं है, ऐसा लोग कहते। बाबा नागार्जुन का मानना था कि वो जनवादी हैं, जो जनता के हित में है वही मेरा बयान है, मैं किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं गरीब, मजदूर, किसान की बात करने के लिए ही हूँ। उन्होंने गरीब को गरीब माना, उसे किसी जाति या वर्ग में नहीं बांटा। तमाम आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने शुद्ध और अच्छा लेखन कार्य किया।
1: श्रोताओं, सन 1939 में बाबा नागार्जुन स्वामी सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस जी के संपर्क में आए। छपरा के उमुबारी में किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। छपरा और हजारीबाग जेल में कारावास भोगने के तुरंत बाद वे हिमालय और तिब्बत के जंगली इलाकों में भ्रमण के लिए निकल गए थे।
2: 1941 में दूसरे किसान सभाई नेताओं के साथ भागलपुर केंद्रीय कारागार में भी वे बंद रहे। इसी दौरान वे गृहस्थ आश्रम में लौट आए।
1: श्रोताओं, नागार्जुन की पहली कविता लोहार के विश्व बंधु साप्ताहिक में प्रकाशित हुई थी। पहला काव्य संग्रह युगधारा 1953 में छपा। ये सच कहने और स्वीकारने का साहस नागार्जुन जैसे फक्कड़ और घुमक्कड़ ही कर सकते थे। आपातकाल के विरोध में लिखी गई उनकी कविताएं खिचड़ी विप्लव देखा हमने कविता संग्रह में प्रकाशित हुई। ये कविताएं अपनी पैनी धार के लिए आज भी याद की जाती हैं। श्रोताओं, सत्ता के जन विरोधी नीतियों का उन्होंने हमेशा डट करके विरोध किया। भले बुरे परिणाम की उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की।
2: बाबा नागार्जुन की सबसे लोकप्रिय कविताएं वो हैं जिनमें सरल और सहज रचना है। इनकी कविताओं में धारदार व्यंग्य का प्रयोग अधिक है। इन कविताओं में शासन की बंदूक, प्रेत का बयान, अकाल जैसी कविताएं प्रमुख हैं। अकाल का वर्णन करते हुए कवि कहता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद।
1: श्रोताओं, एक कवि, एक रचनाकार और एक सरल हृदय व्यक्ति के रूप में बाबा नागार्जुन समाज के हर कोने में बसे हुए हैं। जन समस्याओं का कोई भी रूप उनकी नजर से नहीं बचा जिस पर उन्होंने बेबाक टिप्पणी ना की हो। उनके लोकप्रिय उपन्यास है रतिनाथ की चाची, जो 1948 में प्रकाशित हुई, बलचनामा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेरननाथ 1954 में, दुखमोचन 1957 में, वरुण के बेटे 1957 में, और उसी तरह से उग्रतारा, कुंभी पाक, पारो, आसमान में चांद के तारे, ये उनके लोकप्रिय उपन्यास रहे हैं। इसी तरह से श्रोताओं, उनके कविता संग्रह हैं अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर कौन ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने और रत्नागर आदि।
2: उन्होंने कुछ बाल साहित्य भी रचा, कथा मंजरी भाग एक, कथा मंजरी भाग दो, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियां, अभिनंदन नाम से एक व्यंग्य भी लिखा और उनका निबंध संग्रह था अन्नहीनम क्रिया नाम।
1: श्रोता, उन्होंने बंगला में भी रचनाएं लिखी, जो उनकी रचना थी मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा, और मैथिली रचनाओं में हीरक जयंती उपन्यास और पत्रहीन नग्न गाथ कविता संग्रह। इन कृतियों में नागार्जुन जी का सामाजिक समस्याओं से सीधे लेखक के रूप में सामना होता है। उन्होंने कहीं तो आंचलिक परिवेश में, कहीं ग्रामीण परिवेश में सुख दुख की कहानी कही है, और कहीं मार्क्सवादी सिद्धांतों की झलक देते हुए सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है, और कहीं कहीं समाज में व्याप्त शोषण और कुरीतियों पर अपनी आवाज उठाई है।
2: कवि नागार्जुन को बहुत से सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। बाबा नागार्जुन को उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाच के लिए सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में भी नामांकित कर सम्मानित किया।
1: श्रोताओं, हिंदी काव्य मंच पर अपनी सत्यवादिता और बिना लाग लपेट किए अपनी बात कहने वाली जन कवि बाबा नागार्जुन 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में यह रचनाकार हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। बाबा नागार्जुन जन कवि थे। वे अपनी कविताओं में आम लोगों के दर्द को बयां करते थे। बाबा नागार्जुन ने कविताओं के जरिए एक नहीं कई लड़ाइयां लड़ी हैं।
2: लोकप्रिय होना किसी की कमजोरी नहीं, उसकी मजबूती है। अगर वो लोकप्रियता के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करता, अगर वो सत्य, जनता और अपने आप से दगाबाजी नहीं करता।
1: अंत में श्रोताओं, उनकी एक महान कविता मेरी भी आभा है इसमें के द्वारा हम जन कवि बाबा नागार्जुन को शत शत नमन करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी ये कविता।
2: नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा एक विशेष कार्यक्रम महान कवि नागार्जुन पर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। अब हमें आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी देशभक्त थे, केवल ऐसा कहना उन्हें छोटा करना होगा। वे तो सन्यासी थे, सन्यासी के लिए फिर देश क्या और समाज क्या। सन्यासी तो देश काल से परे होता है। वस्तुतः वे मनुष्य से प्रेम करते थे, उन्होंने मनुष्य में ही ईश्वर को देखा था। वे सभी देशों के मनुष्यों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। जो दुर्बल, अक्षम तथा पीड़ित थे, फिर वे चाहे जिस किसी देश के मनुष्य क्यों ना हों, उनके विशेष प्रीति भाजन थे। स्वामी जी को निग्रो समझकर अमेरिका के एक होटल में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वे निग्रो नहीं हैं। जो सताए हुए थे वे ही उनके सम जातीय थे, इसलिए निग्रो उनके भाई थे, मिश्र की पतिताएं उनकी बहन थी।
1: फिर भी भारतवर्ष के लोगों के प्रति उनकी संवेदना अधिक थी। भारत के दलित उनके भाई, उनके रक्त थे। भारत उनके बचपन का झूला, यौवन की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी थी। भारत का प्रत्येक धूल कण उनके लिए पवित्र था। भारत के प्रति उनका इतना आकर्षण क्यों था? क्योंकि भारत पुण्य भूमि है, भारत ऋषियों का देश है, भारत ने सिखाया है सत्य के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है, किंतु किसी चीज के लिए सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता।
0: भारत सत्य की साधना में डूबा हुआ है, भारत ही सत्य है। भारत की मृत्यु होने से सत्य की मृत्यु होगी, जितनी उच्च भावनाएं हैं सबकी मृत्यु होगी। इसी सत्य की साधना के कारण भारत पुण्य भूमि है, क्योंकि सत्य ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। भारत वैश्विक क्षेत्रों में कमजोर हो सकता है, पर उच्च चिंतन के क्षेत्र में वो सभी देशों का सिरमौर है।
1: भारत ज्ञान पीठ है, भारत ज्ञान चर्चा में संपूर्ण शक्ति लगाता आया है, इसी से वो दरिद्र है। भारत तपस्वी, साधक, ब्राह्मण है, उसके ज्ञान के आलोक से संपूर्ण पृथ्वी आलोकित है। थोड़े बहुत सारे देश उसके ऋणी हैं, उसने सदैव दिया ही है, कुछ लिया नहीं। भारत आज भी बहुत कुछ दे सकता है। वस्तुतः संपूर्ण पृथ्वी आज भी भारत की ओर आंख उठाए देख रही है।
0: भारत गरीब है, इसलिए दूसरे राष्ट्र भारत को अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए स्वामी जी ने चाहा था कि भारत पाश्चात्य विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का आश्रय ले। स्वामी जी ने गौर किया था कि दरिद्रता की मार से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया है। इसी से उन्होंने कहा,
2: पहले अन्न फिर बाद में धर्म।
0: उनके गुरुदेव ने भी कहा था,
3: खाली पेट में धर्म नहीं रहता।
0: वैश्विक सुख स्वच्छंदता की आवश्यकता तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। भोग के उपकरण प्रचुर हो, जीवन सुख स्वच्छंदता से भरा हो, जीवन मान यश से उन्नत हो, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य में मनुष्यत्व का भी विकास हो।
1: स्वामी जी वेदांत में विश्वास करते थे। वेदांत के मतानुसार मनुष्य में ईश्वर है, लेकिन मनुष्य इसे नहीं जानता, उसे ये सिखाना होगा। वैश्विक प्राचुर्य के साथ ही उसमें ऐसा क्रम विकास हो जिससे वो जान सके कि वो ईश्वर है। उन्नति का अर्थ केवल वैश्विक उन्नति नहीं, बल्कि वास्तविक उन्नति है मनुष्य के चरित्र में, उसके अंतर्निहित दैवत्व में। स्वामी जी कहते थे, यदि एक व्यक्ति बुद्ध हो सकता है तो हम में से प्रत्येक बुद्ध हो सकता है। हम में से प्रत्येक में ये संभावना है। जीवन का उद्देश्य है उस संभावना को प्रकट करना। केवल बाहरी संपत्ति अर्जित करना यथेष्ट नहीं, अंदर की संपत्ति भी अर्जित करनी होगी।
0: अंदर की संपत्ति यानी सत्यानुराग, प्रेम, प्रीति स्वार्थहीनता, दूसरों के सुख में स्वयं सुखी होना, दूसरों के दुख में स्वयं दुखी होना, यही धर्म का सार है। स्वामी जी का विश्वास था कि धर्म के साथ विज्ञान का समन्वय किया जा सकता है। विज्ञान के द्वारा बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त की जाती है और धर्म के द्वारा अंतर प्रकृति पर। विज्ञान के द्वारा उद्योग विस्तार, कल कारखानों का निर्माण, भोग के उपकरण में वृद्धि तथा जीवन यात्रा सहज और स्वच्छंद किया जा सकता है, लेकिन क्या वही सब कुछ है? मनुष्य यदि मनुष्य ना रहे, पशु हो जाए, दुष्ट हो जाए, स्वार्थ परक और दुर्नीति परायण हो जाए, तो क्या कोई समाज अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है? तो क्या कोई सभ्यता अंत तक बची रह सकती है?
1: इसलिए जरूरत है सच्चे मनुष्यों की, निस्वार्थ सेवा परायण उदार हृदयवान मनुष्यों की, ऐसे मनुष्यों की जो केवल अपने सुख की बात न सोचें, सभी के सुख की बात सोचें, जो सभी संकीर्णताओं से ऊपर हो, जो भाषा धर्म और जाति का भेद भूलकर मनुष्य को मनुष्य के नाते श्रद्धा करे, जो दूसरों को अपना बना सके, ऐसे मनुष्य धर्म के द्वारा ही तैयार होते हैं। धर्म ही मनुष्य को उदार बनाता है, प्रेमी बनाता है, सत्यनिष्ठ बनाता है। धर्म माने धर्म मत नहीं, धर्म माने सत्य, प्रेम, क्षमा, निस्वार्थ परता इत्यादि। यही धर्म विज्ञान से युक्त हो, ऐसा स्वामी जी ने चाहा था। भारत इसे ही अपना जीवन दर्शन मानता है। ये जीवन दर्शन ही भारत का वैशिष्ट्य है। स्वामी जी ने चाहा था इसी जीवन दर्शन की नींव पर भारत एक नया समाज गढ़ेगा। इस प्रकार भारत विश्व के सामने एक नया उदाहरण स्थापित करेगा।
0: स्वामी जी कहते थे कि भारत का राष्ट्रीय पाप ये है कि वो अपने जन साधारण की अवज्ञा करता आया है। इसी पाप के कारण भारत इतना दुर्बल हो रहा है तथा बार बार वो विदेशी शक्तियों के द्वारा पददलित हुआ है। जन साधारण का बहुत बड़ा अंश है दलित, अर्थात परिश्रम करके जीने वाले मनुष्य, जो खेतों में खेती करते हैं, कल कारखानों में हथौड़ी चलाते हैं, वे ही धन उपार्जित करते हैं, लेकिन वे ही उस धन से वंचित हैं।
1: सभी देशों में यही हो रहा है, भारत में यही हो रहा है, लेकिन स्वामी जी ने समझा था कि अब परिवर्तन आएगा, सभी देशों में आएगा। दरिद्रों का रक्त शोषण चिरकाल तक कभी भी नहीं हो सकेगा, पर दलितों के हाथ में क्षमता आने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। जो कार्य क्षमता की डोर संभाले, वे यदि योग्य मनुष्य न हो तो साधारण मनुष्य जिस अंधेरे में पड़ा है उसी में पड़ा रहेगा। पद का भी एक नशा होता है, एक बार जो पदारूढ़ होता है वो पद छोड़ना नहीं चाहता। केवल इतना ही नहीं, वो अपने पद का दुरुपयोग भी करता है, दलित भी दलित के ऊपर अत्याचार करता है।
0: सामर्थ्य को पचा पाना बहुत कठिन है। जो धर्म प्राण व्यक्ति है, जिसका चरित्र धर्म के आदर्श से गठित है, वही पद सामर्थ्य को पचा सकता है, वही सेवा भाव से अपना कार्य करेगा। वो सोचेगा कि पद आत्म तृप्ति के लिए नहीं है, वरन लोक कल्याण के लिए है। सेवा करने का अवसर पाकर वो स्वयं को धन्य मानेगा। उसका जीवन स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए होगा। ये त्याग और सेवा ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श है। स्वामी जी ने चाहा था कि इस आदर्श से अनुप्राणित लोग ही पदभार संभालें।
1: स्वामी जी ने चाहा था कि दलितों की सेवा के लिए 1,00,000 युवक आगे आए। वे लोग अजेय शक्ति से देश के ऊपर टूट पड़ेंगे, यही थी उनकी आशा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि वे मनुष्य के समान मनुष्य बने, जो बुद्धि, हृदय, कर्म शक्ति एवं निस्वार्थ सेवा का मनोभाव लेकर वे घर घर जाकर मनुष्यों को जगाएंगे। इसी सेवा को उन्होंने शिव ज्ञान से जीव सेवा का नाम दिया है। यही है युग धर्म। इसमें मैं नहीं, केवल तुम ही ईश्वर हो, अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रीति का भाव लेकर दलितों की सेवा करना।
0: ये सेवा बुद्धि ना रहने से पद का दुरुपयोग अवश्य संभावी है। ये दुरुपयोग न हो, इसलिए स्वामी जी ने बार बार कहा था।
2: देश तो स्वाधीन होगा ही, लेकिन जिससे स्वार्थी लोग पद का दुरुपयोग ना करें, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि धर्म के उच्चतम चिंतन द्वारा संपूर्ण देश में एक प्रवाह बहा दें। इससे देशवासियों के मन में इस चिंतन की तह जमेगी। इस चिंतन की तह पर नूतन समाज का, नूतन सभ्यता की भित्ति गढ़ उठेगी, तभी दलित शासन सार्थक होगा।
0: स्वामी जी ने इस कार्य में युवा समाज को आगे आने का आह्वान किया था।
1: देश स्वाधीन हुआ, अब देश को गढ़ने की बारी है। इस कार्य में युवा समाज हाथ लगाए, यही स्वामी जी की प्रत्याशा थी। ये कार्य लोग किसी प्रकार की पद प्राप्ति की इच्छा से नहीं करेंगे। पद उनका लक्ष्य नहीं होगा, उनका लक्ष्य होगा जो दुर्बल, दरिद्र, अक्षम है, उनकी सेवा करना। ये सेवा त्याग की नींव पर स्थित होगी, किसी प्रकार के लाभ की आशा से नहीं, अपनी आशा आकांक्षा पूर्ण करने के उद्देश्य से नहीं। जो नेता होंगे, जो देश चलाएंगे, वे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से स्वयं को उत्सर्ग करेंगे। यही था स्वामी जी का संदेश। ये त्याग केवल युवा समाज ही कर सकता है, इसीलिए स्वामी जी आशा पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर निहार रहे थे।
0: एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि इस संसार में महापुरुषों को पहचानना आसान है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये उक्ति विशेष रूप से सटीक प्रतीत होती है। साधारणतः लोग उन्हें श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मानस पुत्र, सर्वत्यागी सन्यासी, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता तथा हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ही भक्ति करते और पूजते हैं।
1: यद्यपि यही स्वामी जी का वास्तविक परिचय है, तथापि ये उनके अनन्य अपूर्व व्यक्तित्व का केवल एक श्रेष्ठ अंश मात्र है। धर्म जगत के बाहर भी देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका अमूल्य अवदान है, वो सर्वदा हम स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन बिना इसे जाने स्वामी जी के अपूर्व व्यक्तित्व के संबंध में ठीक ठीक धारणा करना संभव नहीं। एक प्राचीन उदाहरण के द्वारा हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। कुछ अंधे व्यक्ति एक हाथी देखने गए। हाथी के शरीर के विभिन्न अंगों को हाथ से टटोला। उन्होंने अलग अलग निष्कर्ष निकाला। जिसने उनके पैरों को टटोला, उसने सोचा कि हाथी एक खंभे के समान है। जिसने उनके कान को टटोला, उसने सोचा कि हाथी का शरीर सूप के समान है, इत्यादि इत्यादि।
0: उसी प्रकार यदि हम लोग स्वामी जी को केवल धर्म प्रचारक सन्यासी के रूप में सोचें, तो उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा और अवदान के संबंध में हम लोगों की धारणा बिल्कुल गलत होगी। उनके व्यक्तित्व के और भी इतने पहलू थे कि किसी एक गुण के द्वारा ही वे ख्याति अर्जित कर सकते थे।
1: उदाहरण स्वरूप बंग साहित्य में बोलचाल की भाषा के प्रचलन की बात की जा सकती है। सामान्य लोगों का विश्वास ये है कि सर्वप्रथम प्रयत चौधरी ने ही सबुज पत्र नामक मासिक पत्रिका में इसका व्यवहार किया। वो पत्रिका 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई, लेकिन इसके बहुत पहले ही स्वामी जी ने भाववार कथा यानी चिंतनीय बातें प्राच्य और पाश्चात्य परिव्राजक इत्यादि ग्रंथों में बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण ये समस्त ग्रंथ ही हैं। इसीलिए इसके विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है।
0: लेकिन धर्म जगत के बाहर इसकी अपेक्षा स्वामी विवेकानंद का महान वैशिष्ट्य उनके स्वदेश प्रेम, देशात्म बोध और राष्ट्रीय चेतना में है। ये सब उनके भाषण और रचनावली में इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि उसके समर्थन में प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी कुछ एक घटनाओं का उल्लेख हम करेंगे।
1: लंदन से भारत वापसी के ठीक पूर्व एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था,
4: स्वामी जी, 3 वर्षों तक शक्ति, ऐश्वर्य और विलासिता के केंद्र पाश्चात्य देशों में रहने के बाद अपने देश लौटकर आपको कैसा लगेगा?
1: तब स्वामी जी ने उत्तर दिया,
2: यहाँ आने के पहले भी मैं अपनी जन्मभूमि भारत वर्ष को प्यार करता था, लेकिन अब भारत का प्रत्येक धूल कण मेरे लिए पवित्र है, उसकी हवा मेरे लिए पवित्र है, भारत मेरा तीर्थ स्थान है।
0: संसार त्यागी सन्यासी होते हुए भी स्वामी जी का देश प्रेम अतुलनीय था। निवेदिता ने लिखा है,
5: उस समय उनसे प्रायः प्रतिदिन मेरी भेंट होती थी। भारत का चिंतन ही उनका ध्यान ज्ञान था।
0: अन्यत्र निवेदिता ने स्वामी जी के सर्व जाति प्रेम का उल्लेख कर उनकी स्वजाति वात्सल्य के संबंध में कहा है,
5: जिस मुहूर्त मैंने उनके साथ भारत में पदार्पण किया था, उसी क्षण से उनकी मृत्यु पर्यंत मैंने अपने गुरुदेव में अग्नि की एक निरंतर दहन ज्वाला को देखा था। वह कोई तत्व, कोई आध्यात्मिक सत्य की उपासना या उन्मादना नहीं थी, वो था देश और जाति की दुर्दशा निवारण का प्राणपण प्रयास और उसकी निष्फलता के कारण मर्मांतक पीड़ा।
1: स्वामी जी का देश प्रेम केवल मानसिक भावावेग नहीं था, उन्होंने देश की स्वाधीनता अर्जन करने के लिए युवकों को अनुप्रेरणा दी थी। 1901 ईस्वी में ढाका के युवकों का एक दल उनसे उपदेश सुनने आया। उन्होंने उनसे कहा,
2: बंकिम चंद्र की पुस्तकों को पढ़ो, आनंदम की संतानों के समान देशभक्त बनो। तुम लोगों का प्रधान कर्तव्य जन्मभूमि की सेवा है, सबसे पहले चाहिए राजनीतिक स्वाधीनता।
1: उन्होंने अन्य युवकों के एक दल से कहा था,
2: आगामी 50 वर्षों के लिए हमारी गरीयसी भारत माता ही हमारी आराध्य देवता है, अन्यान्य व्यर्थ के देवताओं को इन कुछ वर्षों के लिए भूल जाने में कोई हानि नहीं है। अन्यान्य देवता लोग सो रहे हैं, तुम्हारी स्वजाति यही देवता ही एकमात्र जाग रहे हैं।
0: स्वामी जी ने स्वदेश चिंतन को धर्म चर्चा से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया था। राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी समकालीन राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा उनकी राजनीतिक दृष्टि बहुत अधिक दूरगामी थी। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति की निंदा करते हुए उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा की थी,
2: भिक्षा के द्वारा देश की स्वाधीनता अर्जित नहीं की जा सकती, हमें अपनी शक्ति पर निर्भर होना होगा।
1: एक अन्य विषय में भी स्वामी जी ने कांग्रेसी नेताओं के अधिकतम ज्ञान और उनकी दूरदृष्टि का परिचय दिया था। कांग्रेस का गठन शिक्षित मध्यवित समुदायों के प्रतिनिधियों को लेकर हुआ था, लेकिन स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम घोषणा की,
2: भारत के पिछड़े वर्ग, मूर्ख, दरिद्र, कृषक, श्रमजीवी, एक शब्द में कहें तो समग्र जनशक्ति के जागरण के बिना भारत की स्वाधीनता संभव नहीं।
0: उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से भारत के भविष्य को देखते हुए कंपित कंठ से घोषणा की थी,
2: ये सभी समुदाय सदा से निपीड़ित, अवहेलित कृषक, मछुआरे, बनिए तथा दूसरे कल कारखानों के श्रमिक लोग ही भारत में स्वाधीनता लाएंगे तथा भविष्य में प्रमुख पद प्राप्त कर भारत की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: इस संबंध में स्वामी जी की बहुत सी युक्तियाँ उनके भाषणों और ग्रंथों में मिलती हैं।
1: भारत के उच्च वर्णों के प्रति स्वामी जी ने कहा है,
2: तुम लोग हो 10,000 वर्ष के पुराने ममी। तुम्हारे पूर्वजों ने चलायमान शमशान कहकर जिनसे घृणा की है, आज भारत का जो भी वर्तमान जीवन है वो उनसे ही है। और चलायमान शमशान हो तुम लोग। तुम लोग शून्य में विलीन हो जाओ और नवीन भारत निकल पड़े।
0: इन लोगों ने सहस्रों वर्षों से अत्याचार सहा है, चुपचाप सहा है, और उससे पाई है अपूर्ण सहिष्णुता। हमेशा से दुख भोगा है और उससे पाई है अटल जीवनी शक्ति। और तुम हो अतीत के अस्थि पंजर, यही है तुम्हारे सामने भारत के भविष्य के उत्तराधिकारी।
1: इन सब का मूल स्रोत है उनके गुरु श्री राम कृष्ण के 2 मंत्र,
3: जीवों के प्रति शिव ज्ञान और दरिद्र नारायण।
1: इसी के प्रभाव से इस ग्रह त्यागी सन्यासी ने कहा था,
2: मेरे लिए इन निर्धन चिर निपीड़ित मनुष्यों की उन्नति अपने मोक्ष लाभ की अपेक्षा एक महत्तर उद्देश्य और आदर्श है।

0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के संबंध में कहा है,
1: भारतवर्ष था स्वामी जी के गंभीर आवेग का केंद्र, भारतवर्ष था उनका दिवा स्वप्न, भारतवर्ष था उनकी रात्रि का दुः स्वप्न। केवल इतना ही नहीं, वे स्वयं हो गए थे भारतवर्ष, हो गए थे रक्त और मांस की गढ़ी भारत प्रतिमा। स्वामी जी ने एक बार स्वयं अपने बारे में कहा था कि वे घनीभूत भारत हैं। वस्तुतः स्वामी जी की संपूर्ण सत्ता से मानो भारत प्रेम फूट पड़ता था।
0: भगिनी क्रिस्टीन ने कहा है,
2: जब वे इंडिया का उच्चारण करते थे तब उनमें इतना गर्व, इतना प्रेम और इतना अपनापन झलकता था कि जो भी उसे सुनता वही भारत वर्ष से प्रेम करने लगता। स्वामी जी के मन में भारत वर्ष के प्रति इतना प्रेम केवल इसलिए नहीं था कि भारतवर्ष उनकी मातृभूमि है, ये प्रेम आदर्श की नींव पर स्थित था, जिस आदर्श के लिए उनका जीवन उत्सर्गीकृत था, उसी आदर्श को उन्होंने भारतवर्ष में साकार रूप में देखा था, इसीलिए उनका इतना भारत के प्रति प्रेम था। विवेकानंद ने यदि दूसरे देश में जन्म ग्रहण किया होता तब भी भारतवर्ष से इतना ही प्रेम करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत

0: थे उन स्थानों को भी देखा, क्योंकि भारत को जानने के लिए ये सब स्थान भी उनके लिए आवश्यक उपादान थे। उन्होंने कन्याकुमारी के अंतिम शिलाखंड पर बैठकर भारत का ध्यान किया था। हम लोग पहली बार ही एक ऐसे सन्यासी को देखते हैं जिसके ध्यान का विषय है देश। उनकी भारत परिक्रमा वास्तव में भारत का अन्वेषण था।
1: मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करता है। स्वामी जी ने भारतवर्ष की उपलब्धि करने के लिए साधना की है, और उनकी आराध्या देवी भारत माता ने भी मानो उनकी साधना से प्रसन्न होकर अपना संपूर्ण रहस्य उनके सामने उन्मोचित कर दिया है। इसीलिए भारतवर्ष के अतीत का इतिहास, उसकी वर्तमान की समस्या और प्रयोजन तथा उसका संभावित भविष्य, सब कुछ विवेकानंद के भारत चिंतन में स्पष्ट रूप से झलकता है।
0: विवेकानंद ने भारत की शक्ति और दुर्बलता दोनों को ही जाना। उन्होंने केवल भारत के गौरव की ही बात नहीं की, वरन उसका लज्जाजनक चित्र भी अंकित किया। फिर भी निंदकों के सामने उन्होंने भारतवर्ष को और भी निंदनीय करने की अभद्रता नहीं की। उन्होंने सर्वत्र सत्य ही कहा। विदेशियों के सामने भारतवर्ष के गौरव का यथार्थ चित्र अंकित किया है, और स्वदेशियों के सामने आत्म संशोधन के लिए गौरव के साथ साथ त्रुटियों की सच्ची तस्वीर भी खींची है। निवेदिता ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है,
2: भारत के त्रुटियों के प्रति वे अत्यंत कठोर थे। भारतवासियों के सांसारिक ज्ञान के अभाव के प्रति निर्मम थे। फिर भी भारत के भविष्य के गौरव की बात सोचकर उनके समान सराबोर होते किसी और को नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि भारत के गुण दोषों को स्वामी जी अपने व्यक्तिगत चरित्र के गुण दोषों के रूप में देखा करते थे। इसीलिए वे इस देश के दोषों के संबंध में जैसे निर्मम थे, वैसे ही वे भविष्य के भारत के सुख स्वप्न को लेकर विभोर थे।
1: स्वामी जी धर्म को भारत की प्राण शक्ति के रूप में अनुभव करते थे, और वे जन साधारण और नारी जाति की दुर्वस्था को राष्ट्रीय महापाप मानते थे। उन्होंने राष्ट्र के जीवन के स्पंदन को दरिद्रों की कुटिया में ही महसूस किया था। इसीलिए उन्होंने दरिद्र जनता की भूख मिटाने की समस्या को प्राथमिकता दी थी। दरिद्रता के अलावा उन्होंने शिक्षा को सर्व रोग हरण महा औषधि के रूप में माना है।
0: उन्होंने धर्म को केंद्र बनाकर और पाश्चात्य विज्ञान तथा तकनीकी विद्या को उससे युक्त कर देश की शिक्षा व्यवस्था को गढ़ना चाहा था। यही शिक्षा शिक्षार्थी को एक साथ आत्मनिर्भर और मानवीय गुण संपन्न बनाएगी, तथा इसी शिक्षा से ही राष्ट्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
1: वे कहते थे,
3: अशिक्षा से भी ज्यादा बुरी कुशिक्षा है। अशिक्षित व्यक्ति क्लीन स्लेट है, उस पर कुछ नया लिखा जा सकता है, लेकिन कुशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं है। उसकी कुशिक्षा का प्रभाव मिटाना कठिन है। जो शिक्षा मनुष्य को बहुत सी नकारात्मक विचारधारा से भर देती है, शिक्षार्थी अपनी स्वयं की शक्ति में आस्था खो देता है, और उसके साथ साथ अपने पूर्वजों तथा देश की सभ्यता और संस्कृति से अश्रद्धा करने लगता है।
0: वर्तमान भारत की समस्या में हमने आधुनिक काल के विचार देखे। 100 साल पहले भी स्वामी जी ने धर्म भाव, राष्ट्रीयता बोध और आत्म प्रत्यय समन्वित इन सकारात्मक मनोभावों को ही सर्वसाधारण में इन्हें संचारित करना चाहा था। अपनी शक्ति और संभावनाओं के लिए ही विवेकानंद की आवश्यकता है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आपने सुने हमारी सुबह की सभा के कार्यक्रम। दोपहर की सभा में भी आपका स्वागत है, बने रहिए हमारे साथ, कार्यक्रम को सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।
2: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे पराग चौधरी का गायन, और उसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा बांसुरी वादन अजय प्रसन्ना का। तो सबसे पहले लीजिए पेश है गायन पराग चौधरी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अभी आपने सुना गायन पराग चौधरी का, और उसके बाद लीजिए अब प्रस्तुत है अजय प्रसन्ना का बांसुरी वादन।

तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आज हमने आपको सुनवाया पराग चौधरी का गायन। उसके बाद आपने आनंद लिया बांसुरी वादन का, जिसे पेश किया अजय प्रसन्ना ने। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: मैं हूँ हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

0: भरा है भूपटल,
1: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल,
0: रही है आंधियां जोर शोर से प्रबल,
2: रही खटा विकल, तम भरा है भूपटल, उठ रही है।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूँ मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

प्रेम पत्र एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर मन में मीठी तरंगे दौड़ पड़ती हैं। ऐसा लगता है मानो सरगम के सातों सुर मन की वीणा पर एक साथ झनक उठे हों, जैसे बसंत ऋतु की कोयल ने तड़प कर कुहू भरी हो, जैसे पपीहे ने बादलों को आवाज दी हो और जैसे सूखी धरती पर मेघ बरस पड़े हों। होता तो यह एक कागज का टुकड़ा ही है, पर इसे खोलते हुए हाथ कांपने लगते हैं। हर एक अक्षर आवाहन सा करता हुआ लगता है, न जाने किस लोक की महक समेटे रहता है यह कागज का टुकड़ा। इस दुनिया के किसी भी सुगंध में वो पागलपन कहां, वो मादकता कहां। हम में से बहुतेरे लोगों ने अपनी किशोर अवस्था में यह पागलपन अवश्य किया होगा, और क्यों ना करें। अजी कच्ची उम्र का यह विहल आनंद जीवन में दोबारा भला कहां मिलने वाला है। पर कुछ ऐसे भोले सनम भी होते हैं जिन्हें प्रेम पत्र लिखना उनके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। वो गणित के कठिन से कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं, पर दिल के कागज पर प्रेम की यह पहेली हल करने में मात खा जाते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है एक ऐसे ही भोले सनम की दास्तान, जो प्रेम पत्र लिखने की ऐसी कोशिश करता है कि उसमें वो फंसता ही चला जाता है।

0: मुझसे प्यार है।
1: क्या बात है, आज मेम साहब का मिजाज बड़ा आशिकाना हो रहा है।
0: क्यों, क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ?
1: अरे नहीं, अभी तो हजार जाने तुम पे कुर्बान। एक बार बन समर कर निकल जाओ कहीं ना, तो मनचलों के सीने पे सांप लौट जाए। और क्या?
0: नहीं नहीं, कुछ और कहो ना मेरी तारीफ में।
1: क्या सूझी थी मुझे जो मैंने आग में हाथ डाल।
0: क्या कहा, जरा जोर से कहना तो।
1: अरे नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर मांग में सिंदूर ना भरो तुम, तो न जाने कितने लड़के तुम्हें प्रेम पत्र लिखने के लिए कलम में स्याही के बजाय अपनो लहू डाल दे।
0: सच? मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा, पर ये बताओ जी, आज तक तुमने क्यों नहीं लिखा मुझे कोई प्रेम पत्र?
1: क्या प्रेम पत्र? मैं? अरे जिंदगी में कभी जो काम नहीं किया वो काम मैं अब।
0: जिंदगी में शादी भी तो नहीं किया थे तुम? हर काम इंसान कभी ना कभी पहली बार ही करता है।
1: हाँ?
0: और सच पूछो तो ऐसे इंसान से लव लेटर पाने का मजा ही कुछ और है। उसके लव लेटर की भला क्या अहमियत, जो दुकान के कैश मेमो की तरह हमेशा ही काटता रहता है। हाँ जी, अब तो तुम्हें मेरे लिए एक प्रेम पत्र लिखना ही होगा। और वो जो खूबियां अभी अभी तुमने बताई थी ना मेरी, उनकी लिस्ट और बढ़ानी होगी।
1: मगर मेम साहब, ऐसे कैसे लिखा जा सकता है प्रेम पत्र? इसके लिए जुदाई होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मन में कसक होनी चाहिए, पर आप तो हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहती हैं। ऐसे में वो सेंटीमेंट्स कहां से लाऊं मैं?
0: तो ठीक है जी, उसका भी इंतजाम किए देती हूँ मैं। रिंकू को लेकर मायके चली जाती हूँ।
1: क्या?
0: और क्या, फिर जब आप प्रेम पत्र लिखकर गुहार लगाएंगे ना, तभी लौटूंगी मैं। पपीहे की तरह पीऊ पीऊ करना, तभी झलक दिखलाएगी आपकी ये सावन की घटा।
1: अरे अरे, ऐसा जुल्म ना करिए श्रीमती जी। लीजिए, मैं आपके जाए बिना ही आपको प्रेम पत्र लिख देता हूँ। लिख देता हूँ कि मुझे आपसे बेहद बे इंतहा मोहब्बत है। हाँ, मुझे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। और ये लीजिए मेरी सिग्नेचर, नीरज वशिष्ठ। बिल्कुल पक्की रसीद है ये। अब तो मैटर सॉल्व हो गया ना।
0: वाह रे मेरे कारोबारी सनम, और वाह रे आपका प्रेम पत्र, जैसे किसी कंपनी का वारंटी कार्ड भर रहे हो। अरे दिल की डीलिंग बिजनेस की तरह नहीं की जाती है। जब आप सच्चे दिल से पूरी फीलिंग के साथ लिखेंगे ना, तभी ये कस्टमर आपकी बात पर यकीन करेगा। और ये फीलिंग मैं आपको देकर ही मानूंगी। अरे मैके की जर्नी अब मेरी फाइनल है। कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट इसमें अब दखल नहीं कर सकता है।
1: हे भगवान, आज सुबह सुबह किस गलत गली में घुस गया। त्रिया हट ने तो दशरथ की भी मिट्टी पलीत कर दी थी यार। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, इस मुसीबत से बाहर निकालो।
2: तो श्रोताओं, इस तरह से नीरज की धर्म पत्नी रितु त्रिया हट कर बैठती है कि उसका पति उसे प्रेम पत्र लिखे। शादी के 5 साल गुजर चुके हैं। पहाड़ी झरने की तरह गरजता प्यार तूफानी दौर से गुजर चुका है, और अब तो नदी सागर में समा चुकी है, जहां का पानी शांत व ठहरा हुआ है। रितु इस पानी को पहाड़ पर चढ़ाना चाहती है। नीरज की हालत खराब है, रितु उल्हाने देती है, नीरज धीरज का परिचय देता है। एक तरफ तलवार थी तो दूसरी तरफ ढाल। अब सुनिए आगे क्या होता है उन दोनों की दास्तान।
0: सुनो जी, मम्मी का फोन आया है।
1: क्या?
0: उनका बीपी है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
1: अरे,
0: बोली है कि जल्दी आ जाओ।
1: क्या यार, अभी हाल तक तो सब ठीक था, और अब यकायक ये।
0: अरे यकायक ही तो सब होता है पति देव। अब देखो, यकायक ही मुझे मायका भी जाना पड़ेगा, पर मेरे पीछे मेरी उस ख्वाहिश का ध्यान जरूर रखना पतिदेव। नहीं तो अब मायका ही होगा मेरा परमानेंट ठिकाना। फिर ना कहना कि
1: नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म ना करो मेरी जान मुझ पर। आपके बिना तो मुझे एक पल भी पहाड़ लगता है यार। और आप कहती हैं कि
0: डिसीजन फाइनल है, जाना तो होगा ही, पर वापसी आप पर डिपेंड करती है।
1: कैसे?
0: जितनी जल्दी आपका प्रेम पत्र मुझे मिलेगा उतनी ही जल्दी मेरी रवानगी डलेगी वहाँ से।
1: क्या टेलीफोन से काम नहीं चलेगा?
0: हरगिज नहीं, रिटर्न एविडेंस बर्बल से ज्यादा पावरफुल होता है।
1: एसएमएस?
0: बिल्कुल नहीं, मुझे डिटेल्ड ब्यौरा चाहिए। मेरे बिना कैसा लगा तुम्हें, कैसे तुम्हारे दिन गुजरे, कैसी रातें गुजरी, कैसी नींद आई, और कितना याद किया तुमने मुझे। तुम्हारे पूरे एहसास चाहिए मुझे, मेरी ये ही वापसी की टिकट होंगे, समझे?
1: इतना कुछ लिखना होगा प्रेम पत्र में? ब्योरे वार दास्तान, वेरी डिफिकल्ट, हॉरिबल।
0: ताजमहल बनवाने से ज्यादा तो मुश्किल नहीं है।
1: अरे ताजमहल कोई शाहजहां ने अपने हाथों से थोड़ी ही बनाया था यार, बादशाह सलामत थे, वो हुक्म दे दिया और बन गया ताजमहल। तुम कहो तो मैं भी किसी एक्सपर्ट से लेटर।
0: हे राम, कैसा जमाना आ गया है अब, प्रेम पत्र भी लिखवाने के लिए लोग एक्सपर्ट के पास जाना चाहते हैं। शेरो शायरी तो फीस चुका कर मिल ही जाती है, और अब ये लव लेटर भी। वाह जी वाह। पर सुनो जी, मैं बता देती हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं चलेगी इस मामले में। अगर ब्लैक लिस्टेड हो गए ना आप, तो टेंडर भी भरने को नहीं मिलेगा, काम पूरा करने की बात ही छोड़िए। सुनो जी, अपना ख्याल रखना। और हाँ, सुबह जल्दी उठकर घूमने जरूर जाना, ताजी हवा खाना, पर नजर नीचे रखना। हाँ, और सुनो, नौकरानी को मैंने मना कर दिया है, जवान जहान है, क्या ठिकाना उसका।
1: क्या? अब घर का झाड़ू पोछा भी मैं करूँगा क्या, क्या, क्या, क्या?
0: अपनी इज्जत की हिफाजत करना अच्छे पति का धर्म है।
1: अरे यार, तुम्हारे अलावा मेरी इज्जत को भला और किससे खतरा हो सकता है? एक मिनट, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो रहा है।
0: जा तो मैं रही हूँ जी, पर मुझे ना बड़ी रुलाई छूट रही है, मन कर रहा है कि उतर पड़ूं गाड़ी से। सच तुम्हारे बिना रहने का सोचकर ही जी घबराने लगता है।
1: अरे तो उतर पड़ो, इतना प्यार हमारी आंखों में उमड़ रहा है, इसके आगे भी प्रेम पत्र की जरूरत लगती है क्या तुम्हें?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आज दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। पक्का इरादा, कड़ा अनुशासन। रिंकू को भी मैं इसलिए साथ लेके जा रही हूँ जिससे तुम्हें तन्हाई शिद्दत से महसूस हो।
1: तुम औरतें तो यार इतनी दूर तक कैसे सोच लेती हो? बापरे, मैं तो सोच रहा था कि मेरा भार हल्का करने के लिए तुम रिंकू।
0: हाँ, और क्या, अरे भार हल्का ही तो हो रहा है तुम्हारा भाई, अकेले जन का काम रहेगा, चटपट निपटा लेना तुम, और फिर तन्हा बैठकर लव लेटर लिखना, और जब वो लव लेटर पूरा हो जाए ना तो मुझे पोस्ट कर देना।
1: सफर में अपना ख्याल रखना, पहुंचते ही फोन करना।
3: पापा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
0: गाड़ी तो छोड़ो, स्पीड बढ़ रही है, गाड़ी छोड़ो।
1: अरे बेटा, रिंकू मम्मी को तंग ना करना, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना।
0: बाय बाय
3: बाय।
2: रितु के जाने के बाद नीरज के एक दो दिन तो बड़ी मस्ती में गुजरे। जब चाहो खाओ, जब चाहो सो, जब चाहो उठो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रितु होती तो कहती, यह ना करो, यह ना खाओ, अब टीवी बंद कर दो, सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। कच्ची नींद में उठा देती और कहती, फ्रेश होकर टहलने निकलो। जिंदगी जैसे जेल मैनुअल पर चल रही थी, पर अब आजादी की हवा में सांस लेने का मौका मिला था। लेकिन नहीं, अजी अकेलेपन की आजादी डराने वाली थी। भला शमशान की शांति भी किसी को अच्छी लगती है? नीरज को आटे दाल का भाव याद आ रहा था। अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: यार, चाय की पत्ती कहाँ रखी है? पानी उबला जा रहा है। ये औरतें भी ना जाने चीजें ना जाने कहाँ कहाँ रखती है। आया आया भाई आया, तुम्हें भी यार अभी बजना था। हेलो, अच्छा अब जाके फोन करने की फुर्सत मिली मैम साहब को। धन्यवाद मेरे जो आपको मेरी याद आई। क्या शेर? नहीं नहीं, सवा शेर कहिए जनाब। क्या क्या कह रही हैं? यही काबिलियत में लव लेटर लिखने में भी? अरे क्या यार, मेरी अग्नि परीक्षा क्यों ले रही हैं पत्नी जी? हैं? नहीं, मैं पार न कर पाऊंगा इसे। क्या कहती हैं? उसके बिना आप नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। अरे यार, हम पतियों के लिए तो होम मिनिस्ट्री ही सुप्रीम कोर्ट है, कोई मर्सी अपील भी नहीं होती इसके फैसले पर। ओके, ठीक है ठीक है, करता हूँ यार, करता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, बाय बाय बाय बाय।
2: रितु को गए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे। नीरज समझ चुका था कि उसकी मोहम सी रितु अब आयरन लेडी बन चुकी है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर थी, और वो लक्ष्य था प्रेम पत्र। प्रेम पत्र लिखना ही पड़ेगा, कोशिश करता है नीरज, और वो पूरा ब्योरा लिखने बैठ जाता है। आप भी सुनिए क्या लिखा उसने अपने प्रेम पत्र में।
1: मेरी प्राणेश्वरी, तुम्हें गए अभी 4 दिन ही हुए हैं। इन 4 दिनों में ही मुझे तुम्हारी कीमत पता लग गई। तुम्हारे रखे सामान किचन में मिलते ही नहीं थे, अब जाकर कुछ कुछ उनकी लोकेशन समझ में आने लगी है। कल की बात है, दाल फ्राई करते हुए मेरे चेहरे पर घी का छींटा पड़ गया। रोटियां नक्शों की तरह बनती हैं, फूलती भी नहीं, कच्ची रह जाती हैं। नतीजा ये होता है कि ठीक से पचती भी नहीं, खट्टी डकारें आती रहती हैं। हाँ, तुम्हारे पीछे एक बड़ा नुकसान हो गया। कल नमक ढूंढ रहा था तो अचार की भरनी गिरकर टूट गई। कितनी मेहनत से डाला था तुमने। अदरक तुमने फ्रिज में ऐसे रखे थे जैसे कोई लॉकर में ब्लैक मनी रखता है, और अंत में इनकम टैक्स वालों की तरह रेड करके निकालना पड़ा मुझे। गैस का सिलेंडर खत्म हो गया है, इसलिए कोने वाली होटल से एक खाना मुकर्रर कर दिया है। दुआ करना सेहत सलामत रहे। सब्जी वालों को पता नहीं कैसे टैकल करती थी तुम, मुझे तो सब दिन दहाड़े लूट लेते हैं। तुम होती तो ऐसा ना हो। छत पर कपड़े फैलाए थे, क्लिप लगाना भूल गया था, सब उड़ गए। सच, तुम्हारे बिना समझ में आता है कि बिन घर नहीं घर भूत का डेरा। अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी का क्या हाल है? अब तो उनका बीपी नॉर्मल होगा। रिंकू शैतानी तो नहीं करती? हाँ, तो ये रहा तुम्हारा रिटर्न टिकट। तुम्हारी शर्त पूरी हो चुकी है, अब लौट आओ। तुम्हारा पत्नी पलायन पति।
2: कुछ ही दिनों के बाद नीरज को अपने प्रेम पत्र का जवाब मिल गया। आंखों में खुशी और दिल में उत्साह था। इकलौती पत्नी का पहला पहला पत्र था। खोलकर पढ़ा उसने।
0: वाह रे मेरे भोले सनम, आपके लव लेटर ने तो बड़ा ही मायूस किया, वादा वफा न रहा। ये आपने लव लेटर लिखा है कि डायरी? मैंने तो दिल का हाल बयान करने के लिए लिखा था, और आपने गृहस्थी का हाल बयान कर दिया। ये लव लेटर नहीं, ये रोज नामचा है। क्या मेरी कीमत बस इतनी ही है कि मैं आपकी गृहस्थी चलाती रहूं? सोचा था कि जुदाई में आप मजनू बन जाएंगे, पर आप तो नहीं। नहीं नहीं, ये रिटर्न टिकट वैलिड नहीं है। इसके सहारे सफर करना बे टिकट सफर करने जैसा होगा। एक बार आप फिर कोशिश कीजिए। मम्मी का बीपी पहले भी ठीक था, हाँ अब जरूर बढ़ गया है। सोचती हैं कि मैं लड़कर आई हूं आपसे। आप सेहत का ख्याल रखिएगा और इज्जत का भी। आपके लव लेटर के इंतजार में, आपकी रितु।
2: प्रेम पत्र को पढ़कर के नीरज की हवा खराब हो गई। जिसे ब्रह्मास्त्र समझकर चलाया था वो तो लकड़ी का तीर निकला। अब क्या करे, वह इस कला में माहिर न था। सोचा क्यों ना अपने दोस्त अशोक की मदद ली जाए। आखिर दोस्त वही होता है ना जो मुसीबत में काम आए। तो नीरज पहुंच गया अशोक के घर उससे सलाह लेने।
4: कौन? अरे नीरज तू भाई, सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए?
1: अरे यार भीतर तो आने थे पहले कि दरवाजे पर ही पूरा इंट्रोगेशन कर डालेगा।
4: आना आना बैठ। क्या लेगा तू? अरे श्यामा जरा दो कप चाय तो पिलाना गर्मा गर्म।
1: यार चाय वाय तो बनती रहेगी पर इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ।
4: क्या हो गया तुझे कि सांड को तूने लाल कपड़ा दिखा दिया जो जान बचा कर यहाँ भागा है?
1: अरे यार सांड से पीछा छुड़ाना तो फिर भी आसान है पर ये प्रेम पत्र।
4: प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर? वाह यार, किसकी मती मारी गई है जो तुझ जैसे शादीशुदा को लव लेटर लिखेगा?
1: भाई मती किसी और की नहीं, मेरी खराब हो रही है। समझ में नहीं आता कि कैसे प्रेम पत्र लिखूं मैं, जिस काम का कोई तजुर्बा ही नहीं है वो आखिर यार मैं।
4: वाह भाई वाह, तो ये बात है। भाभी कहाँ है जो तू?
1: वो मायके गई बाल गोपाल को लेकर।
4: और तू मौके का खूब फायदा उठा रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है?
1: नहीं नहीं,
4: अब जब प्रेम का पत्र है तो प्रेमिका भी तो होगी ना कहीं ना कहीं। बच्चू आने दे भाभी को, फिर देख मैं किस तरह।
5: लीजिए भाई साहब चाय लीजिए।
4: खैर ये ले, पहले चाय पी ले तू, फिर तुझे पानी पिलाता हूँ जीवा।
1: अरे कोई प्रेमिका प्रेमिका नहीं है यार, तेरी भाभी को ही प्रेमिका बनने का जुनून सवार हुआ है।
4: अच्छा?
1: वो बोलती है मुझे प्रेम पत्र लिखो तब लौटूंगी मैं। अब तू ही बता यार मैं क्या करूं।
4: ओ तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया?
1: तूने बताने कब दिया? एकदम से राशन पानी लेकर चढ़ बैठा मेरे ऊपर।
4: खैर खैर बोल दोस्त, क्या मदद मांगता है तू?
1: यार एक चिट्ठी लिखी थी उसे, जवाब में लिखती है फीलिंग के साथ लेटर लिखो तब लौटूंगी। अब तू ही बता के।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम कर।
1: हाँ
4: एक हिट आइडिया देता हूँ तुझे।
1: बता यार।
4: कुछ फिल्में देख डाल,
1: है?
4: कुछ शेर और शायरी की किताबें पढ़ डाल।
1: हाँ?
4: किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा रख आंखों के सामने।
1: हाँ?
4: क्योंकि जब खूबसूरती सामने होगी तो अल्फाज खुद ब खुद निकलने लगेंगे। बस तैयार हो जाएगा तेरा प्रेम पत्र।
1: थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स। अब बाद में मिलता हूँ तुझसे।
4: पहले चाय तो खत्म कर ले भाई।
1: तो वो तू पी लेना। बाय एंड अगेन थैंक यू यार।
4: बाय बाय।
2: नीरज के हाथ फार्मूला लग चुका था, बस उसका इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए थी। अशोक का एक एक शब्द उसने पकड़ा। अशोक ने कहा था कि फिल्में देखो, शेर व शायरी की किताबें पढ़ो, खूबसूरत लड़की का चेहरा अपनी आंखों के सामने रखो। अब उसने कई फिल्में देख डाली। नई फिल्में उसको जमी नहीं तो उसने पुरानी फिल्मों का सहारा लिया। शेर व शायरी की किताबें भी कई पढ़ी, पर बेचारा खूबसूरत लड़की कहां से लाता? अकल काम नहीं कर रही थी। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मार्केट जाकर के एक खूबसूरत सा पोस्टर उठा लाया और दीवार पर चस्पा कर दिया। साथ ही एक सुगंधित लेटर हेड भी ले आया, जिसके एक कोने पर दो दिल बने हुए थे और दिल में एक तीर चुभा हुआ था। सारी सामग्री इकट्ठी करके अब वो लव लेटर लिखता है। आइए आप भी सुने उसका लव लेटर।
1: हा, ये पोस्टर भी लग गया। आप ठीक है। इसकी खूबसूरत आंखों में डूबकर, गुलाब की कली जैसे इसके होठों को देखकर, खिलती धूप से इसकी मुस्कुराहट में नहाकर, हाँ, अब लव लेटर लिखने की फीलिंग पैदा की जा सकती है भीतर से। एक काम और करता हूँ, बाजार से रंगीन लेटर पैड और खरीद कर लाता हूँ, वही जिस पर तीर से बिंधे हुए दिल बने रहते हैं, जिससे भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, तब प्यार का एहसास और भी घना हो सकेगा। बिल्कुल कंफर्म रिटर्न टिकट बनेगा तब, कोई वेटिंग शेटिंग नहीं। अब हो गया प्रणेश्वरी तुम्हारा लव लेटर तैयार, एक बार पढ़ तो लूं कैसी फीलिंग आती है। प्रिय प्राणेश्वरी, तुम्हें जाने आरजू कहूं या आरजू ये जहां कहूं, तुम ही बता दो मुझे, मैं तुम्हें क्या कहूं। तुम्हारी झील सी गहरी आंखों में डूब जाने को मन करता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है मानो कोई कानों में मीठी मीठी मिश्री खोल रहा हो, जब तुम कुछ बोलती हो तो दिल में सितार बजता है, जब तुम हंसती हो तो तुम्हारे गाल में जो डिंपल पड़ता है वो तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। तुम्हारे बिना ना नींद आती है ना चैन आता है, दिल तुमसे मिलने को बेचैन हो उठता है। चांद में तुम नजर आती हो, सितारों में तुम नजर आती हो, रोटी में तुम, खाने की हर बोटी में तुम, जिस शक्ल को भी देखता हूं बस तुम्हारी ही शक्ल दिखती है, जुदाई के पल अब बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब तुम ही बताओ कब मिलेंगे हम, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा प्राणों से भी प्यारा। आ रही है फीलिंग आ रही है, अब एक बार अशोक को और दिखला देता हूं। चलो
4: ये क्या लिखा है रे बुद्धू तूने, ऐसे भी कहीं प्रेम पत्र लिखते हैं
1: है?
4: अरे मैंने तुझे फिल्में देखने के लिए कहा था, फिल्मों के गाने और डायलॉग चुराने के लिए नहीं। औरतें फौरन ताड़ लेती हैं कि बनाया जा रहा है उन्हें, अरे नेचुरल एक्सप्रेशन होना चाहिए इसमें।
1: यार नेचुरल एक्सप्रेशन ही बनता मुझसे तो तेरी मदद क्यों लेता। मानता हूं कि सब कुछ अननेचुरल है, पर करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरी भाभी का कोप भवन टूटने वाला नहीं है।
4: अच्छा यार एक काम कर तू,
1: बोल
4: अभी तो रहने ही दे तू उसे, मैं जरा फुर्सत निकाल कर आता हूँ तेरे पास, फिर मैं खुद बैठ कर लिखवा दूंगा तुझे। उसे भाभी को भेजना तू, पर ये जो एंटेशंट लिखा है ना तूने,
1: हाँ।
4: इसे तो रहने ही दे भगवान के लिए। लव लेटर लिखे, अरे भाभी वापस तो नहीं आएगी, उल्टे तुझे नौटंकी की बात समझेगी।
1: आता हूँ भाई आता हूँ। कौन टपक पड़ा है यार?
6: अरे तुम व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। अरे तुमने तो ठानी थी कि
0: ठानी तो बहुत जमकर थी, पर क्या करूं पतिदेव, आप पर तरस आ गया, और सच कहूं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती हूं मैं, सोचना चाहिए था मुझे। आप जैसे भोले भाले आदमी भला क्या जाने प्रेम पत्र लिखना। सतयुग के पुरुष ठहरे आप, आज के छोरों जैसी लंपटता आप में कहाँ है भला।
1: क्या बात है। आपने अपना प्रण तोड़ दिया इस नाचीज के लिए।
0: मैं तो प्राण दे दूं पतिदेव, प्रण तो कुछ भी नहीं आपके लिए।
1: थैंक गॉड।
2: नीरज मन ही मन खुश था, नीरज की मुसीबत टल चुकी थी, पत्नी बिना प्रेम पत्र के ही मान गई थी, खुशी खुशी दफ्तर गया, पर जब वापस लौटा तो घर में मातम फैला हुआ था। प्राण देने का वादा करने वाली पत्नी प्राण लेने पर उतारू थी, आंखों से प्रेम की धारा नहीं आंसुओं का सैलाब बह रहा था, मुख से शहद के भीगे शब्द नहीं बल्कि तोप के गोले चल रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया था दिन भर में, आप भी सुनिए।
0: वाह रे मेरे भोले सनम, अच्छी वफा निभाई तुमने। तुम भी आखिर बाकियों की तरह ही निकले ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुंह में राम बगल में छुरी, रंगोसी और।
1: अरे काहे मुहावरेदार गालियां दे रही हो भाई, साफ साफ बताओ कि क्या हो गया। सुबह सुबह की स्वच्छ ऋतु अचानक इतनी गर्जन तर्जन क्यों कर रही है?
0: अरे अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या।
1: क्या?
0: अरे क्या समझा था तुम्हें, और तुम क्या निकले? कहते थे प्रेम पत्र लिखना ही नहीं आता, और यहाँ तो पूरा प्रेम सागर ही उमड़ा जा रहा है।
1: क्या कह रही हो?
0: ये देखो अपना कच्चा चिट्ठा, हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे मेरे पीछे इश्क फरमा रहे थे तुम।
1: क्या कह रही हो?
0: सींग कटा कर बछड़े बन रहे थे तुम, तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है।
1: पाप? ओ हो, तो ये बात है। अरे यार ये पाप नहीं, मेरा बेवकूफी नामा है बेगम। ये आपके लिए ही लिखा था मैंने, किसी और के लिए नहीं। आपके सर की कसम।
0: मेरे सर की कसम ना खाओ जी, खाना है तो उसी की कसम खाओ जो तुम्हारे सपनों की रानी है।
1: अरे तुम
0: उसकी इबारत पढ़ो ना, तुम खाने में, तुम खाने की हर बोटी में तुम। मुझे पागल समझा है क्या? 15 दिन बाद लौट कर आ रही हूँ मैं, और मैं मान लूं कि ये लाइन तुमने मेरे लिए लिखी है।
1: अरे हाँ जी, 100% ही तुम्हारे लिए लिखी थी यार। इमोशन पैदा करने के चक्कर में ये बेवकूफी हुई थी मेरे से। हाँ, दरअसल एक दिन पहले ही सपने में आई थी तो।
0: बहुत अच्छे। हाँ, और ये तुम्हारी झील सी आंखों में डूब जाने को मन करता है, और थोड़ी सी भी गैरत बची हो ना तुम्हें तो तुम तालाब में जाकर डूब मरो, या मुझे डुबो दो और फिर मजे से रहना उसके साथ में।
1: अरे यार धर्म पत्नी जी, ये लाइन तो फिल्मों के चक्कर में आ गई यार। सच मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद नहीं बनाई है इसे।
0: और ये आगे भी तो देखो।
1: अरे
0: रहन दो, बस बस। अब एक झूठ छुपाने के चक्कर में 1000 झूठ मत बोलो जी, फंसते ही चले जाओगे तुम।
1: अरे यार कैसे तुम्हें समझाऊं प्राणेश्वरी, प्रेम पत्र लिखते समय ये सब झूठ सच लिखना पड़ता है यार, नहीं तो प्रेम पत्र का वजूद ही खत्म हो जाएगा दुनिया से। सब सच लिख दिया तो प्रेमिका पत्थर फेंक कर मारेगी अपने प्रेमी को।
0: अच्छा तुमने कहा और मैंने मान लिया है।
1: हाँ हाँ, मान भी जाओ मेरी बात यार, ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, तुम्हारे लिए ही लिखा था।
0: तुम मुझे बरगलाओ नहीं। और ये देखो, ये तुम्हारा, ये क्या लिखा तुमने? जब तुम हंसती हो ना तो तुम्हारे गाल पर जो डिंपल पड़ता है ना, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। तुम ही बताओ मेरी कचोरी जैसे गालों में कब डिंपल पड़ता है।
1: अरे यार,
0: और आगे ये देखो क्या लिखा है। चांद में तुम, सितारों में तुम, रोटी में तुम, आईने में तुम, हर शक्ल में तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है।
1: अरे क्या
0: बड़ी आंखें सेकी जा रही थी मेरे पीछे।
1: यार
0: इश्क का भूत तो ये पोस्टर भी बयान कर रहा है, जिसे आंखें सेकने के लिए
1: तुमने। अरे यार इस पोस्टर में भी तो तुम ही हो जाने मन, जमीन पर आसमां में तुम ही हो जाने मन।
0: ओहो, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं मेरे सरकार। कहां तो प्रेम पत्र लिखने के नाम पर हाथ पांव ठंडे पड़े जा रहे थे, और कहां पूरे प्रेम कवि ही बन चुके हैं। किसका कमाल है ये बताओ मुझे। पर मुझे क्या, मैं तो वापस जा रही हूँ। नादान थी मैं जो तुम्हें भोला समझ बैठी। अरे तुम तो भेड़ की खाल में भेड़िया हो।
1: अरे जाने मन क्या।
0: अच्छा हुआ जो तुम्हारा असली रूप दिख गया, नहीं तो जिंदगी भर में इसी मुगालते में रहती कि मैं।
1: ऐसा जुल्म ना करो जी। तुम सुनो तो यार, एक काम करो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं।
1: तो तुम अशोक को बुला लो। तुम खुद तस्दीक कर लो अपने हिसाब से, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा बीच में, चुपचाप बैठा रहूंगा यार, प्लीज यार, ऐसा करो। अशोक,
4: क्या हुआ भाभी, इतनी इमरजेंसी में आपने क्यों बुला लिया मुझे?
0: क्या कहूं भैया, कुछ दिनों के लिए मैं मायके क्या चली गई, इन्हें तो सिंह ही निकल आए। अरे आशिकी करना शुरू कर दिया। एक बेटी के बाप हैं, पर हरकत, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। तुम खुद ही देखो कैसा बेहुदा लव लेटर लिखा है इन्होंने अपनी उसको। अरे वो तो यकायक में आ गई और ये दे नहीं पाए उस कलमुही को, नहीं तो
4: ओहो तो ये बात है। अरे ये बुद्धू है भाभी, आपको वापस बुलाने के लिए न जाने क्या क्या बेवकूफियां करता रहा है ये। मुझे मालूम है इस लव लेटर के बारे में, मैंने ही तो कहा था इससे कि इसे पोस्ट ना करे। फंस गया बेचारा। अरे पोस्ट कर दिया होता आपको तो कम से कम आज आप इस बेचारे पर शक तो ना कर रही होती।
0: सच कह रहे हैं भैया आप, ये भी यही कह रहे थे पर मुझे विश्वास ही नहीं हुआ।
4: 100% सच कह रहा हूँ भाभी। आप चाहें तो श्यामा से कंफर्म कर लीजिए पूरा मैटर, उसे बताया है मैंने।
0: नहीं नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, सचमुच ये भोले सनम ही है। बेचारे इतना जुल्म सहते रहे मेरा, और मुझे माफ कर दो मेरे भोले सनम, माफ कर दो।
2: तो श्रोताओं ये था हमारा हास्य नाटक लव लेटर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम सुनो कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती, और आज हमने चुनी है कहानी मुक्तिधन। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं, उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे ज्यादा लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपए सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपए सैकड़े सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिसमें 15 रुपए सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वो भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग, ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन की ही जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी हो, जिसके पास कुछ फालतू धन हो, वो ये व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का ये सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊदयाल इसी श्रेणी के महाजन थे। वो कचहरी में मुक्तारगिरी करते थे, और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपए सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से होता था। उच्च वर्ण वालों से वो चौकन्ने रहते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और कायस्थ को रुपए देने से कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिया जाए। लेते समय तो उनके पास बहुत संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वो सारी संपत्ति गायब हो जाती है। पत्नी, पुत्र या भाई का उसमें अधिकार हो जाता है, और उस संपत्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र विद्वान भी मुगी खाते थे। लाला दाऊदयाल एक दिन कचहरी से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुस्लिम अपनी गाय बेच रहा था, और कई आदमी उसे घेर के खड़े थे। कोई उसके हाथ में रुपए रख देता, कोई उसके हाथ से गाय की पघैया छीन लेता था। किंतु वो गरीब एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता था, कुछ सोचकर पघैया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मोहनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे थन। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गौ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। वो व्यक्ति शुभ्ध और दुखी दिख रहा था। करुण नेत्रों से गौ को देखता और दिल महसूस कर रह जाता। दाऊदयाल गौ को देखकर रीझ गए और पूछ बैठे, क्यों जी, ये गौ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? उस मुस्लिम युवक ने दाऊदयाल को देखा तो खुश होकर उनके समीप चला गया। हाँ हुजूर, बेचता हूँ। कहाँ से लाए हो और तुम्हारा नाम क्या है? दाऊदयाल ने पूछा। तब उस मुस्लिम युवक ने अपना नाम बताया। नाम तो रहमान है, और मैं पचोली में रहता हूँ। दूध देती है तुम्हारी गाय? दाऊदयाल ने पूछा। हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दोह लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेत है, इतनी सीधी है कि बच्चा भी दोहले। बच्चे पैर के पास खेलते हैं, क्या मजाल कि सिर भी हिला दे। दाऊदयाल ने पूछा, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबा हुआ कि कहीं चोरी का माल तो ना हो। तब उस युवक ने जवाब दिया, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं। क्या दाम मांगते हो? दाऊदयाल ने पूछ लिया। रहमान ने 50 रुपए बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपए का माल जच गया। कुछ देर तक दोनों ओर से मोल भाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 35 रुपए पर सौदा आखिरकार तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका दिया, पर अब भी वो मोह के बंधन में पड़ा था। कुछ देर तक सोच में डूबा रहा, फिर गऊ को मंद गति से दाऊदयाल के पीछे पीछे ले चला। तब एक आदमी ने कहा, अरे हम 36 रुपए दे रहे थे, हमारे साथ चलो। तब रहमान ने कहा, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ जबरदस्ती है? तब दूसरे ने कहा, हमसे 40 रुपए ले लो,
अब तो खुश हो? ये कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी नहीं भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी अपनी राह ले ली। रहमान जब जरा दूर निकल गया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे, और ये बाकी सब कसाई हैं। इनके हाथ में 50 रुपए में भी नहीं बेचता मैं इसे। आप बड़े मौके में आ गए, नहीं तो ये सब जबरदस्ती से गऊ को छीन ले जाते। बड़ी विपत में पड़ गया हूँ सरकार, तब ये गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को मैं कभी नहीं बेचता। इसे अपने हाथों से पाला है मैंने, कैसे बेच दूं कसाईयों के हाथ? सरकार इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही ये दूध देगी, और भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होगा हुजूर। एक अरज और है, अपने चरवाहे को डांट देना, इसे मारे ना। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा, इस श्रेणी के मनुष्य में भी इतना सौजन्य? यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गऊएं बेचते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते वो तो, और ये गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि किसी कसाई के हाथ में न पड़े। वाह, गरीबों में भी इतनी समझ है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दे दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था, और गरीब के तो सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया, उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। वो इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, और उपाय नहीं था इसलिए विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौरी में मुस्लिम कई परिवार थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंद थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले थे। रहमान की बूढ़ी माँ भी हज के लिए तैयार हो गई, और उसने रहमान से कहा, बेटा इतना सबाब करो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान के लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं, खुदा तुमको फल देगा। मातृभक्ति तो वैसे भी ग्रामीणों का विशिष्ट गुण होता है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे, और माता की आज्ञा भी नहीं टाल सकता था। सोचने लगा किसी से उधार ले लूं, कुछ अब की ईख पेर कर दे दूंगा, कुछ अगले साल चुका दूंगा। अल्लाह के फजल से ईख ऐसी हुई कि कभी ना हुई थी। ये माँ की दुआ का फल था, मगर किससे लूं? कम से कम 200 रुपए तो हो, तब काम बनेगा। उसने सारे उपाय सोच लिए। जब उसका बस नहीं चला तो वो दाऊ दयाल के पास चला गया कर्ज लेने। दाऊ दयाल ने देखते ही बोला, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? हाँ हुजूर, बेची थी, रहमान ने जवाब दिया। रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा ना किया तो तुम जानो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाया और बोला, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ दयाल ने कहा, अगर 2 साल में ना दोगे तो ब्याज की दर 35 रुपए सैकड़ा हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा, बस। रहमान ने कहा, जो चाहे कीजिए हुजूर, आपके ही हाथ में हूँ। रहमान को 200 रुपए के 180 रुपए मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया तो थोड़ा सा गुड़ रखा था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझा कर माँ के साथ हज को चला गया। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर में बोले, क्या अभी 2 साल पूरे नहीं हुए? लाओ मेरे रुपए, कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ, अम्मा जब से हज करके आई हैं तब से बीमार हैं, रात दिन बस उन्हीं की दवा दारू में हूँ। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा, साल भर की मोहलत और दे दीजिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपए सैकड़े ब्याज हो जाएगा।
रहमान के पास एक ही जवाब था, जैसी हुजूर की मर्जी। रहमान ये वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ गया है, प्राण पीड़ा हो रही है, दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक से धार गई। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था और अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए जकात और फातिहे की जरूरत थी, कब्र बनवानी जरूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत, ऐसे कितने ही संस्कार थे जो जरूरी थे। पैसों की परेशानी थी, उसको मालूम था कि लाला दाऊदयाल पैसे नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो दाऊदयाल के पास चला गया। रास्ते में एक एक कदम उसके लिए मुश्किल था। लाला दाऊदयाल कचहरी से आकर बैठे ही थे और वो नौकरों पर बिगड़ रहे थे। लाला दाऊदयाल ने रहमान को देखा तो रुष्ट होकर बोले, क्यों आए हो तुम यहाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, इस वक्त मुझे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ नहीं बोला, वो डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। लेकिन दाऊदयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो उसे दोबारा बुला लिया और नम्र होकर बोले, कैसे आए थे, क्या काम था। तब रहमान ने कहा, नहीं सरकार, बस सलाम करने आया था। दाऊदयाल ने कहा, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता, क्या मतलब है कहो। अब तो रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अटकल से समझ लिया कि इसकी माँ अब नहीं रही। क्यों रहमान, तुम्हारी माँ से धार गई। रहमान ने हाँ कहा, हुजूर आज तीसरा दिन है। अरे रे रे रे, ना रो भैया, सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हो गया, ऐसी मौत पर गम नहीं करना चाहिए, तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, और अब क्या चाहिए। रहमान ने भी धीरे से कहा, हुजूर कुछ अरज करने आया हूँ, हिम्मत नहीं है, पिछला भी पड़ा है, अब किस मुँह से मांगू, लेकिन अल्लाह जानता है कि कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, और काम ऐसा है कि ना करूँगा तो जिंदगी भर पछताऊँगा। आगे आप मालिक हैं, कुछ समझ कर दे दीजिए, कुएं में डाल रहा हूँ, जिंदा रहूँगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर हुजूर इस घड़ी मना ना कीजिए। रहमान लगातार रो रहा था, दाऊदयाल को दया आ गई। ओ भाई, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो, 2 साल में कोई 700 रुपए हो जाएंगे, खबर है इसकी। रहमान ने कहा, गरीब परवर, अल्लाह दे तो बीघे ईग में 500 आ सकते हैं, अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने 200 रुपए फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य था। खेती की हालत अनाथ बालक की तरह होती है, जल और वायु अनुकूल हुई तो अनाज के ढेर लग जाते हैं, लेकिन अगर जरा भी नुकसान हुआ तो सब बिगड़ जाता है। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन रात को रात नहीं समझा, बीवी बच्चे दिलो जान से निपट गए, ऐसी ईख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए, सारा गांव दांतों तले उंगली दबाता था, सब उसकी ईख देखकर बहुत खुश होते थे। मगर भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। अघन का महीना था, रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था, ओढ़ने के लिए केवल एक पुरानी चादर थी, इसलिए ईख के पत्ते जला लिए थे। तभी हवा का झोंका आया, जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुंच गए और देखते ही देखते आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की तरह एक के ऊपर एक गिर रही थीं। सारे उपाय व्यर्थ हो गए, सारा खेत जलकर राख हो गया। अब तो रहमान का दिल बैठ गया, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। उसे तो चिंता सिर्फ दाऊदयाल की थी कि दाऊदयाल का आदमी आएगा तो वो क्या बोलेगा, अब तो इज्जत खुदा के हाथ में है। सुबह का वक्त था, वो अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही देख रहा था और देखा कि दाऊदयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे आ रहा है।
प्राण सूख गए। बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसने बचा पाया, लेकिन छिपता तो कहाँ छिपता। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते, मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार की बात, एक दिन की भी देरी हुई तो नालिश ठोक देंगे, बेभाव की पड़ेगी तुम्हें। तब रहमान ने कांपते हुए कहा, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया। तब चपरासी ने कहा, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना, 700 रुपए देना है तुम्हें। भैया सारी ईख जल गई, अल्लाह जानता है कि अब की कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। तब चपरासी ने कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ईख का किसी ने ठेका नहीं लिया, अभी चलो सरकार बुला रहे हैं। और चपरासी ने

तो अब मैं क्या करूं? नालिश कर दूं? दाऊ दयाल ने कठोर स्वर में कहा। तब रहमान ने कहा, हुजूर मालिक है, जो चाहे करे, मैं तो इतना जानता हूँ हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती, दो बार वादे किए थे, दोनों बार झूठा हो गया। अब जो कुछ भी मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूंगा। मेहनत मजूरी से पेट और तन काटकर जिस तरह हो सकेगा हुजूर आपके पैसे दूंगा। दाऊ दयाल मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है, बताओ। हुजूर, बस यही आरजू है कि आपके रुपए अदा हो जाएं। अच्छा, तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए, दाऊ दयाल ने कहा। अरे हुजूर, ये कैसे समझ लूं? यहाँ ना दूंगा तो वहां तो देने पड़ेंगे, रहमान ने आश्चर्य से कहा। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमाता था, दाऊ दयाल ने कहा। सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मर सकता मैं, रहमान ने हाथ जोड़ लिए। तब दाऊ दयाल ने कहा, कैसा जी, मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं, अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी और वहां भी। अब तुम मेरे एक भी पैसे के देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है, उसने मुझे कम से कम 800 रुपए का दूध दिया है, दो बछड़े नफे में अलग मिले। अगर तुमने ये गऊ कसाई को दे दी होती तो मुझे इतना बड़ा फायदा कैसे होता, बताओ भला। तुमने उस वक्त 5 रुपए का नुकसान उठाकर गऊ मेरे हाथ बेची थी, वो शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और नादान होकर एक गऊ की जान के लिए 5 रुपए का नुकसान उठा सकते हो रहमान, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रखकर अगर 400-500 रुपए माफ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं भैया। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान ना किया हो, पर असल में किया है। हम तुम दोनों अब बराबर हैं, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ, तुम्हारी खेती में काम आएंगे, तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूंगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की जरूरत हो तो जितने चाहे उतने ले लो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और

तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन। जो

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओं, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम, ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना, आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया न जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती, जिसमें आपको सुनवा रहे हैं गजल गायक अहमद रजा को, जो पेश कर रहे हैं कलाम मशहूर शायर कैफी आजमी का।

बहुत ही खूबसूरत गज़ल, बड़ी मकबूल। शायद ये आपको अब पता चले या पहले से पता हो कि ये भी कैफी आज़मी साहब की गज़ल है। इसके शुरू होते ही शायद आपकी तालियों की आवाज़ मुझ तक पहुँचेगी, मुझे यकीन है। शुक्रिया।

इस गज़ल का बहुत ही खूबसूरत शेर है। इस गज़ल को पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत मिली और जगजीत सिंह साहब जो मखमली आवाज़ के मालिक थे उन्होंने पेश की है, पेश कर रहा हूँ।

0: बहुत शुक्रिया।
1: एक और बड़ी मकबूल कैफी आज़मी साहब की गज़ल पेश कर रहा हूँ कि मैं उर्दू का मुसाफिर हूँ, यही पहचान है मेरी, जिधर से भी गुजरता हूँ सलीका छोड़ जाता हूँ। पेश करता हूँ आपके सामने। हमारे म्यूजिशियन के

लाल करी डरी हूँ, मली गुलाल दो गालन पे रंग डारूंगी। नारी बनाई नचाई छोड़ी हूँ, दफ मृदंग के तालन पे रंग डारूंगी। अब एक एक कृष्ण है और कई सखियां हैं, राधा है। हर सखी अपने अपने नेचर के स्वभाव के हिसाब से उन पे रंग डाल रही है। जो बहुत शर्माने वाली है वो धीरे से जाके रंग उनके आगे फेंक देती है। जो बहुत लड़ाका तबीयत की है जाके खूब झगड़ के उनको रंग लगा रही है। और जो बहुत चंचल है वो नाचते कूदते जाती है और रंग लगाती है। इन्हीं चित्रणों को चित्रित किया जाता है जब ठुमरी या इससे जुड़ी हुई विधाएं होली वगैरह गाई बजाई जाती है। इसमें शब्दों को कहा जाता है, रंग डारूंगी तो आज तो रंग डार के छोड़ूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी। ये होली मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
3: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आज़ाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया,
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। शाम के 5 बजे हैं, हमारी शांतिकालीन सभा आरंभ होती है। स्वागत है आप सभी का हमारी सभा में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 158 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अश्विनी कुमार और छंद है त्रिष्टुप और अनुष्टुप।
1: वसु रुद्रा पुरुमंतु वृधंता दशस्यतम नो वृषणामभिष्टौ दस्राह यद्रेक्ण औचथ्यो वाम प्र यत् सस्राथे अकवाभिरुति। हे सामर्थ्यवान शत्रुनाशक, सबके आश्रय रूप, दुष्टों के लिए रौद्र रूप, ज्ञानवान समृद्धिशाली अश्विनी कुमारों, आप हमें अभीष्ट अनुदान प्रदान करें। उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा के द्वारा धन संपदा प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए जाने पर आप दोनों श्रेष्ठ संरक्षण सामर्थ्यों के साथ शीघ्रता पूर्वक पहुंचते हैं। को वाम दाशत सुमतये चिदस्यै वसु यद्धे थे नमसा पदे गोह जिग्रितमस्मे रेवती ही पुरंधी ही काम प्रेणेव मनसा चरंता। सबको आश्रय देने वाले हे अश्विनी कुमारों, इस पृथ्वी पर जो भी आपकी वंदना करते हैं आप दोनों उन्हें अनुदान प्रदान करते हैं। आपकी श्रेष्ठ बुद्धि की तुष्टि के लिए कौन क्या भेंट दे सकता है। हे सर्वत्र विचरणशील, आप हमें धनों के साथ पोषक दुधारू गौएं भी प्रदान करें। युक्तो ह यद्वाम तौग्याय पेरुर्वी मध्ये अर्णसो धाई पज्रह उप वामवह शरणम गमेयम शूरो नाज्म पतयद्भिरे वैहि। हे अश्विनी कुमारो, राजा तुग्र के पुत्र भुज्यु के संरक्षण के लिए आपने अपने गतिशील यान को सागर के बीच में ही अपनी सामर्थ्य से स्थिर किया। वीर पुरुष जैसे युद्ध में प्रविष्ट होते हैं वैसे ही संरक्षण पूर्ण आश्रय के लिए हम आप दोनों के पास पहुंचे। उपस्तुति रौचथ्य मुरुष्येन्मा मामिमे पतत्रिणी वी दुग्धाम मा मामेधो दशतयश्चितो धाक प्रयद्वाम बद्धस्त्मनि खादति क्षाम। उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा कहते हैं कि हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों के निकट की गई प्रार्थना मेरी रक्षा करे। गतिशील दिन रात्रि मुझे निचोड़ न ले। दश गुनी समिधाएं डालकर प्रज्वलित की गई अग्नि मुझे भस्मीभूत न कर डाले। जिसने आपके इस श्रद्धालु उचथ्य को बांध दिया था वही अब यहां धरती पर असहाय स्थिति में पड़ा है। न मा गरन नद्यो मातृतमा दासा यदीम सुसमुब्ध मवाधुः शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत स्वयं दास उरो असावपि गद्ध। जब उचथ्य पुत्र दीर्घतमा को दस्युओं ने अच्छी प्रकार से जकड़कर बांधकर नदी में फेंक दिया तब मातृ रूपा उन नदियों ने संरक्षण प्रदान किया। जब मेरे सिर, छाती और कंधे को काटने का प्रयत्न किया गया, तब आपकी कृपा एवं दिव्य संरक्षण से आपका सेवक मैं सुरक्षित रहा। दस्यु के ही अंग कट गए। दीर्घतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे अपामर्थम यतीनाम ब्रह्मा भवति सारथिहि। ममता के पुत्र दीर्घतमा ऋषि दशम युग अर्थात 111वें वर्ष में शारीरिक दृष्टि से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने संयमशील उत्तम कर्मों से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त किया। वे ब्रह्म ज्ञान संपन्न, सबके संचालन करने वाले सारथी के समान बने।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 158 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम पुत्रपाठी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
3: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति संगीत। शुभ संध्या, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। दोस्तों, प्रतिदिन एक अच्छी पुस्तक का एक पेज अवश्य पढ़िए, एक अच्छा विचार मन में उतारिए और एक अच्छा कार्य अवश्य कीजिए। समय के साथ यही छोटी छोटी आदतें महान व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। आइए सुनते हैं ये गणपति वंदना।

आज नहीं तो कल सही मेहनत रंग जरूर लाएगी। रात चाहे कितनी अंधेरी हो, सुबह उजाला लेकर आएगी। मुश्किलें आए तो घबराना नहीं, हर ठोकर कुछ ना कुछ सिखाती है। धैर्य रखो और चलते रहो, किस्मत खुद रास्ता बनाएगी।

प्रतिदिन अपने ज्ञान में एक नया विचार जोड़िए, अपने व्यवहार में एक नई मधुरता जोड़िए और अपने जीवन में एक नया सत्कर्म जोड़िए। समय के साथ यही छोटे छोटे प्रयास हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है दामोदर धर्मानंद गोस्वामी पर।

नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहा गया है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। किसी एक इंसान में 10-20 आदमी के होने की और उसे कई कई बार देखने की ये बात इंसानी फितरत की बात है। लेकिन कुछ ऐसी विलक्षण विभूतियां भी हमारे देश में हुई हैं, जिनकी बहुमुखी प्रतिभा के इतने आयाम हैं कि मन उलझ कर रह जाता है कि एक शब्द में उनका क्या परिचय हो। ऐसा ही विलक्षण व्यक्तित्व था दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का। डीडी कोसाम्बी एक महान गणितज्ञ थे। इसके साथ ही उन्होंने अनुवांशिकी, मुद्रा शास्त्र, इंडोलॉजी, संस्कृत अध्ययन और भारतीय इतिहास पर भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें भारतीय इतिहास लेखन के मार्क्सवादी उपागम का पितामह माना जाता है। लेकिन विशेष बात यह है कि उनके लेखन में उनकी निजी स्वतंत्र दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी का जन्म 31 जुलाई सन 1907 को गोवा के कोसबेन में हुआ था। उनके पिता धर्मानंद कोसाम्बी एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में काम किया था। दामोदर कोसाम्बी बचपन से ही एक तीक्ष्ण बुद्धि बालक थे। सीखने की ललक, जिज्ञासा और मानवीय मूल्य उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुए थे। अपने जीवन के शुरुआती 5 साल वो गोवा में रहे। सन 1912 में वो पुणे आ गए और यहीं न्यू इंग्लिश स्कूल में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वो बहुत दुबले पतले थे और उनका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता था, इसलिए उनकी शिक्षा बाधित हुई। भारत में कुछ समय स्कूली शिक्षा के बाद सन 1918 में वो पिता के साथ कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स गए। खराब स्वास्थ्य के चलते वो अकादमिक शिक्षा की ओर मुड़े और हार्वर्ड ग्रामर स्कूल में नामांकित हुए। इसके बाद 1920 में उन्होंने कैम्ब्रिज हाई और लैटिन स्कूल में प्रवेश लिया। इस तरह उनकी अभिरुचि अब सभी शैक्षणिक विषयों में हो गई। कैम्ब्रिज में ही उनकी मित्रता नॉर्बर्ट वीनर से हुई, जो अत्यंत मेधावी छात्र थे। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी पर इस मित्रता का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी परीक्षा उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की। परिणाम स्वरूप उन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने से छूट मिल गई। सन 1924 में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन वो बीच में ही भारत लौट आए। सन 1926 में वो पिता के साथ फिर अमेरिका गए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू की। गणित विषय में उनकी विशेष रुचि थी और जॉर्ज डेविड बिरखॉफ उनके मार्गदर्शक गुरु थे। लेकिन डीडी कोसाम्बी ने यहाँ अलग अलग पाठ्यक्रम लेते हुए विषयों की एक अद्भुत श्रृंखला में खुद को विस्तारित किया, और अद्भुत बात यह थी कि प्रत्येक विषय में उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। सन 1929 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान के साथ कला स्नातक की उपाधि प्रदान की। इसके बाद वो अपनी जन्मभूमि भारत की ओर लौटे।

भारत लौटने के बाद दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी बहुत जल्द ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने गणित के साथ ही जर्मन भाषा की कक्षाएं भी लीं, लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी सी थी, क्योंकि अध्यापन के साथ साथ वो शोध भी करना चाहते थे। अपने शोध को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अथक मेहनत की और सन 1930 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया, प्रीसेशंस ऑफ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणित के व्याख्याता के पद पर हुई। इसी बीच उनका विवाह हुआ और पत्नी नलिनी से उनकी दो बेटियां हुईं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में वो दो वर्ष रहे और डिफरेंशियल ज्योमेट्री और पाथ स्पेस के सामान्य क्षेत्र में 8 महत्वपूर्ण शोध पत्र तैयार किए। उनके शुरुआती शोध पत्र फ्रांस, इटली और जर्मनी की पत्रिकाओं में उनकी अपनी भाषाओं में ही प्रकाशित हुए। सन 1932 में वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में नियुक्त हुए। अनेक मतभेदों के चलते

मूल्यांकन आधुनिक सांख्यिकी तरीके से किया। संस्कृत साहित्य भी उनका प्रिय विषय रहा। इसमें उन्होंने भर्तृहरि और भास की रचनाओं की ओर विशेष ध्यान दिया। उनके भाष्य अत्यंत उत्कृष्ट माने जाते हैं। संस्कृत साहित्य से ही वो प्राचीन भारत के इतिहास की ओर बढ़ गए। इस विषय पर उन्होंने अनेक निबंध भी लिखे।

दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि सन 1940 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने उन्हें आमंत्रित किया और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गणित के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वो 16 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। वो शिकागो विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याता भी रहे। देश दुनिया के अनेक विद्वानों से उनका विमर्श हुआ करता था। डीडी कोसाम्बी दुनिया के परमाणुकरण के खिलाफ थे। वो शांति के पक्षधर थे। वो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की वकालत कर रहे थे। इन्हीं विभेद के चलते वो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट से अलग हो गए, लेकिन उनकी शोध रुचि व्यापक होती चली गई। उन्होंने गणित का शोध तो जारी ही रखा, इसके साथ ही वो प्राचीन भारतीय इतिहास और सामाजिक मुद्दों पर शोध कर रहे थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मिथ एंड रियलिटी, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन और एक्सास्पेरेटिंग एसेज। इसके अलावा उन्होंने 5 पुस्तकों का संपादन किया और लगभग 127 शोध लेख लिखे। इस तरह डीडी कोसाम्बी के कार्य का एक व्यापक आसमान है और उनकी दृष्टि अत्यंत विशेष है। उन्होंने संस्कृत साहित्य के ग्रंथों के संपादन हेतु एक विशिष्ट शैली की खोज की तथा इन ग्रंथों को पढ़ने का भी एक सिद्धांत बनाया। बौद्ध धर्म पर उनका लेखन एक क्रांतिकारी कदम था। प्राचीन भारत के इतिहास में जो धार्मिक जीवन था, उसका एक मौलिक सोच के साथ उन्होंने विश्लेषण किया। अपने विश्लेषण के लिए उन्होंने तुलनात्मक तकनीक का प्रयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े मिथकों का उन्होंने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने मुद्रा शास्त्र और अनुवांशिकी पर जो काम किया वो बहुत लोकप्रिय रहा। इसके साथ ही एक गणितज्ञ के रूप में पथ ज्यामिति, सांख्यिकी, संभाव्य संख्या सिद्धांत आदि का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। इस तरह दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी ने विभिन्न विषयों का पारंपरिक सीमाओं से परे जाकर अध्ययन किया तथा अत्यंत मूल्यवान योगदान दिया, जो दुनिया के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। 29 जून सन 1966 को मात्र 58 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए अब सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी परीक्षा। कार्यक्रम है सुनो कहानी।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज मैं सुनो कहानी में आपको सुना रहा हूं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राज काज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आपको ही खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है, जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहां तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी, विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया, ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता, कोई पंजाब से चलाता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा, सा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने देखने में डूबे रहते थे, जिससे बात कीजिए वो नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने में लगते थे और मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते थे कि एक महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वो बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहां छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं भी आ जा नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इस बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा कि गठे हुए बदन का लंबा आदमी खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। फिर उसने जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैल को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज आपने तो मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहां बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, हम मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन ना पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, सब रंग बिरंगी सजधज बनाए दरबार में आबिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं विकीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों रईसों ने जानकीनाथ की ओर देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकारने में कोई आपत्ति ना होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका दृढ़ संकल्प है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वो चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी ना हटेगा। तो श्रोताओं, ये थी मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा। सुनो कहानी के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे सुनो कहानी में मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी परीक्षा। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है हबीब तनवीर पर केंद्रित कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।
1: श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलिनी।

0: रंगमंच यानी वो जगह जहां अमूर्त विचार मूर्त रूप लेते हैं। लेकिन क्या रंगमंच केवल मखमली पर्दों, चमकीली रोशनियों और रटे रटाए अंग्रेजी या संस्कृत निष्ठ संवादों का नाम है? या फिर रंगमंच वो है जो खेत की मेड़ पर धूल उड़ते बाजारों में और आम आदमी के फटे हुए कुर्तों के भीतर धड़कता है? आज से 7 दशक पहले भारत के रंगमंच ने अपनी मखमली कैचुली को उतार फेंका था, और इसका कारण था एक शख्स जिसकी उंगलियों में हमेशा एक पाइप सुलगता था और जिसकी आंखों में आम आदमी का अक्स तैरता था। नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के सभी प्रेमियों का मैं दानिश आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम कला कल्लोलिनी के इस अंक में। हमारी आज की ये कड़ी भारतीय रंगमंच के उस जादूगर के नाम है जिसने नाटक की परिभाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
1: नमस्कार श्रोताओं, और आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र स्वाति। तो आज स्टूडियो में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदला हुआ है। आज हमारे शब्दों में छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी की महक है, बंबई के प्रगतिशील दौर की हलचल है, लंदन और बर्लिन के आधुनिक रंग सिद्धांतों का अक्स है, और सबसे बढ़कर उस फकीर कलाकार की ठसक है जिसे दुनिया हबीब तनवीर के नाम से जानती है।
0: हबीब तनवीर एक ऐसा नाम जिसने कभी गांव के उन अनपढ़ आदिवासियों को, जिन्हें तथाकथित सभ्य समाज दोयम दर्जे का समझता था, उन्हें उठाकर देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर मुख्य कलाकार बनाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित किया कि कला किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की मोहताज नहीं होती, कला तो जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है।
1: तो चलिए श्रोताओं, इस सफर की शुरुआत हम उसी माटी से करते हैं जिसने हबीब साहब के भीतर के कलाकार को सींचा था। समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और हम पहुंच जाते हैं 1 सितंबर 1923 के रायपुर में, तत्कालीन मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ का वो दौर जहां आधुनिकता अभी पैर पसार रही थी लेकिन लोक संस्कृति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवित थी।
0: हबीब साहब का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी जड़ें काफी दिलचस्प थीं। उनके पिता हफीज मोहम्मद फतेह खान साहब मूल रूप से पेशावर के रहने वाले थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वे एक बेहद अनुशासित और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन काम के सिलसिले में वे छत्तीसगढ़ आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी माता एक बेहद सरल और ममतामयी महिला थीं। इस तरह हबीब के भीतर पेशावर की पठानी छवि और छत्तीसगढ़ की तरलता का एक अनूठा संगम बचपन से ही आकार ले रहा था।
1: बचपन में हबीब का नाम हबीब अहमद खान था। रायपुर की सेंट पॉल्स स्कूल के आसपास की गलियों में जब वो घूमते तो उनका ध्यान किताबों से ज्यादा सड़क पर चलने वाले तमाशों, रामलीला, नाचा की मंडलियों और सूफी संतों की कव्वालियों पर रहता। वो अक्सर घर से भागकर रात रात भर चलने वाले छत्तीसगढ़ी नाचा के कार्यक्रमों को देखा करते थे।
0: जी हाँ, और यही वो समय था जब उनके कान लोक धुनों को पकड़ रहे थे। उनके बड़े भाई को शायरी का शौक था, जिससे प्रभावित होकर हबीब ने भी बहुत कम उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया। जब वे अपनी लिखी गजलें और नज्में दोस्तों को सुनाते तो उन्होंने अपना उपनाम रख लिया तनवीर। तनवीर यानी रोशनी या आभा। किसे पता था कि रायपुर की गलियों में अपनी कविताओं से रोशनी बिखेरने वाला ये लड़का एक दिन पूरी दुनिया के रंगमंच को अपनी आभा से चकाचौंध कर देगा।
1: रायपुर से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद हबीब साहब उच्च शिक्षा के लिए नागपुर के मॉरिस कॉलेज पहुंचे। यहां से उन्होंने 1944 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। नागपुर के दिनों में उनकी मुलाकात कई वामपंथी विचारकों और लेखकों से भी हुई जिसने उनकी सोच को एक नया आयाम दिया, लेकिन नागपुर उनके सपनों के लिए छोटा था। उनके भीतर का कलाकार एक बड़े कैनवास की तलाश में था।
0: और वो बड़ा कैनवास था। बंबई सन 1945 में, जब पूरा देश आजादी के आंदोलनों से उबल रहा था।
2: अंग्रेजों भारत छोड़ो,
3: अंग्रेजों भारत छोड़ो।
0: 22 साल का एक नौजवान अपनी जेब में कुछ कविताएं और आंखों में बड़े सपने लिए बंबई की वीटी स्टेशन पर उतरा। बंबई पहुंचकर हबीब साहब को जीवन के कड़े संघर्षों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में एक स्क्रिप्ट राइटर और उद्घोषक के रूप में काम करना शुरू किया। उनकी आवाज का भारीपन और उर्दू हिंदी पर उनकी पकड़ के कारण वे जल्द ही रेडियो के पसंदीदा कलाकार बन गए।
1: रेडियो के साथ साथ उन्होंने फिल्मों के लिए भी लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे किरदार भी निभाए, लेकिन बंबई की वो फिल्मी दुनिया जो पैसे और चकाचौंध के इर्द गिर्द घूमती थी, हबीब साहब के संवेदनशील मन को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। वो तो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सीधे समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति से जुड़ सके। श्रोताओं, बंबई की उस आपाधापी भरी जिंदगी में हबीब साहब केवल पेट पालने के लिए रेडियो में काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके भीतर का रचनाकार एक बड़े सामाजिक बदलाव की छटपटाहट से गुजर रहा था। और इस छटपटाहट को सही दिशा मिली जब वो इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए।
0: इप्टा, जिसने भारत में आजादी के इर्द गिर्द कला को महज मनोरंजन के साधन से ऊपर उठाकर जन जागरण का हथियार बना दिया था, उन्होंने समझा कि जब तक नाटक समाज के शोषित, वंचित और गरीब तबके की आवाज नहीं बनता, तब तक वह बेमानी है। बंबई में उन्होंने बलराज साहनी जैसे महान कलाकारों के साथ मिलकर काम किया।
1: बलराज साहनी, जो खुद लंदन के बीबीसी से लौटकर आए थे और इप्टा के स्तंभ थे, उन्होंने हबीब के भीतर छिपी उस चिंगारी को पहचाना जो पारंपरिक बंधनों को तोड़ देना चाहती थी। हबीब साहब इप्टा की नाटक मंडलियों के साथ बंबई की मजदूर बस्तियों, चालों और मीलों के सामने जाकर नुक्कड़ नाटक किया करते। इस दौर ने उन्हें ये सिखाया कि एक अभिनेता को मंच पर किसी भारी भरकम मेकअप की जरूरत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखों की सच्चाई और उसके संवादों की प्रामाणिकता होती है।
0: बंबई में वैचारिक रूप से समृद्ध होने के बाद हबीब साहब दिल्ली आ गए। यहां आकर उन्होंने रंगमंच की दुनिया में वो धमाका किया जिसने दिल्ली के अभिजात्य नाट्य समीक्षकों को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 11 मई 1954 और जगह थी दिल्ली का ओखला। नाटक का नाम था आगरा बाजार।
1: श्रोताओं, ये कोई साधारण नाटक नहीं था। उस दौर में दिल्ली के थिएटरों में अमीर घरों के लोग सूट बूट पहनकर अंग्रेजी शैली के नाटक देखने जाया करते थे, लेकिन हबीब साहब ने 18वीं सदी के जनकवि नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेकर एक ऐसा नाटक रच डाला जिसका कोई पारंपरिक नायक या नायिका नहीं थी। इस नाटक का नायक था खुद आगरा का बाजार।
0: और जानते हैं इसकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? हबीब साहब ने इस नाटक के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मंजे हुए कलाकारों को नहीं लिया। वे सीधे दिल्ली की जामा मस्जिद की गलियों में गए। वहां से उन्होंने ककड़ी बेचने वाले, पतंगबाज, कबाड़ का कारोबार करने वाले और यहां तक कि असली भीख मांगने वाले फकीरों को पकड़ा और उन्हें मंच पर ला खड़ा किया।
1: समीक्षकों ने कहा कि ये पागलपन है, ये अनपढ़ लोग मंच पर क्या अभिनय करेंगे। लेकिन जब नाटक शुरू हुआ तो मंच पर कोई कृत्रिम सेट नहीं था। मंच पर सचमुच की ककड़ियां बिक रही थी, पतंगे उड़ रही थी और जब नजीर अकबर आबादी की नज्म गूंजी, सब ठाट पड़ा रह जावेगा। जब लाद चलेगा बंजारा, तो पूरा सभागार रो पड़ा। हबीब साहब ने दिखा दिया कि बाजार का आम आदमी जब मंच पर आता है तो वो अभिनय ही नहीं करता, वो अपनी जिंदगी जीता है।
0: आगरा बाजार की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर रातोंरात भारतीय रंगमंच के बड़े सितारे बन गए, लेकिन वे अपनी कला को और अधिक मांझना चाहते थे। इसी खोज में वे 1955 में यूरोप के लिए रवाना हुए। वे लंदन पहुंचे, जहां उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नाट्य संस्थान रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट यानी राडा में दाखिला लिया।
1: इसके बाद उन्होंने ब्रिस्टल ऑल वीक थिएटर स्कूल से पश्चिमी रंगमंच के तकनीकी पहलुओं जैसे लाइटिंग, सेट डिजाइनिंग, स्टेज क्राफ्ट को बहुत गहराई से सीखा। उन्होंने यूरोप के महान नाटककारों जैसे शेक्सपियर, इब्सन और चेखव के नाटकों का भी अध्ययन किया।
0: लेकिन हबीब साहब के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट तब आया जब वे बर्लिन गए और उन्होंने वहां बर्लिनर असेंबल में महान जर्मन नाटककार बर्टोल ब्रेख्त के काम को बहुत करीब से देखा। ब्रेख्त का एपिक थिएटर और उनका एलिमिनेशन इफेक्ट यानी दर्शकों को नाटक में पूरी तरह डुबोने के बजाय उन्हें सोचने पर मजबूर करना, ये एक ऐसी तकनीक थी जिसने हबीब साहब को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया।
1: लेकिन दिलचस्प बात देखिए श्रोताओं, यूरोप की इन विश्व प्रसिद्ध एकेडमियों में 3 साल बिताने के बाद भी हबीब साहब जब भारत लौटे तो शेक्सपियर या ब्रेख्त के नाटकों की अंधी नकल लेकर वापस नहीं आए। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, लंदन और बर्लिन जाकर मुझे ये समझ आया कि पश्चिमी थिएटर कितना भी समृद्ध हो पर वो मेरे देश की आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकता। यूरोप ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने देश के गांवों की ओर लौटना होगा जहां असली कला अब भी जिंदा है।
0: यूरोप से लौटकर हबीब साहब एक बिल्कुल बदले हुए इंसान थे। अब उनके सामने लक्ष्य साफ था, एक ऐसा रंगमंच तैयार करना जो पूरी तरह भारतीय हो, जिसकी जड़ें मिट्टी में हों लेकिन उसकी टहनियां वैश्विक आकाश को छूती हों। और इस महायात्रा में उन्हें साथ मिला उनकी जीवन संगिनी मोनिका मिश्रा का।
1: जी हाँ, मोनिका मिश्रा जो खुद एक विदुषी और कला मर्मज्ञ महिला थी, उन्होंने हबीब साहब के सपनों को न केवल समझा बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम भी किया। और इसी अटूट साथ का परिणाम था 1959 में दिल्ली में नया थिएटर की स्थापना।
0: नया थिएटर केवल एक नाट्य संस्था नहीं थी, यह भारतीय रंगमंच की एक नई प्रयोगशाला थी। हबीब साहब और मोनिका जी ने तय किया कि वे शहरी और किताबी कलाकारों के बजाय उन लोक कलाकारों को मंच देंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को सीने से लगाए बैठे हैं। उन्होंने दिल्ली के वातानुकूलित कमरों को छोड़ा और रुख किया छत्तीसगढ़ की अनाम गलियों और देहातों का।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में मनोरंजन की एक बहुत पुरानी विधा है, नाचा। नाचा यानी वो कला जिसमें हास्य, व्यंग, संगीत और नृत्य के जरिए रात रात भर गांवों में कहानियां सुनाई जाती हैं। हबीब साहब जब इन नाचा मंडलियों के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां ऐसे नायाब हीरे मिले जिनकी चमक ने आगे चलकर दुनिया को हैरान कर दिया।
0: इन हीरो में सबसे चमकता नाम था फिदाबाई मरकाम, एक ऐसी महिला कलाकार जो कभी स्कूल नहीं गई लेकिन जब वे मंच पर आती थीं तो बड़ी बड़ी आधुनिक अभिनेत्रियां उनके सामने फीकी पड़ जाती थीं। उनके अलावा लालू राम, मदन लाल, गोविंद राम और ठाकुर राम जैसे कलाकार नया थिएटर की रीढ़ बने।
1: हबीब साहब का इन कलाकारों के साथ काम करने का तरीका भी बेहद अनोखा था। वो उन्हें कभी अंग्रेजी या उर्दू के कठिन संवाद रटाते नहीं थे, वे इन कलाकारों को एक कहानी सुना देते थे और कहते थे अब इसे अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने अंदाज में खेलो।
0: इसके बाद जो जादू मंच पर बिखरता था उसकी कल्पना कोई शहरी निर्देशक कर ही नहीं सकता था। ये कलाकार मंच पर भूल जाते थे कि वे अभिनय कर रहे हैं। हबीब साहब अक्सर कहते थे कि शहरी कलाकार अभिनय करना सीखता है, जबकि ये लोक कलाकार कला को जीते हैं। इनके खून में लय है, इनकी सांसों में संगीत है। हबीब साहब ने इन अनपढ़ कहे जाने वाले ग्रामीण कलाकारों को वेतन दिया, उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाया और उन्हें नया थिएटर के जरिए रंगमंचीय सितारा बना दिया।
1: और इसी अनोखे संगम से सन 1975 में एक ऐसा नाटक जन्मा जिसने भारतीय रंगमंच के इतिहास को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर की।
0: यह नाटक शास्त्रीय नाट्य कला और लोक ऊर्जा का ऐसा बेजोड़ नमूना था जो आज तक दोबारा नहीं रचा जा सका। चरण दास एक ऐसा चोर है जो चोरी तो करता है लेकिन झूठ नहीं बोलता। वह अपने गुरु को चार अजीबोगरीब वचन देता है और अपनी ईमानदारी के कारण अंत में राजा और रानी के पाखंड की बलि चढ़ जाता है। इस नाटक में हास्य भी था, व्यंग भी था और सत्ता के खिलाफ एक जोरदार बगावत भी थी।
1: सन 1982 का वो साल कोई नहीं भूल सकता जब हबीब साहब अपने इन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को लेकर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग इंटरनेशनल फ्रेंच फेस्टिवल पहुंच गए। वहाँ यूरोप के सबसे बड़े बड़े थिएटर ग्रुप्स भी आए हुए थे। जब नया थिएटर ने चरण दास चोर का मंचन शुरू किया तो भाषा की दीवारें जैसे पल भर में ढह गई।
0: विदेशी दर्शक भले ही छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं समझ पा रहे थे लेकिन फिदाबाई और लालू राम की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के भाव और नाटक की अद्भुत लय ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से कांप उठा। चरणदास चोर को वहां का सर्वोच्च फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड मिला। एडिनबर्ग के प्रमुख अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, भारत के इन ग्रामीण कलाकारों ने पश्चिमी रंगमंच को ये सिखाया है कि असली थिएटर किसे कहते हैं।
1: श्रोताओ, हबीब साहब जहां एक तरफ लोक हास्य के उस्ताद थे वहीं वो मानवीय त्रासदियों और सामाजिक दर्द को भी उतनी ही शिद्दत से मंच पर उतारते थे। और इसका सबसे बड़ा गवाह बना नाटक जिन लाहौर ने वेख्या ओ जमियाई नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया।
0: प्रख्यात लेखक असगर वजाहत जी द्वारा लिखित इस नाटक को जब हबीब साहब ने अपने निर्देशन में ढाला तो वह केवल एक नाटक नहीं रहा बल्कि वह विभाजन के दर्द से कराहते उपमहाद्वीप का एक जीवंत दस्तावेज बन गया। ये कहानी थी लाहौर की एक बूढ़ी हिंदू महिला की जिसे लोग माई कहते हैं। विभाजन के समय जब सब भाग रहे होते हैं माई अपना लाहौर छोड़ने से इनकार कर देती है। उसकी आलिशान हवेली भारत से आए एक मुस्लिम शरणार्थी परिवार को मिल जाती है।
1: शुरुआत में नफरत और डर का माहौल होता है लेकिन धीरे धीरे माई का निश्चल प्यार उस मुस्लिम परिवार के दिलों को जीत लेता है। हबीब साहब ने इस नाटक में जो दृश्य रचे थे वो रोंगटे खड़े करने वाले थे। जब मंच पर कट्टरपंथी गुंडे उस माई को मारने आते हैं तो वो मुस्लिम शरणार्थी परिवार उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है।
0: इस नाटक के जरिए हबीब साहब ने दिखाया कि मजहब, राजनीति और सीमाएं इंसानों को बांट सकती हैं, लेकिन वे उस मानवीय करुणा को नहीं मार सकती जो दिलों को जोड़ती है। इस नाटक में प्रयुक्त सूफी कव्वालियों ने ऐसा माहौल बनाया कि भारत से लेकर पाकिस्तान तक जहां भी इस नाटक का मंचन हुआ दर्शकों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यह नाटक सांप्रदायिकता के खिलाफ हबीब साहब का सबसे बड़ा कलात्मक शंखनाद था।
1: हबीब साहब की एक और बड़ी खूबी ये थी कि वो प्राचीन संस्कृत क्लासिक्स को भी पूरी तरह से लोक रंग में ढाल देते थे। इसका सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण था मिट्टी की गाड़ी।
0: महाकवि शूद्रक के 2500 साल पुराने संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम को हबीब साहब ने जब मिट्टी की गाड़ी के रूप में बदला तो उन्होंने इसके भारी भरकम शास्त्रीय नियमों को हटा दिया। छत्तीसगढ़ के जनजातीय कलाकारों ने इस नाटक को इस तरह खेला जैसे ये उनके ही गांव की कहानी हो। राजा की क्रूरता, चोर की चालाकी और चारुदत्त की सज्जनता, सब कुछ लोक संगीत के प्रवाह में ऐसा बहा कि इतिहास और वर्तमान का अंतर ही मिट गया।
1: लेकिन हबीब साहब का ये वैचारिक सफर फूलों की सेज नहीं था। वो एक बेहद निडर और प्रगतिशील रचनाकार थे और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब उन्होंने नाटक पोंगा पंडित का मंचन किया।
0: पोंगा पंडित समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ठेकेदारों पर एक बेहद तीखा व्यंग था। इस नाटक के कारण देश के कई रूढ़िवादी और कट्टरपंथी संगठनों ने हबीब साहब का हिंसक विरोध किया।
1: लेकिन हबीब तनवीर वो चट्टान थे जो बवंडरों से नहीं डरा करते। उन्होंने एक बार मंच पर खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से कहा था, तुम मेरी देह को मार सकते हो, मेरे सेट जला सकते हो, लेकिन मेरे भीतर की उस सोच को कैसे मारोगे जो समानता और इंसानियत की बात करती है। वो अपने कलाकारों के साथ हर मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने कभी भी डरकर अपने नाटकों के शोज बंद नहीं किए। उनकी यही निडरता उन्हें भारतीय रंगमंच का भीष्म पितामह बनाती है।
0: हबीब साहब के इस पूरे सफर में देश की राजधानी दिल्ली और छत्तीसगढ़ के गांव के बाद अगर किसी एक शहर ने उनकी कला और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो शहर था झीलों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। जी हां, सन 1980 और 90 के दशक में भोपाल कला और संस्कृति का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा था और इसकी वजह थी वहां स्थापित हुआ भारत भवन। हबीब साहब जब भोपाल आए तो वे केवल नाटक करने नहीं आए बल्कि वे इस शहर की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बन गए। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश रंगमंडल का निदेशक नियुक्त किया। यहां रहते हुए उन्होंने भोपाल के शहरी कलाकारों और रंगकर्मियों को लोक कला की उस विधा से परिचित कराया जिसे वे छत्तीसगढ़ से सीख कर आए थे।
1: और आप जानते हैं श्रोताओं, भोपाल में ही हबीब साहब ने अपने जीवन का सबसे शांत, गंभीर और परिपक्व समय बिताया। उन्होंने भोपाल के श्यामला हिल्स इलाके में अपना डेरा जमाया। यहाँ नया थिएटर के कलाकारों के रिहर्सल 2400 घंटे चला करती। भोपाल की सड़कों, कॉफी हाउस और भारत भवन के कैफे में हबीब साहब का अपनी मूछों को सहलाते हुए पाइप सुलगाते हुए बैठना वहां की युवाओं और बुद्धिजीवियों के लिए एक रोज का नजारा बन गया था। उन्होंने भोपाल के स्थानीय मुद्दों और वहां की गंगा जमुनी तहजीब को बहुत करीब से देखा और उसे अपने नाटकों में पिरोया।
0: और हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले दौर को कैसे भूल सकते हैं जब 1984 में भोपाल ने यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी का वो भयानक दंश झेला था। हबीब साहब उस समय भोपाल में ही थे। इस त्रासदी ने उनके संवेदनशील रचनाकार को भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने तात्कालिक रूप से सड़कों पर उतरकर गैस पीड़ितों के हक में नुक्कड़ नाटक किए और दुनिया को भोपाल के इस दर्द से रूबरू कराया। उन्होंने अपने नाटकों के जरिए औद्योगिक लालच और मानवीय लापरवाही पर तीखे सवाल उठाए
1: और अपने अंतिम दिनों में शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद हबीब साहब ने भोपाल को ही अपनी कर्म भूमि बनाए रखा। उन्होंने भोपाल में कई नाट्य कार्यशालाएं आयोजित की जहां उन्होंने मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा लड़के लड़कियों को थिएटर का ककहरा सिखाया। आज भोपाल के रंगमंच में जो निडरता और सामाजिक सरोकार दिखाई देता है उसके नींव में हबीब साहब का वही भोपाल कालखंड है। वो अंत तक भोपाल की आबोहवा में रचे बसे रहे और इसीलिए इस शहर ने उन्हें अपनी कला का सर्वोच्च सम्मान कालीदास सम्मान भी प्रदान किया। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, पद्मश्री 1983 और 2002 में पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया।
0: श्रोताओं, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहता है। और हर महान यात्रा का एक पड़ाव आता है। 8 जून 2009 का वो काला दिन भारतीय कला जगत कभी नहीं भूल सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक अस्पताल में 85 वर्ष की आयु में इस महान रंग शिल्पी, इस मिट्टी के मसीहा ने अपनी आखिरी सांस ली।
1: उनके निधन की खबर फैलते ही न केवल भोपाल और छत्तीसगढ़ बल्कि लंदन और बर्लिन तक रंगमंच की दुनिया में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। छत्तीसगढ़ के गांवों से आए वो लोक कलाकार जिन्हें हबीब साहब ने दुनिया घूमना सिखाया था, अनाथ हो गए। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
0: आज भले ही हबीब तनवीर सशरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन नया थिएटर की जो मशाल उन्होंने जलाई थी, उसकी रोशनी आज भी आधुनिक निर्देशकों का रास्ता रोशन कर रही है। उन्होंने हमें सिखाया कि कला ड्राइंग रूम की सजावट की वस्तु नहीं है, कला तो समाज की विसंगतियों से लड़ने का, उसे बेहतर बनाने का एक माध्यम है।
1: जब भी कोई नाटककार अपनी जड़ों की तलाश में गांव की पगडंडियों की ओर मुड़ेगा, जब भी कोई निर्देशक सत्ता के पाखंड के खिलाफ निडर होकर मंच पर आवाज उठाएगा, हबीब तनवीर अपने सुलगते हुए पाइप और बिखरे सफेद बालों के साथ मुस्कुराते हुए वहां अदृश्य रूप में खड़े दिखाई जरूर देंगे।
0: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी के इस विशेष अंक को अब हम यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और महान कला साधक की जिंदगी के पन्नों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम, लेखन संदीप शर्मा और मैं था दानिश।
1: मैं थी आपके साथ स्वाति।
0: अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 FM, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शिव भाई गुप्ता का निमहाड़ी गायन।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: एक निमाड़ की माटी की जो बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है गणगौर, ये गीत प्रदेश तो प्रदेश, देश के अन्य हिस्सों में मेरी आवाज में सुना जाता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलो गणगौर मैया की
1: जय हो।

0: बोलो गणगौर मैया की
1: जय हो।
2: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत शिव भाई गुप्ता का निमाड़ी गायन। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए आप सुनते हैं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जयंती पर केंद्रित कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
0: याद करो कुर्बानी। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे राजेंद्र लाहिड़ी की। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी काशी के रहने वाले थे। जब वे क्रांतिकारी आंदोलन में आए तो वे हिंदू कॉलेज के छात्र थे। असहयोग के युग के बाद उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो पुनरुत्थान हुआ उसका काशी ही केंद्र बना। काशी में बंगालियों की काफी संख्या थी, इस कारण बंगाल के क्रांतिकारी आकर काशी में अच्छी तरह से छिप सकते थे। जो लोग पहले पहल बंगाल से क्रांतिकारियों के दल की शाखा स्थापित करने के लिए काशी आए थे, उन लोगों ने कल्याण आश्रम नाम से एक फर्जी संस्था बनाई थी। देखने में इस आश्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति था, पर ब्रह्मचारी और सन्यासी लगने वाले युवक भीतर ही भीतर केवल इस बात की टोह लेते रहे कि कौन से युवक ऐसे हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने योग्य हैं। धर्म की आड़ लेकर काशी में काम करना सबसे सरल था। उन लोगों का उद्देश्य था पहले दो एक बंगाली युवकों को पकड़ा जाए, इनके जरिए हिंदी भाषी लोगों को आंदोलन में लाया जाए। बाहर से आए हुए इन लोगों के अतिरिक्त रास बिहारी बोस के जमाने के प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता शचीन्द्रनाथ सान्याल ने भी काशी में संगठन शुरू किया। उनके पुराने साथी सुरेश चंद्र भट्टाचार्य आदि उनके साथ हो गए। इस प्रकार से एक ही साथ उस समय के संयुक्त प्रांत और आज के उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी दल का दो हिस्सों में संगठन होने लगा। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी शचीन्द्रनाथ सान्याल के दल में आ गए। कहना न होगा कि ये परिस्थिति चल नहीं सकती थी, क्योंकि जब उद्देश्य और उपाय एक ही था तो एक ही स्थान में दो दल होने का कोई अर्थ होता ही नहीं था। इसलिए थोड़े ही दिनों के अंदर दोनों दलों के नेताओं में बातचीत शुरू हुई। जो लोग आश्रम बनाकर काम करने आए थे वे बंगाल के अनुशीलन दल के दूत थे, इसलिए बातचीत बंगाल के अनुशीलन दल और शचीन्द्रनाथ सान्याल के बीच हुई। शचीन्द्रनाथ सान्याल बहुत विद्वान और उच्च विचारों के व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि सारे भारतवर्ष के लिए एक ही क्रांतिकारी दल हो और उसकी एक उच्च कमान हो, जहां से सब नीतियों का निर्धारण और दल का संचालन हो। पर अनुशीलन दल तथा बंगाल के दूसरे दल इस सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं थे, यानी वे एक हद तक ही एक होना चाहते थे। क्रांतिकारी दल के ऐसे संगठन में छोटे छोटे संगठन होना इसलिए बहुत बड़ी हद तक सही था कि यदि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति भी मुखबिर बन जाता तो वो एक दल को ही नष्ट कर सकता था, बाकी सब दल ज्यों के त्यों बने रहते। श्रोताओं, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, उसके पहले आइए सुनते हैं राष्ट्र गौरव का गान।

अनुशीलन दल और सचिंद्र बाबू के दल दीर्घ बातचीत के फलस्वरूप एक दल में परिणत हो गए। सच पूछिए तो इसे दो दलों का एकीकरण नहीं कहा जा सकता, बल्कि अनुशीलन दल जहां तक उत्तर भारत का संबंध है सचिंद्रनाथ बाबू के दल के अंतर्भूत हो गया। अनुशीलन दल को सचिंद्र बाबू के दल में अंतर्भूत इसलिए होना पड़ा कि बनारस के बाहर उनका कहीं पता नहीं था। इनके दूत हिंदी नहीं जानते थे, इसलिए ये बनारस से, जहां बंगालियों की संख्या बहुत है, आगे नहीं बढ़ सकते थे। सचिंद्र बाबू की ही चेष्टा से बंगाल के भिन्न भिन्न क्रांतिकारी दलों की एक केंद्रीय कमेटी बंगाल में बनाई गई, पर इस कमेटी ने ढंग से काम नहीं किया। सचिंद्र दादा ने आसानी से इस कमेटी पर अपना नेतृत्व स्थापित कर लिया होता और ये इस कमेटी के लिए अच्छा ही होता, पर बंगाल की पार्टियों के विधान में इस प्रकार के बाहरी प्रभाव को, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, बर्दाश्त करने का मुद्दा नहीं था। इसके अतिरिक्त बंगाल ऑर्डिनेंस के कारण समस्त प्रमुख क्रांतिकारी अपने अपने कर्म क्षेत्र से अक्टूबर सन 1924 में धरकर बंद कर दिए गए और इस कमेटी की योजना के लिए कोई अवसर नहीं बचा। इस प्रकार अब बनारस में एक पार्टी हो गई और लोगों को बताया गया कि आगे से हम सब इनके अधीन ही काम करेंगे। राजेंद्र बाबू बहुत ही मीठे स्वभाव के नौजवान थे। उनका चेहरा इतना कोमल था कि उसमें करीब करीब एक लड़की की तरह की कोमलता थी। इसके अतिरिक्त उनके चेहरे पर सदा हंसी छाई रहती थी। उनको प्रथम दृष्टि में देखने पर ऐसा ज्ञात होता था कि वे जीवन की आनंददायक वस्तुओं के लिए पैदा हुए हैं, पर उनकी आंखों में ऐसा कोई तत्व था, एक दृढ़ निश्चय, जिसके कारण वे दूसरी ही गंभीर वस्तुओं के लिए उत्पन्न ज्ञात होते थे। उनको काम करने में फिर भी एक बड़ी दिक्कत थी और वे उस दिक्कत को महसूस भी करते थे। साथियों में से कुछ जो असहयोग आंदोलन में भाग लेकर जेल जा चुके थे, व्यावहारिक राजनीति से अधिक परिचित होने का दावा कर सकते थे। भारतीय राजनीति के उन दिनों के चेहरे मोहरे से भी ये साथी परिचित थे। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग राष्ट्रीय विद्यालय तथा कॉलेज के एक छात्र होने के कारण उस समय की कांग्रेस राजनीति के अंदरूनी दांवपेच से भी परिचित थे, लेकिन राजेंद्र बाबू बिल्कुल ही इस संबंध में अज्ञ थे। जो हो, उन्होंने इन लहरों को पकड़ने की कोशिश की, किंतु लहरों के केंद्रों से दूर रहने के कारण उन्हें चीजों को समझने में बहुत भारी चेष्टा करनी पड़ी। पर राष्ट्रीय कॉलेज या स्कूल के लोग इन्हीं बातों को स्वाभाविक रूप से आसानी से सीख जाते थे। इसके अतिरिक्त जन्म चिन्हों से बचना बहुत मुश्किल है, ये व्यक्तियों और संस्थाओं दोनों के संबंध में सत्य है। जब दो संगठनों का एक संगठन बना और वे अविभाज्य अंग बन चुके, लेकिन लोग ये नहीं भूल सके कि राजेंद्र बाबू उन पर लादे गए थे, और ये न भूलना कुछ कुछ एक शिकायत के रूप में भी था। यदि राजेंद्र बाबू अपने साथ कुछ क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी ले आते, या यदि उनका क्रांतिकारी जीवन साधारण क्रांतिकारियों से अधिक श्रेष्ठ होता, तो वे अधिक सफल होते, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से, जिस रूप में वो आए थे, उसमें उनको सरदार के रूप में प्रतिष्ठित होने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन बातों को इसलिए भी रखा जाना जरूरी है ताकि ये दिखाया जा सके कि पार्टी सब पार्टियों की तरह, यहां तक कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी पार्टी रूस की बाल्शेविक पार्टी की तरह रक्त मांस के मनुष्यों से ही बनी थी। अवश्य ही सचिंद्र बाबू ने इस प्रकार एक गिरोह पर, जो अपनी शैशवावस्था पार कर चुका था, ऊपर से राजेंद्र बाबू को लाद कर गलती की थी, पर उन्होंने इस संबंध में कोई गलती नहीं की कि राजेंद्र बाबू एक दिन अपने समसामयिकों से केवल थोड़े बड़े नहीं, बल्कि बहुत बड़े हो जाएंगे और उनके सामने सभी लोग बौनों की तरह ज्ञात होंगे। अब से 4 साल बाद उनको फांसी होने वाली थी। श्रोताओं, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले आपके लिए प्रस्तुत है ये देशगान।

राजेंद्रनाथ लाहिड़ी हर तरह से दल के लिए उपयोगी होने की चेष्टा करते रहे और वे उसमें सफल भी हुए। जब भी जो काम उन पर पड़ा उन्होंने फौरन ही उसे ग्रहण किया। पहले ऐसा समझा जाता था कि उन्हें केवल संगठन का ही काम दिया जाएगा, पर उन्होंने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्रनाथ बख्शी आदि काशी के क्रांतिकारी डकैतियों में भाग ले रहे थे और सफलतापूर्वक भाग ले रहे थे, तो वे भी डकैतियों में जाने लगे। इस प्रकार जब दल की तरफ से ये तय हुआ कि केवल बंदूक पिस्तौल के संग्रह तक ही अपने को सीमित न रखा जाए, तो राजेंद्र लाहिड़ी संयुक्त प्रांत की तरफ से बम बनाना सीखने के लिए कलकत्ता भेजे गए। इसलिए जब 26 सितंबर सन 1925 को बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं, तो राजेंद्रनाथ लाहिड़ी पकड़े गए। पर जब काकोरी का मुकदमा चालू हुआ था तो उस समय दक्षिणेश्वर के एक मकान में बम का एक कारखाना पकड़ा गया था, जिसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी अन्य कई साथियों सहित गिरफ्तार हो गए। पुलिस ये चाहती थी कि काकोरी और दक्षिणेश्वर दोनों मुकदमों को इकट्ठा कर दिया जाए, पर कानूनी सलाहकारों ने ये कहा कि दोनों मुकदमों को अलग चलाया जाए। तदनुसार दक्षिणेश्वर के बम के कारखानों का अलग मुकदमा चला। इसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 10 साल की सजा हुई। इसके बाद वे एक दंडित कैदी के रूप में लखनऊ लाए गए और वहां पर उन्हें फिर से काकोरी षड्यंत्र का अभियुक्त बना दिया गया। मुकदमे के रुख से ये स्पष्ट हो गया था कि मुख्य मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल के अतिरिक्त राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को भी फांसी की संभावना है। सन 1927 की 6 अप्रैल को अंततः सजा सुनाई गई और मुख्य मुकदमे में 3 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें राजेंद्रनाथ लाहिड़ी भी शामिल थे। श्रोताओं, आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे इस देशभक्ति गीत के बाद।

राजेंद्रनाथ लाहिड़ी ने जब सजा सुनी तो हालांकि वो पूर्णतः तैयार थे, पर उन्होंने बांग्ला में कहा, दुनियादा जैनो बदले गैलो, यानी दुनिया जैसे बदल गई, और फिर अगले ही क्षण वे संभल गए और उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही मोहिनी बचपन भरी हंसी आ गई। सजा सुनने के बाद सचमुच सबकी दुनिया बदल गई। थोड़ी देर बाद राजेंद्र लाहिड़ी बोले, मेरी तो थोड़े ही दिनों की तकलीफ है, महीने दो महीने में खत्म हो जाएगी, पर मुझे उन लोगों की चिंता हो रही है जिन्हें 14-14 और 20-20 साल जेल में सड़ना है। सजा सुनने के बाद दंडित अभियुक्तों ने मिलकर सरफरोशी की तमन्ना ये गीत गाया। पहले ही सब कुछ तैयार था। उसी रात को राजेंद्रनाथ लाहिड़ी गोंडा जेल भेज दिए गए, वहीं उनको फांसी दी गई। ये एक आश्चर्य की बात है कि अपने मुकदमे के 4 फांसी वालों में उन्हें 17 दिसंबर 1927 को फांसी लगी, जबकि बाकी फांसी वालों को 19 दिसंबर को फांसी दी गई। 14 दिसंबर को उन्होंने एक पत्र लिखा था। वो पत्र इस प्रकार था। उन्होंने लिखा, कल मैंने सुना कि प्रीवी काउंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार कर दी है। आप लोगों ने हम लोगों की प्राण रक्षा के लिए बहुत कुछ किया, कुछ उठा नहीं रखा, पर मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य मृत्यु से दुख और भय क्यों माने? वो तो नितांत स्वाभाविक अवस्था है, उतनी ही स्वाभाविक जितना प्रातःकालीन सूर्योदय। यदि ये सच है कि इतिहास पलटा खाया करता है, तो मैं समझता हूं कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको मेरा नमस्कार, अंतिम नमस्कार। आपका राजेंद्र। इस तरह इस महान क्रांतिकारी ने अपना सर्वस्व देश की बलिवेदी पर अर्पित कर दिया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

0: कार्यक्रम है शब्दों के शिल्पकार, और इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महान कवि नागार्जुन जी की। उनकी मुझे एक कविता याद आ रही है, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीव कटी है भारत माता मचा न पाती शोर, देखो धसी धसी सी आंखें पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। श्रोताओं, ये पंक्तियां हैं प्रगतिवादी और क्रांतिकारी विचारधारा के लेखक और कवि नागार्जुन की। श्रोता, नागार्जुन ने 1945 के आसपास साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम रखा था। नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से बहुत सारी रचनाएं लिखी। चलिए अब हम आपको देते हैं नागार्जुन जी का एक जीवन परिचय छोटा सा।
1: जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं।
0: बिल्कुल ठीक।
1: जन कवि बाबा नागार्जुन की ये पंक्तियां उनके जीवन दर्शन, व्यक्तित्व और साहित्य का दर्पण है।
0: जी हाँ।
1: साहित्य जगत में बाबा के नाम से मशहूर नागार्जुन जी अपने समय की हर महत्वपूर्ण घटना पर तेज तर्रार कविताएं लिखने वाले एक ऐसे ही क्रांतिकारी, हरफनमौला शख्सियत थे
0: जी।
1: जिन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं और कई भाषाओं में लेखन कर्म के साथ साथ जन आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका नेतृत्व भी किया।
0: हाँ श्रोता, 23 जून 1911 के दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का चंद्रमा हिंदी काव्य जगत के उस दिवाकर के उदय का साक्षी बना जिसने अपनी बेबागी से अपनी पहचान बनाई। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के सतलखा ग्राम में हुआ था। सतलखा उनके पैतृक ग्राम तेरानी जिला दरभंगा के निकट ही है।
1: नागार्जुन का जन्म निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनका बचपन घोर अभावों में बीता। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थे जो जीवित बचे थे। 4 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तब उनकी बुआ ने उनका लालन पालन किया।
0: श्रोता, 1925 में नागार्जुन जी ने गमोली प्राथमिक पाठशाला में प्रथम और मध्यमा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा बनारस विश्वविद्यालय में ग्रहण की और वहां से साहित्याचार्य की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1 वर्ष कलकत्ता में रह करके उन्होंने काव्य तीर्थ की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद वे श्रीलंका चले गए जहां उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की और वैद्यनाथ नाम त्याग करके नागार्जुन नाम ग्रहण कर लिया। बाद में उन्होंने श्रीलंका के किटोलेन विद्यालय में पाली भाषा का अध्यापन किया।
1: 1930 में जब वे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वापस स्वदेश लौटे तो उनके जाति भाई ब्राह्मणों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर सन्यासी बनने पर ससुराल वालों ने उनके पिता को कसूरवार ठहराया और हिदायत दी कि दामाद को वापस जाति में आने को कहें, नहीं तो उन्हें जेल भिजवा देंगे। बाबा नागार्जुन जी ने कभी भी ऐसी बातों की परवाह नहीं की।
0: श्रोता, नागार्जुन जी के साहित्य जगत में बाबा के नाम से मशहूर बाबा नागार्जुन अपने निराले अंदाज के लिए भी खासे चर्चित रहे। उस समय के आलोचकों की आलोचना और व्यंग को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने कर्म पथ का निर्माण स्वयं किया। नागार्जुन जी व्यवहार और विचार के बीच तालमेल बना करके चलते थे। वे जैसा लिखते थे वैसा ही जीवन में भी जीते थे। अपनी कविताओं में उन्होंने मानवता का परिचय बहुत ही कुशलता से पेश किया।
1: श्रोताओं, जनकवि तो वो थे ही, लोगों ने उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा। घुमक्कड़, निडर और अलमस्त जीवन शैली के बाबा नागार्जुन बहुत आत्मीय भी थे। बेतरतीब, बेरखरखाव वाली दाढ़ी और उलझे बाल उनकी पहचान बन गए। खादी का पैजामा, खादी का कुर्ता, पैर में चप्पल, कंधे पर गमछा और खादी का झोला उनकी पहचान थे। नागार्जुन जी सांस्कृतिक पहचान को बचाने वाले कवि थे।
0: हाँ श्रोताओं, सामाजिक चेतना और जनता का शोषण उत्पीड़न के कारण इनका झुकाव मार्क्सवाद चिंतन की ओर हुआ। कृषक नेता स्वामी सहजानंद के साथ उन्होंने बिहार के अनेक किसान आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले और बाद में जेपी आंदोलन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।
1: श्रोताओं, जीवन में उन्होंने कभी नौकरी या व्यवसाय का आश्रय नहीं लिया और खेती के लिए गांव में पर्याप्त जमीन नहीं होने के कारण जीवन भर वो इधर से उधर घूमते रहे। वो खूब घूमते थे पर उन्हें ना तो स्टेशन पर कोई लेने जाता और ना ही छोड़ने।
0: उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से संपूर्ण भारत को समग्रता के साथ समाहित किया। अपनी लय और स्पष्ट बयानी के चलते नागार्जुन हिंदी में सबसे अधिक पठनीय कवि हैं। सीधे सीधे दो टूक बात करना उनकी विशेषता थी।
1: नागार्जुन जी जिंदगी के छोटे छोटे विषय को उठाकर कविता में ले आए। कविता फेंकनी में उन्होंने फेंकनी नामक दूध देने वाली ग्वालिन का उसके पैसे बचाने का वर्णन किया।
0: जरा बताइए हमारे श्रोताओं को क्या था वर्णन।
1: जा हुआ साथी संगी की कमी नहीं होगी, टुन टुन जा रही है सपरिवार, मैना फूफी भी जाएगी और बार काका भी जाएंगे, क्या ग्वाल गोंद क्या तेली सूरी, सबके सब जा रहे गंगा नहाने, दशहरा आया तू भी हुआ, क्या करेगी पैसा बचाकर।
0: श्रोताओं, ऐसा आत्मीय संबंध कहीं और नहीं दिखता। उनकी कविता पढ़ते हुए लगता है कि गांव की चौपाल में बैठे हैं। उन्होंने बरसात में पर निकाल करके मरने को आतुर चींटी पर भी एक कविता लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। पर निकले तो चींटी बोली, आसमान की ऐसी तैसी, इतना खुला नहीं है यह, मुझको उड़ान भरनी है जैसी, शीशम की निचली टहनी की नर्म छाल से पर उड़ गए, उड़ने की कोशिश करते बेवकूफ के पंख झड़ गए, बेवकूफ के पंख झड़ गए।
1: कमजोर को हमदर्दी और प्यार बांटते थे लेकिन ताकतवर और स्वार्थी लोगों का उपहास करना भी वो भूलते नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कवि का सबसे ज्यादा महत्व इनकी राजनीतिक कविताओं के माध्यम से उजागर हुआ। आजाद भारत के शासक या घटना उनकी कलम के घेरे में आते रहे। क्रोध, कटुता, ताने सब उनकी कविता में आता था। उन्होंने साहित्यकार के व्यक्तित्व को साहित्यकार के नाते पूर्ण मान्यता दिलवाने का संघर्ष किया। ऐसा नहीं है कि बाबा नागार्जुन किसी से डरते नहीं थे। डरते थे अपनी हिंदी बोलने वाली आम जनता से। अपने बारे में कहते थे, हम तो भाई निहायत ही मामूली किस्म के अदना से आदमी ठहरे, पढ़ती हैं उलझन सुलझा भी लेते हैं, कैसी भी गांठ हो खुल ही जाती है, मोटी अकल है, अटपटे बोल हैं, शऊर है ना कुछ भी।
0: श्रोताओं, आम भारतीय किसान की तरह वे रहे। वे उसी के जीवन के मुहावरों में जीते, बोलते, सोते थे। साधारण जनजीवन के सुख दुख पर लिखते हुए उन्होंने सहज सरल बोल चाल के मुहावरे शब्दों को अधिक प्रयोग किया और उनके काव्य की विशेषता यह रही कि इन्होंने साहित्य जगत के जाने माने व्यक्तियों पर भी कविताएं लिखी, जिसमें कालिदास, रवि ठाकुर, भारतेंदु और त्रिलोचन शामिल हैं।
1: श्रोताओं, हम आपको बता दें कि नागार्जुन जी बाबा कहलाना पसंद करते थे, नई पीढ़ी को बहुत प्यार करते थे। गांव जाने में उनकी खासी दिलचस्पी थी। वे नित्य कवि थे और मनमौजी मूडी भी थे। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी सबका ज्ञान उन्हें था।
0: श्रोताओं, क्रांतिकारिता में उनका जबरदस्त विश्वास था, इसलिए वह जयप्रकाश की अहिंसक क्रांति को समर्थन करते थे।
1: मार्क्सवाद से वो गहरे प्रभावित रहे लेकिन मार्क्सवाद के तमाम रूप और रंग देखकर वो खिन्न थे। इसी तरह उन्होंने जयप्रकाश नारायण का समर्थन जरूर किया लेकिन जब जनता पार्टी विफल रही तो बाबा नागार्जुन ने जयप्रकाश को भी नहीं छोड़ा। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, भोगा हमने क्रांति विलास, अब भी खत्म नहीं होगा क्या पूर्ण क्रांति का भ्रांति विलास। लेकिन इसके लिए उनकी आलोचना भी होती थी। बाबा की कोई विचारधारा ही नहीं, बाबा कहीं टिकते ही नहीं है, ऐसा लोग कहते। बाबा नागार्जुन का मानना था कि वो जनवादी हैं, जो जनता के हित में है वही मेरा बयान है, मैं किसी विचारधारा का समर्थन करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं गरीब, मजदूर, किसान की बात करने के लिए ही हूँ। उन्होंने गरीब को गरीब माना, उसे किसी जाति या वर्ग में नहीं बांटा। तमाम आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने शुद्ध और अच्छा लेखन कार्य किया।
0: श्रोताओं, सन 1939 में बाबा नागार्जुन स्वामी सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस जी के संपर्क में आए। छपरा के उमुबारी में किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया। छपरा और हजारीबाग जेल में कारावास भोगने के तुरंत बाद वे हिमालय और तिब्बत के जंगली इलाकों में भ्रमण के लिए निकल गए थे।
1: 1941 में दूसरे किसान सभाई नेताओं के साथ भागलपुर केंद्रीय कारागार में भी वे बंद रहे। इसी दौरान वे गृहस्थ आश्रम में लौट आए।
0: श्रोताओं, नागार्जुन की पहली कविता लोहार के विश्व बंधु साप्ताहिक में प्रकाशित हुई थी। पहला काव्य संग्रह युगधारा 1953 में छपा। ये सच कहने और स्वीकारने का साहस नागार्जुन जैसे फक्कड़ और घुमक्कड़ ही कर सकते थे। आपातकाल के विरोध में लिखी गई उनकी कविताएं खिचड़ी विप्लव देखा हमने कविता संग्रह में प्रकाशित हुई। ये कविताएं अपनी पैनी धार के लिए आज भी याद की जाती हैं। श्रोताओं, सत्ता के जन विरोधी नीतियों का उन्होंने हमेशा डट करके विरोध किया। भले बुरे परिणाम की उन्होंने बिल्कुल भी परवाह नहीं की।
1: बाबा नागार्जुन की सबसे लोकप्रिय कविताएं वो हैं जिनमें सरल और सहज रचना है। इनकी कविताओं में धारदार व्यंग्य का प्रयोग अधिक है। इन कविताओं में शासन की बंदूक, प्रेत का बयान, अकाल जैसी कविताएं प्रमुख हैं। अकाल का वर्णन करते हुए कवि कहता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद।
0: श्रोताओं, एक कवि, एक रचनाकार और एक सरल हृदय व्यक्ति के रूप में बाबा नागार्जुन समाज के हर कोने में बसे हुए हैं। जन समस्याओं का कोई भी रूप उनकी नजर से नहीं बचा जिस पर उन्होंने बेबाक टिप्पणी ना की हो। उनके लोकप्रिय उपन्यास है रतिनाथ की चाची, जो 1948 में प्रकाशित हुई, बलचनामा 1952 में, नई पौध 1953 में, बाबा बटेरननाथ 1954 में, दुखमोचन 1957 में, वरुण के बेटे 1957 में, और उसी तरह से उग्रतारा, कुंभी पाक, पारो, आसमान में चांद के तारे, ये उनके लोकप्रिय उपन्यास रहे हैं। इसी तरह से श्रोताओं, उनके कविता संग्रह हैं अपने खेत में, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर कौन ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने और रत्नागर्भ आदि।
1: उन्होंने कुछ बाल साहित्य भी रचा, कथा मंजरी भाग एक, कथा मंजरी भाग दो, मर्यादा पुरुषोत्तम, विद्यापति की कहानियां, अभिनंदन नाम से एक व्यंग्य भी लिखा और उनका निबंध संग्रह था अन्नहीनम क्रिया नाम।
0: श्रोता, उन्होंने बंगला में भी रचनाएं लिखी। जो उनकी रचना थी मैं मिलिट्री का पुराना घोड़ा, और मैथिली रचनाओं में हिरक जयंती उपन्यास और पत्रहीन नग्न गाथ कविता संग्रह। इन कृतियों में नागार्जुन जी का सामाजिक समस्याओं से सीधे लेखक के रूप में सामना होता है। उन्होंने कहीं तो आंचलिक परिवेश में, कहीं ग्रामीण परिवेश में सुख दुख की कहानी कही है, और कहीं मार्क्सवादी सिद्धांतों की झलक देते हुए सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है, और कहीं कहीं समाज में व्याप्त शोषण और कुरीतियों पर अपनी आवाज उठाई है।
1: कवि नागार्जुन को बहुत से सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। बाबा नागार्जुन को उनकी ऐतिहासिक मैथिली रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें साहित्य अकादमी ने 1994 में साहित्य अकादमी फेलो के रूप में भी नामांकित कर सम्मानित किया।
0: श्रोताओं, हिंदी काव्य मंच पर अपनी सत्यवादिता और बिना लाग लपेट किए अपनी बात कहने वाली जन कवि बाबा नागार्जुन 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में यह रचनाकार हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। बाबा नागार्जुन जन कवि थे। वे अपनी कविताओं में आम लोगों के दर्द को बयां करते थे। बाबा नागार्जुन ने कविताओं के जरिए एक नहीं कई लड़ाइयां लड़ी हैं।
1: लोकप्रिय होना किसी की कमजोरी नहीं, उसकी मजबूती है। अगर वो लोकप्रियता के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं करता, अगर वो सत्य, जनता और अपने आप से दगाबाजी नहीं करता।
0: अंत में श्रोताओं, उनकी एक महान कविता मेरी भी आभा है इसमें के द्वारा हम जन कवि बाबा नागार्जुन को शत शत नमन करते हैं। आइए सुनते हैं उनकी ये कविता।
1: नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे ये जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें, मेरी भी आभा है इसमें।
0: तो श्रोताओं, ये था हमारा एक विशेष कार्यक्रम महान कवि नागार्जुन पर, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद की। अब हमें आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नागार्जुन पर केंद्रित कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी जी देशभक्त थे, केवल ऐसा कहना उन्हें छोटा करना होगा। वे तो सन्यासी थे, सन्यासी के लिए फिर देश क्या और समाज क्या। सन्यासी तो देश काल से परे होता है। वस्तुतः वे मनुष्य से प्रेम करते थे, उन्होंने मनुष्य में ही ईश्वर को देखा था। वे सभी देशों के मनुष्यों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। जो दुर्बल, अक्षम तथा पीड़ित थे, फिर वे चाहे जिस किसी देश के मनुष्य क्यों ना हो, उनके विशेष प्रीति भाजन थे। स्वामी जी को निग्रो समझकर अमेरिका के होटल में घुसने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वे निग्रो नहीं हैं। जो सताए हुए थे वे ही उनके समजातीय थे, इसलिए निग्रो उनके भाई थे। मिश्र की पतिताएं उनकी बहन थी।
1: फिर भी भारतवर्ष के लोगों के प्रति उनकी संवेदना अधिक थी। भारत के दलित उनके भाई, उनके रक्त थे। भारत उनके बचपन का झूला, यौवन की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी थी। भारत का प्रत्येक धूल कण उनके लिए पवित्र था। भारत के प्रति उनका इतना आकर्षण क्यों था? क्योंकि भारत पुण्य भूमि है, भारत ऋषियों का देश है। भारत ने सिखाया है, सत्य के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है, किंतु किसी चीज के लिए सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता।
0: भारत सत्य की साधना में डूबा हुआ है। भारत ही सत्य है। भारत की मृत्यु होने से सत्य की मृत्यु होगी। जितनी उच्च भावनाएं हैं सबकी मृत्यु होगी। इसी सत्य की साधना के कारण भारत पुण्य भूमि है, क्योंकि सत्य ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। भारत वैश्विक क्षेत्रों में कमजोर हो सकता है, पर उच्च चिंतन के क्षेत्र में वो सभी देशों का सिरमौर है।
1: भारत ज्ञान पीठ है। भारत ज्ञान चर्चा में संपूर्ण शक्ति लगाता आया है, इसी से वो दरिद्र है। भारत तपस्वी, साधक, ब्राह्मण है। उसके ज्ञान के आलोक से संपूर्ण पृथ्वी आलोकित है। थोड़े बहुत सारे देश उसके ऋणी हैं। उसने सदैव दिया ही है, कुछ लिया नहीं। भारत आज भी बहुत कुछ दे सकता है। वस्तुतः संपूर्ण पृथ्वी आज भी भारत की ओर आंख उठाए देख रही है।
0: भारत गरीब है, इसलिए दूसरे राष्ट्र भारत को अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए स्वामी जी ने चाहा था कि भारत पाश्चात्य विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का आश्रय ले। स्वामी जी ने गौर किया था कि दरिद्रता की मार से मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया है। इसी से उन्होंने कहा,
2: पहले अन्न फिर बाद में धर्म।
0: उनके गुरुदेव ने भी कहा था,
3: खाली पेट में धर्म नहीं रहता।
0: वैश्विक सुख स्वच्छंदता की आवश्यकता तो है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। भोग के उपकरण प्रचुर हो, जीवन सुख स्वच्छंदता से भरा हो, जीवन मान यश से उन्नत हो, लेकिन उसके साथ साथ मनुष्य में मनुष्यत्व का भी विकास हो।
1: स्वामी जी वेदांत में विश्वास करते थे। वेदांत के मतानुसार मनुष्य में ईश्वर है, लेकिन मनुष्य इसे नहीं जानता, उसे ये सिखाना होगा। वैश्विक प्राचुर्य के साथ ही उसमें ऐसा क्रम विकास हो जिससे वो जान सके कि वो ईश्वर है। उन्नति का अर्थ केवल वैश्विक उन्नति नहीं, बल्कि वास्तविक उन्नति है मनुष्य के चरित्र में, उसके अंतर्निहित दैवत्व में। स्वामी जी कहते थे, यदि एक व्यक्ति बुद्ध हो सकता है तो हम में से प्रत्येक बुद्ध हो सकता है। हम में से प्रत्येक में ये संभावना है। जीवन का उद्देश्य है उस संभावना को प्रकट करना। केवल बाहरी संपत्ति अर्जित करना यथेष्ट नहीं, अंदर की संपत्ति भी अर्जित करनी होगी।
0: अंदर की संपत्ति यानी सत्यानुराग, प्रेम, प्रीति, स्वार्थहीनता, दूसरों के सुख में स्वयं सुखी होना, दूसरों के दुख में स्वयं दुखी होना, यही धर्म का सार है। स्वामी जी का विश्वास था कि धर्म के साथ विज्ञान का समन्वय किया जा सकता है। विज्ञान के द्वारा बाहरी प्रकृति पर विजय प्राप्त की जाती है और धर्म के द्वारा अंतर प्रकृति पर। विज्ञान के द्वारा उद्योग विस्तार, कल कारखानों का निर्माण, भोग के उपकरण में वृद्धि तथा जीवन यात्रा सहज और स्वच्छंद किया जा सकता है, लेकिन क्या वही सब कुछ है? मनुष्य यदि मनुष्य ना रहे, पशु हो जाए, दुष्ट हो जाए, स्वार्थ परक और दुर्नीति परायण हो जाए, तो क्या कोई समाज अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है? तो क्या कोई सभ्यता अंत तक बची रह सकती है?
1: इसलिए जरूरत है सच्चे मनुष्यों की, निस्वार्थ सेवा परायण उदार हृदयवान मनुष्यों की, ऐसे मनुष्यों की जो केवल अपने सुख की बात न सोचें, सभी के सुख की बात सोचें, जो सभी संकीर्णताओं से ऊपर हो, जो भाषा धर्म और जाति का भेद भूलकर मनुष्य को मनुष्य के नाते श्रद्धा करे, जो दूसरों को अपना बना सके, ऐसे मनुष्य धर्म के द्वारा ही तैयार होते हैं। धर्म ही मनुष्य को उदार बनाता है, प्रेमी बनाता है, सत्यनिष्ठ बनाता है। धर्म माने धर्म मत नहीं, धर्म माने सत्य, प्रेम, क्षमा, निस्वार्थ परता इत्यादि। यही धर्म विज्ञान से युक्त हो, ऐसा स्वामी जी ने चाहा था। भारत इसे ही अपना जीवन दर्शन मानता है। ये जीवन दर्शन ही भारत का वैशिष्ट्य है। स्वामी जी ने चाहा था इसी जीवन दर्शन की नींव पर भारत एक नया समाज गढ़ेगा। इस प्रकार भारत विश्व के सामने एक नया उदाहरण स्थापित करेगा।
0: स्वामी जी कहते थे कि भारत का राष्ट्रीय पाप ये है कि वो अपने जन साधारण की अवज्ञा करता आया है। इसी पाप के कारण भारत इतना दुर्बल हो रहा है तथा बार बार वो विदेशी शक्तियों के द्वारा पददलित हुआ है। जन साधारण का बहुत बड़ा अंश है दलित, अर्थात परिश्रम करके जीने वाले मनुष्य, जो खेतों में खेती करते हैं, कल कारखानों में हथौड़ी चलाते हैं। वे ही धन उपार्जित करते हैं, लेकिन वे ही उस धन से वंचित हैं।
1: सभी देशों में यही हो रहा है, भारत में यही हो रहा है, लेकिन स्वामी जी ने समझा था कि अब परिवर्तन आएगा, सभी देशों में आएगा। दरिद्रों का रक्त शोषण चिरकाल तक कभी भी नहीं हो सकेगा, पर दलितों के हाथ में क्षमता आने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। जो कार्य क्षमता की डोर संभाले, वे यदि योग्य मनुष्य न हो तो साधारण मनुष्य जिस अंधेरे में पड़ा है उसी में पड़ा रहेगा। पद का भी एक नशा होता है, एक बार जो पदारूढ़ होता है वो पद छोड़ना नहीं चाहता। केवल इतना ही नहीं, वो अपने पद का दुरुपयोग भी करता है। दलित भी दलित के ऊपर अत्याचार करता है।
0: सामर्थ्य को पचा पाना बहुत कठिन है। जो धर्म प्राण व्यक्ति है, जिसका चरित्र धर्म के आदर्श से गठित है, वही पद सामर्थ्य को पचा सकता है। वही सेवा भाव से अपना कार्य करेगा। वो सोचेगा कि पद आत्म तृप्ति के लिए नहीं है, वरन लोक कल्याण के लिए है। सेवा करने का अवसर पाकर वो स्वयं को धन्य मानेगा। उसका जीवन स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए होगा। ये त्याग और सेवा ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श है। स्वामी जी ने चाहा था कि इस आदर्श से अनुप्राणित लोग ही पदभार संभालें।
1: स्वामी जी ने चाहा था कि दलितों की सेवा के लिए 1,00,000 युवक आगे आए। वे लोग अजेय शक्ति से देश के ऊपर टूट पड़ेंगे, यही थी उनकी आशा। लेकिन सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि वे मनुष्य के समान मनुष्य बने, जो बुद्धि, हृदय, कर्म शक्ति एवं निस्वार्थ सेवा का मनोभाव लेकर वे घर घर जाकर मनुष्यों को जगाएंगे। इसी सेवा को उन्होंने शिव ज्ञान से जीव सेवा का नाम दिया है। यही है युग धर्म। इसमें मैं नहीं, केवल तुम ही ईश्वर हो, अर्थात ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रीति का भाव लेकर दलितों की सेवा करना।
0: ये सेवा बुद्धि ना रहने से पद का दुरुपयोग अवश्य संभावी है। ये दुरुपयोग न हो इसलिए स्वामी जी ने बार बार कहा था।
2: देश तो स्वाधीन होगा ही, लेकिन जिससे स्वार्थी लोग पद का दुरुपयोग न करें, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि धर्म के उच्चतम चिंतन द्वारा संपूर्ण देश में एक प्रवाह बहा दें। इससे देशवासियों के मन में इस चिंतन की एक तह जमेगी। इस चिंतन की तह पर नूतन समाज का, नूतन सभ्यता की भित्ति गढ़ उठेगी, तभी दलित शासन सार्थक होगा।
0: स्वामी जी ने इस कार्य में युवा समाज को आगे आने का आह्वान किया था।
1: देश स्वाधीन हुआ, अब देश को गढ़ने की बारी है। इस कार्य में युवा समाज हाथ लगाए, यही स्वामी जी की प्रत्याशा थी। ये कार्य लोग किसी प्रकार की पद प्राप्ति की इच्छा से नहीं करेंगे। पद उनका लक्ष्य नहीं होगा, उनका लक्ष्य होगा जो दुर्बल, दरिद्र, अक्षम है, उनकी सेवा करना। ये सेवा त्याग की नींव पर स्थित होगी, किसी प्रकार के लाभ की आशा से नहीं, अपनी आशा आकांक्षा पूर्ण करने के उद्देश्य से नहीं। जो नेता होंगे, जो देश चलाएंगे, वे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की भावना से स्वयं को उत्सर्ग करेंगे। यही था स्वामी जी का संदेश। ये त्याग केवल युवा समाज ही कर सकता है, इसीलिए स्वामी जी आशा पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर निहार रहे थे।
0: एक विदेशी इतिहासकार ने लिखा है कि इस संसार में महापुरुषों को पहचानना आसान है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करना कठिन है। स्वामी विवेकानंद के संबंध में ये उक्ति विशेष रूप से सटीक प्रतीत होती है। साधारणतः लोग उन्हें श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक मानस पुत्र, सर्वत्यागी सन्यासी, श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रतिष्ठाता तथा हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में ही भक्ति करते और पूजते हैं।
1: यद्यपि यही स्वामी जी का वास्तविक परिचय है, तथापि ये उनके अनन्य अपूर्व व्यक्तित्व का केवल एक श्रेष्ठ अंश मात्र है। धर्म जगत के बाहर भी देश और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो उनका अमूल्य अवदान है, वो सर्वदा हम स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन बिना इसे जाने स्वामी जी के अपूर्व व्यक्तित्व के संबंध में ठीक ठीक धारणा करना संभव नहीं। एक प्राचीन उदाहरण के द्वारा हम उसे आसानी से समझ सकते हैं। कुछ अंधे व्यक्ति एक हाथी देखने गए। हाथी के शरीर के विभिन्न अंगों को हाथ से टटोला। उन्होंने अलग अलग निष्कर्ष निकाला। जिसने उनके पैरों को टटोला, उसने सोचा कि हाथी एक खंभे के समान है। जिसने उनके कान को टटोला, उसने सोचा कि हाथी का शरीर सूप के समान है, इत्यादि इत्यादि।
0: उसी प्रकार यदि हम लोग स्वामी जी को केवल धर्म प्रचारक सन्यासी के रूप में सोचें, तो उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा और अवदान के संबंध में हम लोगों की धारणा बिल्कुल गलत होगी। उनके व्यक्तित्व के और भी इतने पहलू थे कि किसी एक गुण के द्वारा ही विख्याति अर्जित कर सकते थे।
1: उदाहरण स्वरूप बंग साहित्य में बोलचाल की भाषा के प्रचलन की बात की जा सकती है। सामान्य लोगों का विश्वास ये है कि सर्वप्रथम प्रयत चौधरी ने ही सबुज पत्र नामक मासिक पत्रिका में इसका व्यवहार किया। वो पत्रिका 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई, लेकिन इसके बहुत पहले ही स्वामी जी ने भाववार कथा यानी चिंतनीय बातें प्राच्य और पाश्चात्य परिव्राजक इत्यादि ग्रंथों में बोलचाल की भाषा का व्यवहार किया है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण ये समस्त ग्रंथ ही हैं, इसीलिए इसके विस्तृत विचार की आवश्यकता नहीं है।
0: लेकिन धर्म जगत के बाहर इसकी अपेक्षा स्वामी विवेकानंद का महान वैशिष्ट उनके स्वदेश प्रेम, देशात्म बोध और राष्ट्रीय चेतना में है। ये सब उनके भाषण और रचनावली में इतने स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि उसके समर्थन में प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी कुछ एक घटनाओं का उल्लेख हम करेंगे।
1: लंदन से भारत वापसी के ठीक पूर्व एक व्यक्ति ने उनसे पूछा था,
4: स्वामी जी, 3 वर्षों तक शक्ति, ऐश्वर्य और विलासिता के केंद्र पाश्चात्य देशों में रहने के बाद अपने देश लौटकर आपको कैसा लगेगा?
1: तब स्वामी जी ने उत्तर दिया,
2: यहाँ आने के पहले भी मैं अपनी जन्मभूमि भारत वर्ष को प्यार करता था, लेकिन अब भारत का प्रत्येक धूल कण मेरे लिए पवित्र है, उसकी हवा मेरे लिए पवित्र है, भारत मेरा तीर्थ स्थान है।
0: संसार त्यागी सन्यासी होते हुए भी स्वामी जी का देश प्रेम अतुलनीय था, निवेदिता ने लिखा है।
5: उस समय उनसे प्रायः प्रतिदिन मेरी भेंट होती थी। भारत का चिंतन ही उनका ध्यान ज्ञान था।
0: अन्यत्र निवेदिता ने स्वामी जी के सर्व जाति प्रेम का उल्लेख कर उनकी स्वजाति वात्सल्य के संबंध में कहा है,
5: जिस मुहूर्त मैंने उनके साथ भारत में पदार्पण किया था, उसी क्षण से उनकी मृत्यु पर्यंत मैंने अपने गुरुदेव में अग्नि की एक निरंतर दहन ज्वाला को देखा था। वह कोई तत्व, कोई आध्यात्मिक सत्य की उपासना या उन्मादना नहीं थी, वो था देश और जाति की दुर्दशा निवारण का प्राणपण प्रयास और उसकी निष्फलता के कारण मर्मांतक पीड़ा।
1: स्वामी जी का देश प्रेम केवल मानसिक भावावेग नहीं था, उन्होंने देश की स्वाधीनता अर्जन करने के लिए युवकों को अनुप्रेरणा दी थी। 1901 ईस्वी में ढाका के युवकों का एक दल उनसे उपदेश सुनने आया। उन्होंने उनसे कहा,
2: बंकिम चंद्र की पुस्तकों को पढ़ो, आनंदम की संतानों के समान देशभक्त बनो। तुम लोगों का प्रधान कर्तव्य जन्मभूमि की सेवा है, सबसे पहले चाहिए राजनीतिक स्वाधीनता।
1: उन्होंने अन्य युवकों के एक दल से कहा था,
2: आगामी 50 वर्षों के लिए हमारी गरी ऐसी भारत माता ही हमारी आराध्य देवता है, अन्यान्य व्यर्थ के देवताओं को इन कुछ वर्षों के लिए भूल जाने में कोई हानि नहीं है। अन्यान्य देवता लोग सो रहे हैं, तुम्हारी स्वजाति यही देवता ही एकमात्र जाग रहे हैं।
0: स्वामी जी ने स्वदेश चिंतन को धर्म चर्चा से उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया था। राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका न निभाते हुए भी समकालीन राजनीतिक नेताओं की अपेक्षा उनकी राजनीतिक दृष्टि बहुत अधिक दूरगामी थी। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति की निंदा करते हुए उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा की थी,
2: भिक्षा के द्वारा देश की स्वाधीनता अर्जित नहीं की जा सकती, हमें अपनी शक्ति पर निर्भर होना होगा।
1: एक अन्य विषय में भी स्वामी जी ने कांग्रेसी नेताओं के अधिकतम ज्ञान और उनकी दूरदृष्टि का परिचय दिया था। कांग्रेस का गठन शिक्षित मध्यवित समुदायों के प्रतिनिधियों को लेकर हुआ था, लेकिन स्वामी जी ने ही सर्वप्रथम घोषणा की,
2: भारत के पिछड़े वर्ग, मूर्ख, दरिद्र, कृषक, श्रमजीवी, एक शब्द में कहें तो समग्र जनशक्ति के जागरण के बिना भारत की स्वाधीनता संभव नहीं।
0: उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से भारत के भविष्य को देखते हुए कंपित कंठ से घोषणा की थी,
2: ये सभी समुदाय सदा से निपीड़ित, अवहेलित कृषक, मछुआरे, बनिए तथा दूसरे कल कारखानों के श्रमिक लोग ही भारत में स्वाधीनता लाएंगे तथा भविष्य में प्रमुख पद प्राप्त कर भारत की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: इस संबंध में स्वामी जी की बहुत सी युक्तियाँ उनके भाषणों और ग्रंथों में मिलती हैं।
1: भारत के उच्च वर्णों के प्रति स्वामी जी ने कहा है,
2: तुम लोग हो 10,000 वर्ष के पुराने ममी। तुम्हारे पूर्वजों ने चलायमान शमशान कहकर जिनसे घृणा की है, आज भारत का जो भी वर्तमान जीवन है वो उनसे ही है। और चलायमान शमशान हो तुम लोग शून्य में विलीन हो जाओ और नवीन भारत निकल पड़े।
0: इन लोगों ने सहस्रों वर्षों से अत्याचार सहा है, चुपचाप सहा है, और उससे पाई है अपूर्ण सहिष्णुता। हमेशा से दुख भोगा है और उससे पाई है अटल जीवनी शक्ति। और तुम हो अतीत के अस्थि पंजर, यही है तुम्हारे सामने भारत के भविष्य के उत्तराधिकारी।
1: इन सब का मूल स्रोत है उनके गुरु श्री राम कृष्ण के 2 मंत्र,
3: जीवों के प्रति शिव ज्ञान और दरिद्र नारायण।
1: इसी के प्रभाव से इस ग्रह त्यागी सन्यासी ने कहा था,
2: मेरे लिए इन निर्धन चिर निपीड़ित मनुष्यों की उन्नति अपने मोक्ष लाभ की अपेक्षा एक महत्तर उद्देश्य और आदर्श है।

0: भगिनी निवेदिता ने स्वामी जी के संबंध में कहा है।
1: भारतवर्ष था स्वामी जी के गंभीर आवेग का केंद्र, भारतवर्ष था उनका दिवा स्वप्न, भारतवर्ष था उनकी रात्रि का दुह स्वप्न। केवल इतना ही नहीं, वे स्वयं हो गए थे भारतवर्ष, हो गए थे रक्त और मांस की गढ़ी भारत प्रतिमा। स्वामी जी ने एक बार स्वयं अपने बारे में कहा था कि वे घनीभूत भारत हैं। वस्तुतः स्वामी जी की संपूर्ण सत्ता से मानो भारत प्रेम फूट पड़ता था।
0: भगिनी क्रिस्टीन ने कहा है,
2: जब वे इंडिया का उच्चारण करते थे तब उनमें इतना गर्व, इतना प्रेम और इतना अपनापन झलकता था कि जो भी उसे सुनता वही भारत वर्ष से प्रेम करने लगता। स्वामी जी के मन में भारत वर्ष के प्रति इतना प्रेम केवल इसलिए नहीं था कि भारत वर्ष उनकी मातृभूमि है, ये प्रेम आदर्श की नींव पर स्थित था, जिस आदर्श के लिए उनका जीवन उत्सर्गीकृत था, उसी आदर्श को उन्होंने भारत वर्ष में साकार रूप में देखा था, इसीलिए उनका इतना भारत के प्रति प्रेम था। विवेकानंद ने यदि दूसरे देश में जन्म ग्रहण किया होता तब भी भारत वर्ष से इतना ही प्रेम करते, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत सत्य स्वरूप था। एक अंग्रेजी कविता में उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा है, ओह ट्रुथ, हे सत्य। उनकी दृष्टि में ये देश पुण्य भूमि है, इसका प्रत्येक धूल कण उनके लिए पवित्र है।
3: स्वामी जी ने अपने परिव्राजक जीवन में इस पुण्य भूमि भारत का आविष्कार किया था। उन्होंने भारत परिक्रमा के समय केवल धार्मिक स्थलों को ही नहीं देखा, अपितु जो स्थान पुरातन या ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध थे उन स्थानों को भी देखा, क्योंकि भारत को जानने के लिए ये सब स्थान भी उनके लिए आवश्यक उपादान थे। उन्होंने कन्याकुमारी के अंतिम शिलाखंड पर बैठकर भारत का ध्यान किया था। हम लोग पहली बार ही एक ऐसे सन्यासी को देखते हैं जिसके ध्यान का विषय है देश। उनकी भारत परिक्रमा वास्तव में भारत का अन्वेषण था।
0: मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करता है, स्वामी जी ने भारत वर्ष की उपलब्धि करने के लिए साधना की, और उनकी आराध्या देवी भारत माता ने भी मानो उनकी साधना से प्रसन्न होकर अपना संपूर्ण रहस्य उनके सामने उन्मोचित कर दिया है। इसीलिए भारत वर्ष के अतीत का इतिहास, उसकी वर्तमान की समस्या और प्रयोजन तथा उसका संभावित भविष्य, सब कुछ विवेकानंद के भारत चिंतन में स्पष्ट रूप से झलकता है।
3: विवेकानंद ने भारत की शक्ति और दुर्बलता दोनों को ही जाना। उन्होंने केवल भारत के गौरव की ही बात नहीं की, वरन उसका लज्जाजनक चित्र भी अंकित किया। फिर भी निंदकों के सामने उन्होंने भारत वर्ष को और भी निंदनीय करने की अभद्रता नहीं की। उन्होंने सर्वत्र सत्य ही कहा। विदेशियों के सामने भारत वर्ष के गौरव का यथार्थ चित्र अंकित किया है, और स्वदेशियों के सामने आत्म संशोधन के लिए गौरव के साथ साथ त्रुटियों की सच्ची तस्वीर भी खींची है। निवेदिता ने बड़े ही सुंदर ढंग से कहा है,
1: भारत के त्रुटियों के प्रति वे अत्यंत कठोर थे, भारतवासियों के सांसारिक ज्ञान के अभाव के प्रति निर्मम थे। फिर भी भारत के भविष्य के गौरव की बात सोचकर उनके समान सराबोर होते किसी और को नहीं देखा गया। क्यों? क्योंकि भारत के गुण दोषों को स्वामी जी अपने व्यक्तिगत चरित्र के गुण दोषों के रूप में देखा करते थे, इसीलिए वे इस देश के दोषों के संबंध में जैसे निर्मम थे वैसे ही वे भविष्य के भारत के सुख स्वप्न को लेकर विभोर थे।
0: स्वामी जी धर्म को भारत की प्राण शक्ति के रूप में अनुभव करते थे, और वे जन साधारण और नारी जाति की दुर्वस्था को राष्ट्रीय महापाप मानते थे। उन्होंने राष्ट्र के जीवन के स्पंदन को दरिद्रों की कुटिया में ही महसूस किया था। इसीलिए उन्होंने दरिद्र जनता की भूख मिटाने की समस्या को प्राथमिकता दी थी। दरिद्रता के अलावा उन्होंने शिक्षा को सर्व रोग हरण महा औषधि के रूप में माना है।
3: उन्होंने धर्म को केंद्र बनाकर और पाश्चात्य विज्ञान तथा तकनीकी विद्या को उससे युक्त कर देश की शिक्षा व्यवस्था को गढ़ना चाहा था। यही शिक्षा शिक्षार्थी को एक साथ आत्मनिर्भर और मानवीय गुण संपन्न बनाएगी तथा इसी शिक्षा से ही राष्ट्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
0: वे कहते थे,
4: अशिक्षा से भी ज्यादा बुरी कुशिक्षा है। अशिक्षित व्यक्ति क्लीन स्लेट है, उस पर कुछ नया लिखा जा सकता है, लेकिन कुशिक्षित व्यक्ति ऐसा नहीं है। उसकी कुशिक्षा का प्रभाव मिटाना कठिन है। जो शिक्षा मनुष्य को बहुत सी नकारात्मक विचारधारा से भर देती है, शिक्षार्थी अपनी स्वयं की शक्ति में आस्था खो देता है और उसके साथ साथ अपने पूर्वजों तथा देश की सभ्यता और संस्कृति से अश्रद्धा करने लगता है।
3: वर्तमान भारत की समस्या में हमने आधुनिक काल के विचार देखे। 100 साल पहले भी स्वामी जी ने धर्म भाव, राष्ट्रीयता बोध और आत्म प्रत्यय समन्वित इन सकारात्मक मनोभावों को ही सर्वसाधारण में इन्हें संचारित करना चाहा था। अपनी शक्ति और संभावनाओं के लिए ही विवेकानंद की आवश्यकता है।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। रात्रि के 10 बजे हैं। इसी के साथ हमारी आज की सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक ले आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।